मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर, एफएम पर 100.1 मेगा हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आज गुरुवार है, शक्त संवत 1948 के श्रावण मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 अगस्त 2026 ईस्वी। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः की 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की यह सभा आरंभ होती है।

अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणाली के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपए की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार नमस्ते स्कीम के अंतर्गत ऐसे लोगों को टिकाऊ आजीविका के अवसर देना जारी रखे हुए है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ हॉर्मूज जलडमरू मध्य पर समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सप्ताह समझौते की घोषणा का अंदेशा जताया है। संभावित समझौते से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने में मदद मिल सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सकता है। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयंबटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के क्वार्टर फाइनल में जगह

ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

वंदना कार्यक्रम के आरंभ में आपने अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज में ये गणेश वंदना सुनी। आइए अब सुने उदित नारायण की आवाज में ये भक्ति रचना।

0: सुमहो स्वर में अभी आपने मेरा वचन सुना। आइए सुने सरदुल सिकंदर की आवाज में यह भक्ति रचना।
1: प्यार से बोलो जय माता। ए आवाजा मेरे नजदीक, होर नजदीक खांचुंदी आ गई। मैं की देख रहा हूं,

भक्ति संगीत का वंदना कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आइए अब सुने नरेंद्र चंचल और साथियों की आवाज में ये भक्ति रचना।

0: मानवता आज इस संसार के अंदर अगर हम देखें तो एक इंसान इंसान का दुश्मन बन बैठा है, और इस इंसान ने कितने ही रूप बना लिए हैं। कहीं तो भ्रष्टाचार का रूप लेकर बैठा है, तो कहीं पे आतंकवाद का। और जो लोग ऐसे लिबास पहन कर बैठे हैं, उस व्यक्ति का ना तो मजहब हो सकता है और ना ही ईमान हो सकता है। और उसी इंसान की ये अपनी सोच, अपने ही विचार हैं कि वो अपनी डेफिनेशन, अपनी परिभाषा क्या देता है कि मैं क्या हूँ। वो इंसान कहता है कि ना ही मेरा खुदा है ना ही भगवान है, कि मेरा ना तो खुदा है और ना ही भगवान है। क्यों? क्योंकि उस इंसान का ईमान इंसानियत नहीं है। उस इंसान ने अपने आप को स्वार्थों के अंदर अपने आप को लपेट लिया है, अपने आप को उस ढांचे में ढाल लिया है, और उसी ढांचे में रहकर वो इंसान अपनी डेफिनेशन देता है कि मेरी ये पहचान है कि मेरा ना तो खुदा है और ना ही भगवान है। और ऐसे व्यक्ति का ना तो कोई मजहब हो सकता है और ना ही ईमान हो सकता है। और ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोग हमेशा से ही मानवता के दुश्मन बनकर नज़र आते हैं। और जो एक इंसान को, एक समाज को, एक राष्ट्र को हमेशा से ही दुख और ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि जिससे उस समाज का, उस राष्ट्र का माहौल ख़राब होता है। आज हमें खतरा किसी बाहरी, किसी पशु या किसी जानवर से नहीं है, जितना खतरा आज हम एक व्यक्ति से है, एक इंसान से है। क्योंकि आज का इंसान है कैसा, चेहरे पे चेहरा लगाए इंसान नज़र आता है, उतरा जब चेहरा तो शैतान नज़र आता है। ये इंसान की आज फितरत बन चुकी है, क्योंकि वो अपने चेहरों के ऊपर इतने चेहरे लगा बैठा है कि वो आज अपने मूल, अपनी पहचान ही भूल बैठा है। क्योंकि एक एक इंसान जब घर से निकलता है तो उस इंसान के कितने चेहरे हैं, ऑफिस में क्या है, घर पे क्या है, समाज के लोगों के बीच में क्या है। और इसीलिए किसी अजीज ने कहा है कि ना खंजर रखता है ना तलवार रखता है, पक्का खिलाड़ी है मुखौटे चार रखता है। हर जगह अपने चेहरे को बदलता है, और बदल कर वो इंसान को धोखा देता है, एक मानव को धोखा देता है। लेकिन वो धोखा किसी मानव, किसी इंसान को नहीं, वो अपने आप को दे रहा है। क्योंकि वो इस बात को भूल चुका है कि जिंदगी एक किराए का घर है। ये जिंदगी जो है, जीवन जो है, ये किराए का घर है। एक ना एक दिन इसे बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज़ देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, उस वक्त इंसान क्या करेगा? किराए के मकान में बैठकर कब तक हम लोग उस सच्चाई से भागते रहेंगे? और एक ना एक दिन इंसान को उस सच्चाई को, जब उस इंसान की समझ में आएगी, जब वो जान पाएगा, तब उस इंसान के हाथ में पछतावा होगा। और इसीलिए हमारे महापुरुषों ने आकर इंसान को यही समझाया कि उनका अपना एक निजी अनुभव रहा। जब वो एक इंसान की खोज में निकले, ऐसे लोगों को देखा, जब उनको ऐसे लोग, अच्छे लोग नहीं मिले, नहीं नज़र आए, तभी ऐसे लोगों के लिए उन्होंने लिखना पड़ा कि अक्सर लोग रात के अंधेरे में मशाल लेकर घूमते हैं, हम तो दिन के उजाले में भी इंसान को ढूंढते हैं। आज इंसान नज़र नहीं आता है हमें, क्योंकि इंसान हो तो नज़र आए, वो मानवीय गुण नहीं तो इंसान कैसा। फल किसे कहते हैं? जिसके अंदर जूस है, जिसके अंदर रस है। इसी प्रकार से इंसान क्या है? जिस इंसान के अंदर इंसानियत है, अगर उसमें इंसानियत का गुण है तो इंसान है। अगर उस इंसान में इंसानियत का गुण नहीं है तो वो इंसान नहीं है। इसीलिए आज हमारे समाज की, आज हमारे राष्ट्र की ये हालत हो चुकी है कि इंसान अपने मानवीय गुणों को छोड़ चुका है, और जिसके कारण ये इंसान पतन की ओर बढ़ रहा है। इसका अपना ही पतन हो रहा है, ये अपने आप ही गिरावट गिर रहा है। और ऐसे गिरते हुए मानव को अगर उठा सकता है तो एक ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, और ऐसे महापुरुषों का सानिध्य हर एक व्यक्ति को करना चाहिए।
1: ये था आज का चिंतन। वाचक स्वर स्वामी धर्मेंद्रानंद जी का था। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।

अभी आप भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए, चिंतन वाचक स्वर स्वामी धर्मेंद्रानंद जी का है।

ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। किसान भाइयों के लिए प्रातः 7:10 पर खेती हर वास्ते कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा भिंडी की फसल में पौध संरक्षण। दिन में 12:50 पर खेत खलिहान में सुनेंगे जानकारी जिसका विषय रहेगा आधुनिक विधियों से सिंचाई। ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल होगा 7:30 पर। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे बालिका शिक्षा और संस्कार, कीटनाशकों का संतुलित प्रयोग, इसके अलावा उपलब्ध होने पर बाजार भाव और मौसम की भी जानकारी दी जाएगी। लोक संगीत के कार्यक्रम मरुमंगल में 9:10 पर कलाकार होंगे पूर्ण राम मेहरड़ा। मानस गान सुनेंगे 7:20 पर। इसमें आज आप सुनेंगे भाग संख्या 327। 7:30 पर आप सुना करते हैं कार्यक्रम सुप्रभात। इसमें आज विषय रहेंगे विज्ञान एक वरदान है, दुर्जन की संगति विनाश का मार्ग और दान की महिमा। कार्यक्रम सुगम संगीत में कुछ भजन सुनेंगे 8:45 पर और चंद गजलें पेश की जाएंगी 12:30 पर और रात्रि 9:15 पर। फिल्म संगीत अब सुन सकेंगे 9:30 पर और 2:30 पर। कार्यक्रम आज के फनकार हम आपको सुनवाएंगे 10:00। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत सुनेगा दिन में 11:00। कुछ बातें कुछ गीत ये कार्यक्रम होगा 12:05 पर। महिलाएं अपना कार्यक्रम महिला जगत सुने दिन में 1:05 पर। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे डिजिटल होते रिश्ते, सावन और भारतीय संस्कृति में प्रकृति का महत्व, राजस्थान के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान सौंठ नेचुरल पेन किलर। इसके अलावा सुनेंगे परिचर्चा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भाषा की मर्यादा विषय पर डॉक्टर अर्चना गोदारा और डॉक्टर सुचेता जैन से नवीन सिसोदिया की बातचीत। युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम होगा 5:00। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे हिरोशिमा दिवस, आत्मरक्षा प्रशिक्षण युवतियों की सुरक्षा और आत्मविश्वास के लिए जरूरी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कार्यक्रम, डिजिटल साक्षरता अभियान और आज का इतिहास। कार्यक्रम शहर की आप सुना करते हैं 6:05 पर। एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा रात्रि 8:15 पर। हमारे दिल्ली और जयपुर के अंदर से रिले होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार से हैं। उर्दू सर्विस के कार्यक्रम होंगे 3:00 से, संदेश टू सोल्जर 4:00, स्पोर्ट्स केन रात्रि 8:30 पर, कंट्री वाइड रात्रि 9:30 पर, संसद में प्रश्नकाल रात्रि 10:00। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 6:55 होने को है। अब आप सुनेंगे समाचार।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकते हैं। श्री मोदी ने श्री ट्रेड के साथ मीडिया और मनोरंजन केंद्र पर चर्चा की। नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा की गई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
1: इंडिया इज प्राउड टू बी वन ऑफ अफ्रीका।
2: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमरीकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का रहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखी और फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सभी संभव संसाधनों जुटाना सुनिश्चित किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने रीइमेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। इस अवसर पर आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहड़ी ने कहा कि ध्यान चिकित्सा उपचार पर नहीं बल्कि देखभाल पर केंद्रित है और देखभाल उपचार से कहीं अधिक व्यापक है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। डॉक्टर सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसके तहत होम्योपैथ को महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद ने पंजीकरण कराने और 6 महीने का प्रमाण पत्र लेने के बाद एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र में डॉक्टर एसोसिएशन ने आगाह किया है कि अगर सरकार बातचीत शुरू नहीं करती तो 24 घंटे बाद आपातकालीन सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। हालांकि बेहद गंभीर मामलों में इलाज जारी रहेगा। ईरान ने कहा है कि होर्मुज़ जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। इससे होर्मुज़ जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध को समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has underscored that India has a rich tradition of storytelling and

0: आ गई में विटामिन, खनिज, लवण और आयोडीन भी भरपूर मात्रा में पायो जावे। इंगी जड़ा और तना आंगो उपयोग गुड़ और चीनी ने साफ करण में करियो जावे और इंगे सागे सागे जितना भी इंगा रेशेदार डंठल हुआ और जितना भी फल हुआ भांगो भी उपयोग कागज और कपड़ा उद्योग में भी करियो जावे। भिंडी की बात करें तो ज़्यादातर भिंडी ने उगाण खातर जितो लंबे टाइम तक गर्म मौसम रहे बितो बढ़िया हुआ है। इंगा अच्छा अंकुरण खातर बात करें तो तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होना चाहिए और अगर जे दिन को तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो जाए तो इंगा फूल झड़ गए पड़न लग जाए। भिंडी की अच्छी फसल लेने खातर देखा तो आपा भुरभुरी दोमट मिट्टी जिकी में खाद और कार्बनिक तत्वों की भरपूर मात्रा हो और पानी निकास की व्यवस्था जिकी में ज़्यादा बढ़िया हुआ है वह अच्छी हुआ है। कुछ किसान भाई अपना इंगी बुआई फरवरी और मार्च के महीना में पहले कर चुके हैं और जिका आगे करण का इच्छुक है तो वह बिरखा ऋतु में इंगी बुआई आगे जून और जुलाई में कर सके। गर्मियों की बात करें तो इनमें कतारों कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधों पौधा की दूरी 12-15 सेंटीमीटर रखनी बढ़िया हुआ है और बिरखा ऋतु की बात करें तो इनमें कतारों कतार की दूरी 45-60 सेंटीमीटर और पौधों पौधा की दूरी 30-45 सेंटीमीटर रखनी चौखी हुआ है। भाई लोगों सिंचाई और निराई गुड़ाई पर जब आप बात करें तो गर्मियों में 5-6 दिन के अंतराल पापा सिंचाई कर देवा तो वह अपनी फसल खातर बहुत ही बढ़िया रहे। बिरखा ऋतु में आप यहाँ देखा कि भाई बिरखा होइडी है और अपनी फसल ने जब पानी की आवश्यकता कोनी है तो आप पानी ना देवा, जरूरत के हिसाब में आप बिना पानी देवा और क्यारियों में निराई गुड़ाई आप टाइमो टाइम करता रहा जिनके कारण कि आपने खरपतवार भी ना हुए। अब अपना किसान भाई जी का इतनी मेहनत करने लग रहे हैं तो आप जी को पौधों एवं संरक्षण की भी आवश्यकता है तो आप प्रमुख कीटा की भी बात कर लेवा और फिर भंगो के नियंत्रण होगा वहाँ पर आप चर्चा कर लेवांगा। प्रमुख कीटा की बात करें तो सबों पहले इनमें हरो तेलो आ जाए, मोइलो आ जाए और सफ़ेद माखी आ जाए। ऐ कीट के पौधा की पत्तियाँ और कोमल शाखाओं के धीरे धीरे रस चूसने लाग जाए और ज्यों के होगो आपको जी को भिंडी को पौधो होगो वो कमजोर हो जाएगा और धीरे धीरे वो खराब होने लग जाएगा भी उनको जी को उत्पादन है भी पे भी खराब प्रभाव पड़ेगा और सागे सागे कीट व्याधियां ने भी फैलाने में बहुत ज़्यादा मदद करें। इन नियंत्रण खातर देखा तो आप मोनोक्रोटाफास 36 SL या डाइमिथोएट 30 EC या मिथाइल डिमेटोन 25 EC या मेलाथियन 50 EC को 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दरों आप छिड़काव कर सका। जिका फली छेदक कीट आप बांगी बात करा तो इंगी लटा अपनी फसल ने काफी नुकसान पहुंचावे। ऐ लटा के करे आपने फला के अंदर छेद कर गया बांगे मायने घुस जाए और बिना अंदरों पूरी तरीके खा गया बिना नुकसान पहुंचावे ज्यों के आपने जी को फलों की गुणवत्ता है वह में भी कमी आ जाए और जी की आपने फलों की उत्पादकता है वह भी धीरे धीरे गिरन लग जाए। ई कीटों बचाव खातर आप करा फूल आने तुरंत बाद एंडोसल्फान 35 EC 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का हिसाब हुआ आप घोल बना गए और फिर अच्छी तरह छिड़काव करें और जे आपने इनकी जरूरत फिर पड़े तो 10-15 दिन के अंतराल पर आप वो फिर शो कर सका। अपन एक चीज़ को बहुत खास ध्यान रखना है कि जब आप वो छिड़काव करने लाग रहे हैं और जब आप फल तोड़न लाग रहे हैं तो इंगा माँ 5-7 दिन को अंतर होना बहुत जरूरी। मूल ग्रंथि की जो आप बात करें तो इंगे प्रकोपों के अपने पौधा की जड़ा में धीरे धीरे गांठा बढ़न लग जाए और अपना जिका पौधा है वह पीला पड़न लग जाए ज्यों के भांगी भडवार रुक जाए तो इंगे नियंत्रण खातर आप बुआई पहले की करना है 25 किलो कार्बिफ्यूरिन 3 g प्रति हेक्टेयर की दरों आप माटी के माँ मिलानी है। अब आप प्रमुख व्याधियाँ की जो बात करें जिकी मैं छाछ आवे तो ई रोगों आक्रमणों के जितनी भी अपनी पत्तियाँ हैं भांगों पर धुला धुला धब्बा दिखाई देने लग जाए और जिका पौधा अपना ज़्यादा रोग ग्रसित हो गया तो बैग पीला पड़ गया धीरे धीरे झड़ जाए। अगर रोकथाम खातर के आपने पूरा टाइमो टाइम सार संभाल करनी बहुत जरूरी है। फिर आप बात करें जड़ गलन रोगी तो ई रोगों के है अपने जिका पौधा की जड़ें हैं वह धीरे धीरे सड़न लग जाए गलन लग जाए और अपनी जिकी उत्पादकता है भी पे बहुत मोटो असर गिरा है आपको तो एंगे रोकथाम खातर भी आपने के करना है 22 टिन 2 ग्राम या टॉपसिन M 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दरों आप उपचार कर बुआई करा तो अपने खातर बहुत बढ़िया है। पीत शिरा मोजेक की अगर आप बात करें तो ई रोग के प्रकोप में के पत्तियां और फल दोनों ही पीला पड़न लग जाए और पत्तियां धीरे धीरे के चितकबरी हो गए खराब होने लग जाए फिर जिनको परिणाम क्यों है कि आपने जिकी पैदावार है वह में धीरे धीरे कमी आने लग जाए। ई रोग को जिको संचार है बा दौड़ती माखी हुई हो है और इन नियंत्रण हेतु के करा आप जितना भी फल है जितना भी फूल है बांगा आन पहले आप के करा मेलाथियन 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब में आप घोल में बना गए और आप अच्छी तरह छिड़काव कर दें और आप जो जरूरत लागे तो फिर आप वो छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर फिर कर सका। एक चीज़ को आपने विशेष रूप ध्यान रखना है किसान भाइयों को जिकी आप इतनी मेहनत करिए तो अपना जितना भी फल है वह टाइम पर तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप इन्हें ज़्यादा टाइम तई पौधा पर रहने देवांगा तो भी उनके होगा एक तो भी कोमलता खत्म हो जाएगी दूसरों के बिना खाने में भी तो स्वाद को नहीं आवागो तो आम बातों को ध्यान रख कर अपने किसान भाई आपकी फसल में आपकी उत्पादकता में बढ़ोतरी कर सके। पर अब तो टाइम हो गयो हूँ चालू राम राम।
1: भिंडी की फसल में पौध संरक्षण अभी किसान भाई इस विषय पर खेती और वास्ते कार्यक्रम में जानकारी प्राप्त कर रहे थे।

0: नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयाल फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।
1: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए लोक भजन। कलाकार हैं तेज प्रकाश महरड़ा।

0: अभी आप लोक भजन सुन रहे थे। कलाकार थे तेज प्रकाश महरड़ा। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मानस गान। आज इसमें सुनते हैं भाग संख्या 327। मुख्य स्वर भूपेंद्र सिंह का है।
1: एपिसोड नंबर 327। 327।

विभीषण से कुंभकर्ण के युद्धभूमि में आने के समाचार ने वानर सेना को उद्वेलित कर दिया। दांत किटकिटाते हुए वानरों ने शिलाखंड और वृक्ष उखाड़कर उस पर प्रहार करना आरंभ कर दिया, पर इसका कोई प्रभाव न होता देख हनुमान ने घूंसे से जो प्रहार किया तो कुंभकर्ण धरती पर आ गिरा। उठकर उसने जो घूंसा मारा तो हनुमान धरती पर थे। फिर तो नील नल समेत कई अन्य योद्धाओं को उसने धूल चटा दी। वानर सेना को भागते देख उसने अंगद, सुग्रीव आदि को अपनी कांख में दबा लिया। पार्वती को युद्ध वर्णन सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं, हनुमान संभल कर एक बार फिर उठे और सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की मूर्छा भी टूटी और मृतक का स्वांग करके वो कुंभकर्ण की कांख से फिसल निकले। फिसलकर निकलते हुए उन्होंने अपने दांतों से कुंभकर्ण के नाक कान काट दिए। घोर गर्जन करते हुए जैसे ही सुग्रीव आकाश की ओर उड़े कि कुंभकर्ण ने उनके पैर पकड़कर उन्हें धरती पर दे मारा। सुग्रीव संभल कर उठे और कुंभकर्ण पर फिर प्रहार किया। नाक कान कट जाने का बोध होते ही कुंभकर्ण का मन क्रोध और ग्लानि से भर गया। कानों और नाक के बिना उसका अत्यंत भयकारी रूप देखकर वानर सेना आतंकित हो गई। काल के समान बढ़ते आ रहे कुंभकर्ण ने करोड़ों वानरों को अपना ग्रास बना लिया और उतनी ही संख्या में उन्हें कुचल मसल डाला।

मानस गान की भाग संख्या 327 अभी आपने सुनी। मुख्य स्वर भूपेंद्र सिंह का था। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात।

कार्यक्रम सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज नमस्कार। देवेंद्र शर्मा की ओर से श्रोताओं, विज्ञान एक वरदान। श्रोताओं, मानव इतिहास की शुरुआत से लेकर आज तक की विकास यात्रा पर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान मनुष्य की सबसे महान खोजों और उपलब्धियों में से एक है। विज्ञान ने मानव जीवन को न केवल सहज और सुगम बनाया है बल्कि कल्पना से परे कई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। जिस पथ पर चलकर मनुष्य ने अंधकार से प्रकाश की ओर अपनी यात्रा तय की है उसका मुख्य आधार विज्ञान ही है। श्रोताओं, आधुनिक युग को यथार्थ में विज्ञान का युग कहा जाता है जहां जीवन का प्रत्येक पहलू किसी न किसी रूप में तकनीक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संचालित हो रहा है। श्रोताओं, विज्ञान का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर दिखाई देता है। अतीत में जिन कार्यों को पूरा करने में दिनों या महीनों का समय लगता था वे अब पलक झपकते ही संपन्न हो जाते हैं। यातायात के साधनों में बस, ट्रेन, कार और हवाई जहाजों के आविष्कार ने दूरियों को समेटकर पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में बदल दिया है। स्मार्टफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से क्षण भर में ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए संपर्क साधा जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज हम आपसे बात कर रहे हैं। श्रोताओं, चिकित्सा शिविर की बात करें तो मानव जाति के लिए किसी भी जीवनदान से कम नहीं है। असाध्य समझे जाने वाले रोगों पर विजय प्राप्त कर विज्ञान ने मनुष्य की औसत जीवन को काफी बढ़ा दिया है। श्रोताओं, निसंदेह विज्ञान ने मानव सभ्यता को अज्ञानता और अभाव के युग से निकालकर समृद्धि और आत्मनिर्भरता के युग में ला खड़ा किया है। अंधविश्वासों को समाप्त कर तार्किक दृष्टिकोण के विकसित करने में विज्ञान की भूमिका अद्वितीय रही है। यदि संपूर्ण मानव जाति विज्ञान का उपयोग रचनात्मक, कल्याणकारी और पर्यावरण अनुकूल कार्यों के लिए करे तो यह पृथ्वी का मार्ग समान बनाने की क्षमता रखता है। सही दिशा में किया गया वैज्ञानिक प्रयास ही मानव विकास का सच्चा आधार बना रहेगा।

0: चलो चलो घंटी बज गई, चलो चलो।
1: क्यों बिल्लू, कैसे लगा?
2: बहुत अच्छा दुश्मन, कैसा?
1: अच्छा लगा ना?
0: चल चल जाओ जाओ जाओ।
1: तो मैं अब जाऊं?
3: दोनों एक दूसरे को

0: क्यों फूलवती, आज टमाटर शुरू होने से पहले ही वो
1: रहने दो काका, रहने दो, मैं बोलता हूँ।
2: फूलमती काका ये कहने

स्वतः मानव जीवन की दिशा और दशा निर्धारित करने में संगति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। मनुष्य जिस प्रकार के वातावरण में रहता है और जिन व्यक्तियों के साथ अपने विचारों एवं समय का आदान प्रदान करता है, उसका व्यक्तित्व तो वैसा ही ढलने लगता है। सुसंगति जहां व्यक्ति को प्रगति, सन्मार्ग और यश की ओर ले जाती है, वहीं दुर्जन की संगति मनुष्य के पतन और विनाश का कारण बनती है। महानीति शास्त्रियों और संतों ने सदैव दुष्टों और दुर्जनों के संग से दूर रहने की चेतावनी दी है, क्योंकि कुसंगति का प्रभाव धीमे विष की तरह होता है, जो व्यक्ति के विवेक और चरित्र को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। श्रोत दुर्जन उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसका आचरण अनैतिक, स्वार्थी, कुटिल और अधर्मी हो। ऐसे व्यक्तियों की सोच में नकारात्मकता और दूसरों का अहित करने की प्रवृत्ति प्राथमिकता पर होती है। दुर्जन व्यक्ति प्राय मुख में मिठास और हृदय में कपट रखते हैं, जैसे एक सड़ा हुआ फल टोकरी के सभी फलों को खराब कर देता है। वैसे एक दुर्जन व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण को दूषित कर देता है। कुसंगति में पड़कर मनुष्य सही और गलत का भेद भूल जाता है और धीरे धीरे असामाजिक कार्यों की ओर प्रवृत्त होने लगता है। श्रोतो, दुर्जन की संगति एक ऐसा अंधकार में मार्ग है जिसकी परिणति केवल केवल विनाश में होती है। यह मनुष्य की सद्बुद्धि, सम्मान, धन और अंततः जीवन को नष्ट कर देती है। बुद्धिमान और विवेकशील व्यक्ति वही है जो समय

रहते कुसंगति के खतरों को पहचाने और उससे दूर रहे। जीवन में यदि वास्तविक प्रगति, शांति और सफलता प्राप्त करनी है तो दुर्जन का त्याग कर सत संगति और धर्म के मार्ग पर चलना ही एकमात्र सर्वोपरि उपाय है।

बड़ा होके छोटे में रोक डालता है, हा? नहीं आता है ना, नहीं आता है ना, तो जा, मैं भी नहीं जाता। कट्टी बोल गया ना, कट्टी कट्टी कट्टी।

शतौ मानव समाजका मूल आधार परस्पर सहयोग सहानुभूति और सहअस्तित्व की भावना पर टिका है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके जीवन की सार्थकता केवल स्वयं के लिए जीने में नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण में निहित है। भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में दान को परम धर्म तथा श्रेष्ठ मानवीय गुणों में स्थान दिया गया है। श्रोतो, दान का अर्थ केवल वस्तु धन या संपत्ति का किसी को देना मात्र नहीं है बल्कि इसके पीछे निस्वार्थ भाव, करुणा और सेवा की भावना का होना बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार की वस्तु को बिना किसी अहंकार या स्वार्थ के किसी जरूरतमंद को समर्पित करता है वही सच्चा दान कहलाता है। भारतीय संस्कृति और शास्त्रों में दान का महत्व भारतीय दर्शन और धार्मिक ग्रंथों में युगों युगों से दान की महिमा का गान किया गया है। श्रोतो, दान मानव जीवन का एक ऐसा दिव्य गुण है जो व्यक्ति को पशुता से ऊपर उठाकर देवत्व की ओर ले जाता है। यह एक ऐसा निवेश है जिसका फल कभी नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार जल को एक जगह रोक देने से वह दूषित हो जाता है और बहता रहने पर स्वच्छ रहता है, उसी प्रकार धन और संसाधनों को भी बांटते रहने से ही उनकी पवित्रता बनी रहती है। आज के भौतिकवादी युग में जहां स्वार्थ का बोलबाला है, दान की भावना का प्रसार होना और भी आवश्यक हो गया है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार समाज के हित में थोड़ा बहुत योगदान दे तो दुनिया में भुखमरी, अज्ञानता और दुख का अंत हो सकता है।

श्रोताओ एक नगमा और सुनते हैं फिल्म 10 नंबरी से, आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की।

0: अभी आप कार्यक्रम सुप्रभात सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में

0: रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है, जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर सामग्री सृजन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सेरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
1: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
0: नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉ. टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉ. सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
2: इंडिया इज प्राउड टू बी वन ऑफ अफ्रीका।
3: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमरीकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का रहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा निर्धारित है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई थी जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपये की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। राज्य में विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नेता देवेंद्र नाथ महतो के साथ

0: 5 प्रदर्शनकारी शामिल हो गए हैं। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। ब्लड शुगर और रक्तचाप कम हो जाने के कारण श्री महतो के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कहा है कि उनकी सरकार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर राजधानी रांची में 25 जुलाई से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी विद्यार्थी 14वें झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद हुर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकाल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजेता हेरात और विदेश सचिव अरुणी रणराजा से मुलाकात की। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। एक रिपोर्ट।
1: इस संभावित समझौते से हुर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। ईरान ने कहा कि वह हुर्मुज जलडमरू मध्य पर एक हद तक नियंत्रण चाहता है और इस मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रहेगी जैसी युद्ध से पहले थी। ईरान हुर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तरी हिस्से को जबकि ओमान दक्षिणी हिस्से को नियंत्रण करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण चाहता है। ईरान ने आगाह किया कि अमेरिका के किसी और हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: जापान के हिरोशिमा में आज परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 140,000 लोग मारे गए थे। आज सुबह घटनास्थल पर पीस मेमोरियल पार्क में मौन रखा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने परमाणु हथियारों को खत्म किए जाने की अपील की। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने SDRF, NDRF, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तराखंड आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है।
2: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। 3 जनपद जहां पे ऑरेंज अलर्ट है वहां पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
0: राज्य में मौसम के बारे में और जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता।
3: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभावित आपदा की किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य की सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों और नदी नालों की निगरानी रखने पर भी जोर दिया है। उन्होंने आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 2400 घंटे सक्रिय रखने और प्रत्येक घटने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री

0: ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जनहानि को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: मौसम विभाग ने आज झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज दोपहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। खेलों में जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज सेमीफाइनल में उड़ीसा का मुकाबला पंजाब से जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: संसद में जारी गतिरोध समाप्त करने के प्रयास के तहत संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, संसद गतिरोध, राहुल गांधी से मिले रिजिजू, परिसीमन और FCRA पर राहत तलाशने की कोशिश। जकरबर्ग ने भारत से मांगी माफी, फेसबुक से पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर आखिर झुके मेटा प्रमुख, अमर उजाला सहित कई अखबारों की सुर्खी है। पत्र लिखता है, मेटा ने माना, खास तरह का कंटेंट बढ़ाने के लिए मिली थी मोटी रकम। दैनिक जागरण ने अपने आर्थिक पन्ने पर RBI गवर्नर के शब्द प्रकाशित किए हैं, लगातार चौथी बार रेपो रेट 5.25% पर स्थिर। गवर्नर ने कहा, पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी रहा तो ईंधन और खाने पीने की चीजें हो सकती हैं महंगी। नीट होगी फुल प्रूफ, JEE तर्ज पर परीक्षा की तैयारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर युवाओं के नशे में गिरफ्त होने का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, ताकि नशे की गिरफ्त में ना आए युवा। पत्र लिखता है, भारत में करीब 75% युवा 21 साल की उम्र तक किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके हैं। परिवार और शिक्षक संजीदगी से संवाद करें तो उन्हें नशे से बचाया जा सकता है। ईरान और ओमान होर्मूज खोलने पर हुए सहमत, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, ईरान को होर्मूज पर मिल सकता है कंट्रोल। दैनिक भास्कर ने कोटा में नोनेरा एब्रा डैम के बंद होने के बाद काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ छाई हरियाली का चित्र प्रकाशित किया है, जिसमें पानी के ठहराव से नदी किनारे बसी कराइयों और हरी भरी वादियों का सौंदर्य चरम पर है।
1: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज इंडियाज एक्स्ट्रॉर्डिनरी पूल ऑफ क्रिएटिव टैलेंट कैन बी लीवरेज्ड टू स्ट्रेंथन नेशंस पोजीशन एज ग्लोबल हब फॉर कंटेंट क्रिएशन। Government extends 10 years of Cabinet Secretary T.V. Somnathan and Union Home Secretary Govind Mohan by 1 year. Students intensify their protest over irregularities in recruitment exams in Jharkhand. Uttarakhand government puts agencies on high alert following warning of heavy rain in the state. New Delhi urges Colombo to cooperate in early release of Indian fishermen detained by Sri Lankan authorities. And India safely moves 60 ships through Strait of Hormuz during Gulf crisis. And now the news in

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के पास तख्लीकी सलाहियत का गैर मामूली ज़खीरा मौजूद है, जिसे कंटेंट की तख्लीक के एक मरकज के तौर पर मुल्क की पोजीशन को मुस्तहकम बनाने के लिए बरूए कार लाया जा सकता है। सरकार ने काबीना सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन के ओहदे की मुद्दत में एक साल की तौसी कर दी है। झारखंड में भर्ती के इम्तिहानात में बेजाबतगियों के मामले पर तलबा ने अपना एहतजाज तेज कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने रियासत में मूसलाधार बारिश की पेशगोई के तनाजुर में मुतालिका एजेंसियों से सख्त चौकसी बरतने को कहा है। भारत ने श्रीलंका पर जोर दिया है कि वो भारतीय माहीगीरों और उनकी कश्तियों को जल्द छोड़ने के लिए तआवुन करे, जिन्हें उसके हुक्काम ने पकड़ रखा है।

0: भारत ने खलीज के बहरान के दौरान आबनाए हुरमुस से 60 बहरी जहाजों को बाहिफाजत बाहर निकाला है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की किस्सा गोई की मालामाल रिवायत रही है और मुल्क में तख्लीकी सलाहियतों वाले अफराद की बड़ी तादाद है, जिसका इस्तेमाल मवाद की तख्लीक के शोबे में मुल्क की पोजीशन एक आलमी मरकज के तौर पर मजबूत करने में किया जा सकता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के शरीक CEO टेड सेरेंटोस से मुलाकात की। वजीर आजम ने यह भी बताया कि मस्कुरा मीटिंग के दौरान उन्होंने भारत के मीडिया और तफरीही शोबे की ज़बरदस्त सलाहियत पर तबादला ख्याल किया। गुज़श्ता साल नई दिल्ली में कंटेंट क्रिएटर्स की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने उनसे कहा था कि वो भारत के किस्से और कहानियों को दुनिया के साथ साझा करें।
1: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे, और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
0: इस दौरान नेटफ्लिक्स इंडिया ने कहा कि मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने भारत की मीडिया और तफरीही सनत को आलमी सतह पर पहुंचाने के मुश्तरका विजन पर तबादला ख्याल किया। नेटफ्लिक्स इंडिया ने किस्सा गोई से मुतालिक पहल के आगाज का भी ऐलान किया। इस पहल में सरमायाकारी का मकसद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज IICT और नेशनल फिल्म डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन NFDC के साथ शराकत दारी और सलाहियत साजी के जरिए भारत की तख्लीकी सलाहियत वाले अफराद की अगली नस्ल को फरोग देना है। सरकार ने काबिना सेक्रेटरी डॉक्टर TV सोमनाथन के ओहदे की मुद्दत में एक साल की तौसी कर दी है। तकर्रुरी से मुतालिक काबिना कमेटी ने इसकी मंजूरी दी है। इस तरह वो इस महीने की 30 तारीख से मजीद एक साल तक काबिना सेक्रेटरी के फराइज अंजाम देंगे। काबीना कमेटी ने दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन के ओहदे की मुद्दत में भी एक साल की तौसी की मंजूरी दी है। लोकसभा में ऐवान के आज के कामकाज में टैक्सेशन और दीगर कवानीन में तरमीम से मुतालिक बिल 2026 गौर व खौस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मजकूरा बिल का मकसद अदायगियों और तस्वीये के 2007 के एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 2025 और फाइनेंस एक्ट 2026 में तरमीम करना है। उधर राज्यसभा में अखराजात से मुतालिक बिल नंबर 3 गौर व खौस और मंजूरी के लिए पेश किया जाना है। लोकसभा इसे पहले ही मंजूर कर चुकी है। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के मामले पर तलबा ने अपना एहतजाज तेज कर दिया है। झारखंड असेंबली के आज से शुरू होने वाले मानसून इजलास से कबल दो खवातीन समेत एहतजाज करने वाले 5 अफराद झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चे के लीडर देवेंद्र नाथ महतो के साथ शामिल हो गए हैं, जो पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। महतो की ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर काफ़ी कम होने के तनाजुर में उनकी सेहत तशवीश का मामला बन गई है। रियासत के वजीर आला हेमंत सोरेन ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार तलबा के मसाइल हल करने की पाबंद है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पूरी संजीदगी के साथ इस मामले पर काम कर रही है। जनाब सोरेन ने यह भी कहा कि मुतालिका एजेंसियां दिन रात तफ्तीश का काम कर रही हैं और कसूरवार अफराद को जेलों में भेजा जा रहा है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC इस्लाहात मंच के परचम तले एहतजाज 25 जुलाई को शुरू हुआ था। मुजाहिरीन का कहना है कि बार बार की अपीलों के बावजूद किसी तरह की ठोस कार्रवाई करने में सरकार के नाकाम रहने के बाद उन्हें एजिटेशन करने का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। ये मुजाहिरीन 14वें झारखंड PSC सिविल सर्विसेज इम्तिहान मनसूख किए जाने और भर्ती के इम्तिहान में मुबैना बेजाबतगियों की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश होने का सिलसिला जारी है। देहरादून, चमोली और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वार्निंग के मद्देनज़र देहरादून और कुछ दीगर ज़िलों में 12वीं क्लास तक के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी मराकज़ में आज छुट्टी का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली इंतजामिया और बाज़ाबादकारी महकमे की तैयारियों का जायज़ा लिया। उन्होंने सभी मुतालिका महकमों को हिदायत दी कि वो लगातार

0: बारिश होने और रियासत के बाज़ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के इम्कान के मद्देनज़र सख्त चौकसी बरतें। उन्होंने SDRF, NDRF, ज़िला इंतज़ामिया और दीगर एजेंसियों से कहा है कि वो करीबी तालमेल कायम रखें और किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर राहत और बचाव कार्रवाई को यकीनी बनाएं। वहाँ के बाशिंदों और सयाहों को ये सलाह दी गई है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करें और किसी भी तरह के सफ़र पर बाहर निकलने से पहले मौसम और सड़क रास्तों के बारे में ताज़ा जानकारी हासिल करें। हमने रियासत में हाई अलर्ट जारी किए जाने के बारे में कुदरती आफात से पैदा सूरत हाल से निमटने और बाज़ाबादकारी महकमे के सेक्रेटरी विनोद कुमार सुमन से बात की।
1: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। तीन जनपद जहां पे ऑरेंज अलर्ट है वहां पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। दिल्ली के बाज़ हिस्सों में भी आज सुबह बारिश हुई। मौसमियात महकमे के मुताबिक कौमी राजधानी में आज दिन में भी कुछ मकामात पर औसत बारिश होने का इम्कान है। भारत ने श्रीलंका पर जोर दिया है कि वो भारतीय माहीगीरों और उनकी कश्तियों को जल्द छोड़ने में तावुन करे जिन्हें उसके हुक्काम ने पकड़ रखा है। साथ ही भारत ने ये बात दोहराई है कि तवील अरसे से चले आ रहे इस मामले से निमटने के लिए इंसानी हमदर्दी का रवैया इख्तियार किया जाना चाहिए। श्रीलंका के रहनुमाओं के साथ खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के तबादले ख्याल के दौरान ये मामला खासतौर पर जेर गौर आया। जनाब मिस्री एक दिन के दौरे पर कल कोलंबो पहुंचे थे। उन्होंने श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके, वजीर आजम हरिनी अमरसूरिया, वजीर खारिजा और खारिजा सेक्रेटरी के साथ अलग अलग मुलाकात की। माहीगीरों का मामला भारत और श्रीलंका के दरमियान ताल्लुकात में एक अहम मामला रहा है। सरकार ने कहा है कि मगरबी एशिया के खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल कशीदा होने के बावजूद आबनाए हुरमुस से 60 माल बरदार बहरी जहाज़ों को बाहिफाजत बाहर निकाला गया। पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खलीज के खित्ते से 3972 भारतीय मल्लाहों को वापस लाया गया। साथ ही बोहरान से निमटने से मुतालिक दिन रात काम करने वाले निज़ाम के जरिए लोगों के मुश्किल में घिरे हुए हालात के ताल्लुक से फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स पर कार्रवाई की गई। ईरान ने कहा है कि आबनाए हुरमुस के मामले पर ओमान के साथ समझौता तय करने का काम हतमी मरहले में है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस हफ्ते समझौते का ऐलान किया जा सकता है। ऐसा होने पर अहमियत की हामिल आबी गुजरगाह फिर से खुल जाएगी, आलमी मईशत पर दबाव कम हो जाएगा और जंग के खात्मे में मदद मिलेगी, लेकिन ईरान की बंदरगाहों पर अमरीका की नाकाबंदी हटाने के ताल्लुक से इसमें गैर यकीनी की कैफियत का इम्कान है। ट्रंप इंतजामिया ने इससे कबल ऐसे किसी भी मुआहदे के इम्कान को रद्द कर दिया था जिससे आबनाए हुरमुस पर ईरान की गिरफ्त मजबूत हो सकती हो, जो अमरीका के लिए एक बड़े नुकसान के मुतरादिफ होगा और आलमी जाब्तों से भी इन्हिराफ होगा। ईरान ने आबनाए हुरमुस के मामले पर कंट्रोल के कुछ इकदामात पर यह कहते हुए इसरार किया है कि वो एक खुली बैनुल अक्वामी आबी गुजरगाह के ताल्लुक से पीछे नहीं हटेगा जैसा कि ये जंग से पहले थी। अमरीकी कांग्रेस के इंतखाबात से कबल जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप पर दबाव बढ़ता जा रहा है। उधर ईरान की वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ओमान के साथ समझौता तय करने का काम आखिरी मरहले में है और बज़ाहिर अमरीका की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बाज़ फरीक इस अमल में रुकावट नहीं डालते तो एक मुश्तरक बयान जारी किया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को ये सलाह दी है कि वो अपने कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के इलाके में खून खराबा बंद करे और अपनी सरजमीन पर काम करने वाले दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के खिलाफ ठोस, मोतबर और पुख्ता कार्रवाई करे। नीज उन सभी भारतीय इलाकों को फौरी तौर पर खाली करे जिन पर उसने जबरन और गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। नामनिहाद यौम इस्तेहसाल के ताल्लुक से पाकिस्तान के वजीर खारिजा के तबसरे पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि ढोंग दिखावे और बनावटी इकदाम से दुनिया को गुमराह नहीं किया जा सकता। भारत ने नामनिहाद यौम इस्तेहसाल मनाने की पाकिस्तान की कोशिशों को वाज़े तौर पर मुस्तरद कर दिया है।

जनाब जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके भारत का अटूट हिस्सा हैं और रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 5 अगस्त को 2019 को जो आईनी तब्दीलियां की गई थीं वो भारत का पूरी तरह अंदरूनी मामला है। आज दुनिया भर में हिरोशिमा जापान में किए गए एटमी बम हमले के मुतासरीन को याद किया जा रहा है। इस हमले के नतीजे में हज़ारों की तादाद में अफराद फौरी तौर से हलाक हो गए थे और साल 1945 के आखिर तक 1,40,000 हलाकतें हुई थीं। आज सुबह पीस मेमोरियल पार्क में मुनक्किद एक तकरीब में इस सानहे को याद किया गया और इसकी याद में थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार की गई। इस यादगारी मकाम पर एक दस्तावेज़ को भी रखा गया जिसमें 3,53,639 मुतासरीन के नाम दर्ज हैं। इस तकरीब में शामिल रहनुमाओं ने न्यूक्लियाई हथियारों को ख़त्म करने की अपील की जिसकी इस हमले में बच जाने वाले अफराद पुरजोर वकालत करते आए हैं। इन अफराद को हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है। इस हमले के 3 दिन बाद नागासा

0: सरकारी मकाम पर एक दस्तावेज को भी रखा गया जिसमें 3,53,639 मुतासिरीन के नाम दर्ज हैं। इस तकरीब में शामिल रहनुमाओं ने न्यूक्लियाई हथियारों को ख़त्म करने की अपील की जिसकी इस हमले में बच जाने वाले अफराद पुरजोर वकालत करते आए हैं। इन अफराद को हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है। इस हमले के 3 दिन बाद नागासाकी पर एटमी हमला किया गया था जिसके बाद दूसरी जंग अजीम ख़त्म हो गई थी। हॉकी में कल तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर में जारी 16वीं भारतीय जूनियर मर्दों की कौमी चैंपियनशिप के डिवीजन ए मुकाबलों में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमें अपने क्वार्टर फाइनल मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। पंजाब ने कर्नाटक को 5-2 से, ओडिशा ने हरियाणा को 5-1 से हराया जबकि झारखंड ने उत्तर प्रदेश को 3-3 से बराबरी के बाद शूटआउट में शिकस्त दी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले सभी उर्दू अखबारात ने बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना की दिल्ली में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप ने साबिक वजीर आजम के हवाले से सुर्खी लगाई है, चाहे जो भी हो जाए अपने लोगों के पास जाऊंगी, ये वो बांग्लादेश नहीं है जो हमने बनाया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एक वीडियो हटाने के मामले में मार्क जुकरबर्ग ने हुकूमत से माफ़ी मांगी, ये खबर भी अखबारात पे नुमाया है। यूपी असम्बली का मानसूनी इजलास कबल अज़ वक्त गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी, हुकूमत ने अपोजिशन पर अवामी फलाही उमूर पर बहस रोकने का इल्ज़ाम आयद किया है। इनकलाब ने इस खबर को कौमी सफ़े पर जगह दी है। अखबारात की अहम बैनुल अक़वामी खबरें इस तरह हैं। अबनाए हुर्मुज़ में महफूज बहरी रास्ते पर ईरान और ओमान मुत्तफिक।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के पास तख्लीकी सलाहियत का गैर मामूली ज़खीरा मौजूद है जिसे कंटेंट की तख्लीक के एक आलमी मरकज़ के तौर पर मुल्क की पोजीशन को मुस्तहकम बनाने के लिए बरूए कार लाया जा सकता है। सरकार ने काबीना सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन के ओहदे की मुद्दत में 1 साल की तौसी कर दी है। झारखंड में भर्ती के इम्तहानात में बेजाबतगियों के मामले पर तलबा ने अपना एहतजाज तेज कर दिया है। भारत ने श्रीलंका पर जोर दिया है कि वो भारतीय माहिगीरों और उनकी कश्तियों को जल्द छोड़ने के लिए तावुन करे जिन्हें उसके हुक्काम ने पकड़ रखा है। और भारत ने खलीज के बहरान के दौरान आबनाए हुर्मुज से 60 बहरी जहाज़ों को बाहिफाजत बाहर निकाला है। इसके साथ ही ये खबरनामा ख़त्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में सुनते हैं आज भजन।

सुगम संगीत में आप सुन रहे हैं भजन। आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये भक्ति रचना।

0: अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम में भजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 9 बजने को है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा में आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भविष्य के लिए तैयार शिक्षा प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन व्यवस्था लागू होने से समय संसाधन तथा धन की बचत होगी और प्रदेश के भरतपुर जयपुर और कोटा संभाग में आज से मध्यम से तेज बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। इससे पहले कल संसद ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया, वहीं लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि

0: देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भविष्य के लिए तैयार शिक्षा प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए चल रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के लिए नई निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली है। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि नई व्यवस्था में प्रदेश के 41 जिलों को 8 क्लस्टरों में बांटा गया है और एक बीमा कंपनी को अधिकतम 2 क्लस्टर ही दिए जाएंगे। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। नई व्यवस्था में पहली बार आधुनिक तकनीक के उपयोग से फसल नुकसान का आकलन अधिक पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। बीमा कंपनियों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं। किसानों को 7 दिन के भीतर बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। राजस्थान पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर स्लेवरी और मानव तस्करी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह युवाओं को विदेश में नौकरी का झांसा देकर कंबोडिया और म्यांमार सहित कई देशों में भेजता था। वहां उनके पासपोर्ट जब्त कर उन्हें साइबर ठगी करने के लिए मजबूर किया जाता था। जांच में सामने आया है कि आरोपी फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल और क्रिप्टो निवेश के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच जारी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR News और Facebook AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन व्यवस्था लागू होने से समय, संसाधन और धन की बचत होगी, साथ ही विकास और जनकल्याण के कामों को लगातार गति मिलेगी। ये बात उन्होंने राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनैतिक प्रतिनिधित्व आयोग के सदस्यों से मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय निकाय चुनाव समय पर कराने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बद्ध है। इस दौरान आयोग की ओर से मुख्यमंत्री को पंचायती राज और नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रतिवेदन सौंपा गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह आज जयपुर के राधा गोविंद राजकीय महाविद्यालय में युवा मतदाताओं से संवाद करेंगे। आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों के मद्देनजर आयोजित इस कार्यक्रम में वे लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी, मतदाता जागरूकता और मतदान के महत्व पर विचार साझा करेंगे। ये पहला अवसर होगा जब राज्य निर्वाचन आयुक्त किसी महाविद्यालय में विद्यार्थियों के बीच सीधे संवाद करेंगे। प्रदेश में 141,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान का संकल्प लिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जयपुर में राष्ट्रीय अंगदान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। श्री खींवसर ने बताया कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में अंगदान के लिए अलग इकाइयां स्थापित की गई हैं तथा 181 हेल्पलाइन और स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल के माध्यम से भी अंगदान की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का अंगदान 8 से 9 लोगों को नया जीवन दे सकता है और समाज को इस दिशा में आगे आना चाहिए।
2: लिवर, किडनी वगैरह ये ऐसी चीजें हैं कि आप कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो बहुत ही क्रिटिकल केसेस को जो बचा सकता है। उसके अंदर जिंदगी है बहुत, जो है कई चिराग जलेंगे और इसमें सबसे ज्यादा हिम्मत जो है जो

0: डोनेशन दे रहा है अपने लिवर और इनका अंगदान जो कर रहा है, उसके जो परिजन जो है ना, उनकी हिम्मत बहुत मजबूत होनी चाहिए, इसलिए उनको बताना बहुत जरूरी है।
1: समारोह में अंगदान करने वाले 12 परिवारों, 10 ट्रांसप्लांट एथलीट्स तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले भीलवाड़ा और झुंझुनू के जिला कलेक्टरों को सम्मानित किया गया। और अब मौसम। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। आज भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में मध्यम से तेज बरसात हो सकती है। कहीं कहीं भारी बारिश के भी आसार हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार खैरथल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा और सवाईमाधोपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में तेज हवा के साथ मध्यम से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इन स्थानों पर निचले इलाकों में जल भराव हो सकता है। विभाग ने लोगों से निचले इलाकों, जल भराव संभावित स्थानों, अंडरपास से गुजरते हुए विशेष सावधानी बरतने का सुझाव दिया है। साथ ही जल भराव वाले क्षेत्रों में बिजली के खंभों से दूर रहने को कहा गया है। वहीं कोटपूतली, बहरोड, जयपुर, टोंक और बारा में हल्की से मध्यम बरसात का पूर्वानुमान है। दूदू के भैराना दाम से जुड़ा पिछले 113 दिनों से चल रहा आंदोलन समाप्त हो गया है। प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच सहमति बनने के बाद जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक की मौजूदगी में आंदोलन समाप्ति की घोषणा की गई। प्रशासन ने भैराना धाम बचाओ समिति को आश्वासन दिया कि बीचून गांव में प्रस्तावित रीको औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्नियोजन में वर्षा जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक धरोहरों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही परिक्रमा मार्ग, दादूखोल और आसपास के क्षेत्र का संरक्षण करते हुए हरित वन विकसित किए जाएंगे। बीकानेर में नेशनल हाईवे 62 पर कल एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हो गई। यह हादसा लून करणसर कस्बे में उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार कार एक डंपर से टकरा गई। कार में सवार ये सभी लोग किसी समारोह में शामिल होने के लिए बीकानेर जा रहे थे। पुलिस ने क्षतिग्रस्त डंपर को जब्त कर लिया है तथा चालक की तलाश की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने भविष्य के लिए तैयार शिक्षा प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन व्यवस्था लागू होने से समय, संसाधन तथा धन की बचत होगी और प्रदेश के भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में आज से मध्यम से तेज बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मरुमंगल। आज कलाकार है पूर्ण राम मेहरड़ा।

0: अमर सगीरी माणी बेगम की गमसानी।
1: नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयाल फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।

अभी आप मरुमंगल कार्यक्रम सुन रहे थे। कलाकार थे पूर्णराम मेहरड़ा। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में सुनते हैं युगल गीत। कार्यक्रम का पहला नगमा हमने लिया फिल्म दूसरा आदमी से। आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। मधुर सुल्तानपुरी की रचना को संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम,
1: जी
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुनते हैं फिल्म अजनबी में। आनंद बख्शी की रचना को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: ए, क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना कुछ तो।
1: ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ,
0: फिर ना कभी कहना।

लता मंगेशकर और मुकेश को सुनते हैं फिल्म मिलन में। आनंद बख्शी की रचना को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: करूं।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर। हाँ, जी आर आर।

सावन को आने दो। श्रोताओं, सुनते हैं इस फिल्म में जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की आवाज में, गीत रचना गुहार कानपुरी की और संगीत राज कमल का।

महेंद्र कपूर और बलबीर की आवाज में सुनते हैं फिल्म मेरे हम सफर का ये नगमा। आनंद बख्शी की रचना को संगीत से स्वारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। फिल्म संगीत में सुन रहे थे युगल गीत। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। आज के फनकार हैं गायक किशोर कुमार। ये कार्यक्रम का पहला नगमा फिल्म शोले से।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हमने लिया फिल्म राजपूत से। गीत लिखा आनंद बख्शी ने और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

आनंद बख्शी की रचना को सुनते हैं। संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और फिल्म का नाम है कटी पतंग।

आज के फनकार कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज आपके साथ में मैं देवेंद्र शर्मा। श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म कुदरत से मधुर सुल्तानपुरी की रचना को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

मेरे जीवन साथी। श्रोताओ सुनते हैं इस फिल्म का नगमा। नगमा गा रहे हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीत आर डी बर्मन का।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज के फनकार हैं किशोर कुमार। कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म आराधना से, गीत लिखा आनंद बख्शी ने और धुन SD बर्मन की।

मजरू सुल्तानपुरी की रचना को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और फिल्म का नाम है बुढ़ा मिल गया।

आज के फनकार कार्यक्रम में इस समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज के फनकार थे गायक किशोर कुमार। श्रोतो, कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म कटी पतंग से आनंद बख्शी की रचना को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

आज के फनकार। अभी आपने फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम सुना। आज के फनकार थे गायक किशोर कुमार। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलो हर्ट्ज, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DRM चैनल 909 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 11 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम अनुरोध गीत। सभी साथियों की सेवा में नमस्कार। आज संजय बैद की ओर से दोस्तों नए नए गीत, नई नई फरमाइश और आज का नया प्रोग्राम लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। आपकी ढेरों फरमाइशें हम तक पहुंच चुकी हैं जिन्हें आज के इस प्रोग्राम में आवश्यक रूप से शामिल किया जाएगा और आपकी पसंद पूरी की जाएगी। शुरुआत करें कार्यक्रम के इस पहले गीत के साथ। ये फिल्म बैराग गीत को गाया आशा भोंसले के साथ मोहम्मद रफ़ी ने, बोल लिखे आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आप सब साथियों की है। गांव रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहिरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन और शमसुल। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर, श्विटी छाबड़ा। रायसिंह नगर से हमारे साथी हैं सोहनलाल जांगीड़, मंजू जांगीड़, रवि, संजय, शिव प्रकाश और सुनील जांगीड़। प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा MP से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी के साथ फागुनी जोशी। जिला मुरादाबाद गांव दुल्लापुर UP से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। ये फरमाइश हम तक पहुंची है सनावद से शेख मुसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना की। सुल्तानपुर UP से यशमित यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह। गांधी गांव गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी। डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये के साथ तमन्ना गजभिये। आप सब सुने बैराग फिल्म का ये नगमा।

गांव खोखरावाली से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास रोशनी और शगुन बारासा, आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति, पवनीत, विक्रमजीत ग्रोवर, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरव, सायना और निवान शर्मा, दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा, ये फरमाइश अब तक पहुंची हैं। पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्वनी, गोविंद, टोनी, दीवान,

लव दीवान राधे, भाविक ढिंगरा, अतुल शर्मा, जिला खरगोन सनावत एमपी से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, जोसन रेडियो लिस्नर क्लब चक 15 PS से सरजीत सिंह जोसन, सरजीत कौर जोसन, गुरमन सिंह जोसन, आदर्श पाल सिंह, रोबिन सिंह, राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना, हीरामन शेंडे, किशोर धानाडे, हिम्मतराव शुंगारे, संजय कुमार गोडाम, राजेंद्र गुप्ता, दीपक कुन्हाड़े, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, जयवीर सिंह, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, विद्यालय सागर एमपी से चंद्रश गौहर, वंदना गौहर, मयंक और तन्वी गौहर। आप सब सुनिए लता मंगेशकर का गाया गीत, फिल्म का नाम है चुपके चुपके। एच डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है मंजिल, आवाज किशोर कुमार की, बोल योगेश के, संगीतकार हैं आरडी बर्मन, पसंद आप सब साथियों की है, गांव कल्याण मलका से अमृतपाल सिंह, परमिंदर संचूर और मनिंदर, गांव हिपसोगा तहसील ओसा जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सैरा बानू शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा, सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी, गांव घमंडिया से प्रमिला ढुकिया, ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, सायना, विष्णु ढुकिया और ईवा धारनिया, ये फरमाइश अब तक पहुंची है। कोटो नारायणपुर बाबा बट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित और हैप्पी राय की, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, मालवा रेडियो श्रोता संघ गांव हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सभिया जुबैर, अंजुम खान, आप सब सुनिए मंजिल फिल्म का ये नगमा।

सिद्धार्थनगर, दरियापुर, भाबली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप, अशोक येले। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु, तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। गांव कल्याण मलका, माफ कीजिए, नलेश्वर, नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नभानकर, निर्मला और विशाल नभानकर। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश, ऋषिता। मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब, बाजार रोड, मुंगसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यंश मंसूरी। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन एमपी से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मुणत, चेतन हायटा, दीक्षा और कुश मुणत। अरायन से बनवारीलाल जयपाल, विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम, पूनम चालिया। श्री गंगानगर से नेकीराम बंसीवाल, जोनी बंसीवाल, धनराज बंसीवाल। सूरतगढ़ से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका। यहीं से लेखराज श्याके, पवन कुमार, सुरजीत सिंह, रवि कुमार, कुंदनलाल श्याके, जीवराज सिंह और उदय सिंह। चक 58 एनपी रायसिंह नगर से सुल्तान राम मलखट, सरस्वती देवी मलखट, हरबंशलाल, बनवारीलाल, गोपीराम, ललित कुमार, नरेंद्र कुमार, मीनाक्षी और मोनिका। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना और दानिश आसिफ शेख। आप सब सुने कन्यादान फिल्म में लता मंगेशकर को हसरत के लिखे गीत की धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने।

गांव भंडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश योगेश, रजत बेबी गरिमा, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा, ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोवर्धन धरा, फरसाराम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भार्गव, बाबू गोरी, हसन जमानिया, जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल, मंडी बुलढाणा से शबीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुजू बाबा, आएगा अनम, मुदस्सिर हुसैन, जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, चक चौदह PSB से कुलदीप सिंह, राजविंद्र कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज वीरक, गांव ढाणी लाल खां नोहर से जावेद खां, अरमान खां, इमरान खां, सीमा बानो, विनोद खां, बठिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, ये कुछ पत्र भी हम तक पहुँचे हैं। गांव दौलतपुरा श्री गंगानगर से ईश्वरलाल जी बेनीवाल, हेमंत, भाटापारा दत्तनिक से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर दीपक, जावेंद्र कुमार वर्मा, गिद्रबा पंजाब से मंजीत तनेजा, प्रवीण तनेजा, पायल बेबी, हिनाशा, और मंडी गोलूवाला से बिजलाल चौहान, नीरज कुमार चौहान। आप सब साथी सुनना चाहते हैं फिल्म हिमालय की गोद से ये गीत, जिसे गाया मुकेश ने, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

गीत फिल्म का गीत सुनिए महेंद्र कपूर का गाया हुआ, कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में, शब्द रचना हसरत जयपुरी की और फरमाइश आप सब साथियों की, जिला कासगंज गंज डुंडवारा यूपी से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश तरड़, रामचंद्र तरड़, कपिल देव, हिमानी जाखड़, गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, श्रवण रिनवा, हंसराज भाटिया, मणिराम, रंजीत राम किरोड़ीवाल, सुरेंद्र भादु, ये फरमाइश आप तक पहुंची है। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश की, बिजनौर मोहला हलवाई यान शेरकोट से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन के साथ कविता गौड़, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा परवीन, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक, आर्यन वर्मा, सफीदों सिटी हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लवली खन्ना, रजत, लव खन्ना, कुश और इनके परिवार के लोग, कुमार हैडा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीप, नाजिया आफिया।

इब्राहिम और सद्दाम, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर और राजेंद्र कटारे, मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग, अंजनी रानी गर्ग, रवि गर्ग, शिल्पा। कुछ पत्र हम तक पहुँचे हैं। बोडूसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली, प्रियांशु साहू, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हृदय मीका, बलविंदर बीरक, जतेक वीरक और मीका वीरक, गांव झजड़ियावाला 18 जीजी से खुशीराम रनवा, बिजलाल, पालाराम, दलीप नाथ, कानाराम, सुभाष, श्रवण, आप सब सुने गीत फिल्म का ये नगमा।

0: गांव हांडीखेड़ा, जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा। कोला हनुमानगढ़ से नरेंद्र सुथार, लक्षिता, महावीर, कैलाश, युवान सुथार। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। अनूप शहर से गजानंद सारस्वत, ताराचंद सारस्वत, सोनू, पवन, साहिल, राघव, मुरारीलाल शर्मा, मदनलाल, महावीर लोहरा, ममता, मितू, किन्नू, पंकज सारस्वत और इनके परिवार के लोग। गांव 4M से कुलविंदर सिंह, सुखप्रीत, जसदीप। गांव सादेवाला सिरसा हरियाणा से रामेश्वर लाल, परमेश्वर माहर, जानवी। ये फरमाइश अब तक पहुंची हैं। संदीप मकर, ज्योति मकर, मन्नत, भरत, कमल साहनी, पिंगवाला चौक गोराया जालंधर से, मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, सेनाज अब्बासी, नवेद सुहेल और अनम यशफ अब्बासी। गांव फ्रांसी से राजकुमार डूडी, सौरभ, प्रमोद कुमार डूडी। सदुल शहर से रामकुमार रेवाड़ के साथ चंद्रकला रेवाड़। चक 10 SDP लालगढ़ जाटान से रामेश्वर लाल निरानिया, सुमन, दिव्या, नूतन, पंकज, मीरचंद, हेमू, मनीषा, बिजलाल और राम प्रताप जाखड़। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा। ये फरमाइश पहुंची है सदर बाजार कूरा वली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत और सोनम वर्मा की। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, सैना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत, सादिया। फवारा चौक सिरसला, जिला चूरू, राजस्थान से संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोमल, कार्तिक सोनगरा और इनके परिवार के लोग। श्री कर्णपुर से पवन कटारिया, समीर कटारिया, चालू कटारिया। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा के साथ अलका मिड्ढा। आप सब सुनना चाहते हैं अनजाना फिल्म का नगमा, जिसे गाया मोहम्मद रफी के साथ लता मंगेशकर ने, शब्द लिखे आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: अनजान से चल पड़े साथ हम कैसे ऐसे।

इसी गीत को सुनना चाहा था। गणेश चौक जोधपुर राजस्थान से नरेंद्र भाटी और वीना भाटी ने भी। अगला गीत फिल्म अनुराग से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। शब्द लिखे आनंद बख्शी ने, संगीतकार हैं SD बर्मन। फरमाइश आप सब साथियों की है। अनारकली बजा जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा। राजकोट से जैमिन जैन, हेतल कृष्णा, राकेश जैन, सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तनस्वी बोट, अंकित कांगड़ा, इन्होंने अपनी जगह का नाम नहीं लिखा। ये फरमाइश पहुंची है गांव भागसर सादुल शहर से मंगतराम धींगड़ा, सुमन संजना, सचिन धींगड़ा की। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला विशाल और निशा राठौड़। गांव गोविंदगढ़ मांझीवाला श्री कर्णपुर से राजू टुटेजा, उर्मिला टुटेजा, गुड्डू, जीनू, मनु, शिव शेट्टी, पाल मिस्त्री, स्माइल टुटेजा, पवन गुज्जर। ये फरमाइश हम तक पहुंची है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर। धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। गांव खारिया जिला सिरसा हरियाणा से प्रताप जिनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया। और लखवाली हेड से मास्टर भंवरलाल, कृष्णा, विशाल, राजबाला, ममता, लक्षिता, नव्या, मोहम्मद रफीक, महावीर लोहरा, मुकना राम। आप सब सुने अपनी फरमाइश पर अनुराग फिल्म का ये नगमा।

प्रोग्राम के आखिर में सुनिए प्रेम रोग फिल्म का गीत, श्रेष्ठ वाडकर और लता मंगेशकर का गाया हुआ। शब्द रचना पंडित नरेंद्र शर्मा की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फरमाइश आप साथियों की। गांधीनगर गुजरात से जी के परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष दीपल। कलाना भादरा से विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश, योगेश युद्ध कड़वासरा, किशन मायल, हनुमान सहारन, किडूराम जोया, लीला स्वामी, कुंदन जाकर, सुनील शर्मा। बागपत यूपी से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा, पूजा परिहार। कस्बा गुनौरी यूपी से फारूक अली फौजी, फराज फरीन, फरहान फारिया, ताहिरा। दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अभय कुमार सिन्हा। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नजमा बेगम हाशमी, तौफीक हाशमी, तैमूर और कलील अंसारी। सिमधर पार्क वीरम गाम से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश और सनी भावसार। खंडवा एमपी से ममता बमारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू। बेनीपट्टी मधुबनी

बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या, निवेश और नियति कुमारी, काम नली, तहसील सिवानी, जिला हिसार से सज्जन जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक, वेदांश, हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, ये फरमाइश हम तक पहुंची हैं। जोहरड़ फार्म हाउस गांव भैलोर नगर से नरेंद्र जोहरड़, भीमसेन, लोकेश, गौरव, पुनीता, आरवी, गांव पजोनिया, जिला जालौन, यूपी से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसोलिया, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, ठाकुर साहब, भोपाल एनपीसी से मनीष श्रीवास्तव, हर्षिता लाली, विमल श्रीवास्तव, आशा राधिका और इनके परिवार के लोग, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रियान, समरीन परवीन, माहिर नूर, ग्वालियर से हमारे ये श्रोता हैं सुरेश कुमार खुराना, किरण खुराना, लव्या आरव, गांव जाखोद राजस्थान से विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, मदनलाल वर्मा, हनुमानगढ़ बस स्टैंड भुज से और पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत, मनु, आप सब सुने प्रेम रोग फिल्म का ये गीत।

अनुरोध गीत। अभी आप फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये प्रोग्राम सुन रहे थे अपने रेडियो दोस्त संजय बैद के साथ। अब आज का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DRM चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर। समय मिलाइए दिन के ठीक 12 बजे हैं। आइए अब सुने हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद यानी 12:05 पर कार्यक्रम होगा कुछ बातें कुछ गीत। दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज कलाकार होंगे कैसर आजाद बैदायुनी। दिन में 12:50 पर खेत कल्याण कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय रहेगा आधुनिक विधियों से सिंचाई। 1:05 पर महिला जगत कार्यक्रम में महिलाओं के लिए आज एक परिचर्चा होगी, विषय रहेगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भाषा की मर्यादा। प्रतिभागी रहेंगे डॉक्टर अर्चना गोदारा और डॉक्टर सुचिता जैन, बातचीत करेंगे नवीन सिसोदिया। साथ ही चर्चा होगी डिजिटल होते रिश्तों पर, सावन और भारतीय संस्कृति में प्रकृति का महत्व, जानेंगे राजस्थान के प्रसिद्ध उद्यानों के बारे में और सौंठ एक नेचुरल पेन किलर, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। कुछ फिल्मी गीत आप सुन पाएंगे 2:30 पर। उर्दू सर्विस के कार्यक्रम आज प्रसारित होंगे दिन में 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। 4 बजे आप सुनेंगे फौजी भाइयों का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर। 5 बजे युववाणी कार्यक्रम में बातचीत की जाएगी हिरोशिमा दिवस के बारे में, जानेंगे आत्मरक्षा प्रशिक्षण युवतियों की सुरक्षा और आत्मविश्वास के लिए जरूरी, सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जाएगी और डिजिटल साक्षरता अभियान के बारे में भी बातचीत होगी। साथ ही होगा आज का इतिहास। सराकी का समय रहेगा शाम 6:05। शाम 7 बजे से लेकर 7:30 तक आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी, जिसे हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। शाम 7:30 पर चौपाल कार्यक्रम में आज किसान परिवारों के लिए बातचीत के विषय रहेंगे बालिका शिक्षा और संस्कार। किसान भाई जानेंगे कीटनाशकों के संतुलित प्रयोग के बारे में, साथ ही होंगे बाजार भाव और मौसम संबंधी जानकारी। रात 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। एक ही फिल्म से फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम होगा रात्रि 8:15 से लेकर 8:30 तक। गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम होगा सुगम संगीत रात 9:15 से 9:30 तक। 9:30 पर कार्यक्रम कंट्री वाइड और इनसाइट हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक लोक और सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की।

आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। दिन के 12:05 हो रहे हैं। दीजिए कार्यक्रम सुने, कुछ बातें कुछ गीत।

सभी सुनने वालों का नमस्कार संजय बैद की ओर से। दोस्तों, मानव सभ्यता ने सभ्यता के आरंभ से लेकर आज के आधुनिक युग तक अनेक आविष्कार किए हैं जिनसे हमारा जीवन सहज हो गया है, लेकिन कुछ आविष्कार ऐसे भी हैं जिनसे जो मानव सभ्यता है वो ही खतरे में आ गई है। ऐसी ऐसी अनेक हथियार बन चुके हैं जिनसे पल भर में एक मोहल्ला तो क्या, एक शहर तो क्या, एक बहुत बड़े क्षेत्र को नष्ट किया जा सकता है। और इसका जीता जाता उदाहरण हमारे सामने है। आज ही के दिन जापान के हिरोशिमा में फेंका गया पहला परमाणु बम, जिसके घाव आज भी भरे नहीं हैं। जब भी 6 अगस्त का और 9 अगस्त का दिन हम याद करते हैं, हमारे जहन में हिरोशिमा और नागासाकी की वो शहर नज़र आते हैं जहां उस परमाणु हमले ने एक ऐसा तांडव पैदा किया था जो आज भी हमारी रूह को झकझोर देता है। विज्ञान ने अनेक विनाशकारी बम और मिसाइलें तैयार कर ली हैं जो हमारी अंगुलियों पर हैं। एक स्थान पर बैठकर 2000 किलोमीटर तक हम मार कर सकते हैं और अनेक लोगों की जान उन मिसाइलों से जा सकती है। वर्तमान में जो हमारा रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है या जापान इजराइल ईरान के बीच में जो संघर्ष जारी हैं, इसका खामियाजा ना केवल उन देशों को बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। महंगाई बढ़ चुकी है, आवश्यक चीज़ों की सप्लाई रुक गई है, कितने ही निर्दोष लोग मौत की आगोश में समा चुके हैं। 21वीं सदी में जब हम AI के माध्यम से बुद्धिमत्ता के नए नए तरीके खोज रहे हैं और तब जब युद्ध की बातें होती हैं या एक दूसरे देश पर हमले होते हैं, तब मानवता भी खतरे में आ जाती है और हमारी बुद्धिमत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, सभी जानते हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। जब भी जहाँ भी युद्ध हुए हैं उसने अपनी वो गहरी काली छाप छोड़ी है जिसके अंधकार से निकलने के लिए उस मुल्क को या उस मानव सभ्यता को बरसों बरस लग जाते हैं। और जब एक बार कोई देश या समाज या कोई व्यक्ति युद्ध में कूद पड़ता है तो यदि वो समय पर वापस नहीं लौटता तो उसके जो चिन्ह हैं, उसके जो निशान हैं, आने वाली अनेक पीढ़ियों के जख्मों पर नमक की तरह छिड़कते रहते हैं। वक्त भले आगे बढ़ जाए लेकिन वो घाव सदा के लिए हरे रहते हैं और तब सिवाय पछताने के मानव के पास और कुछ भी नहीं बचता।

दोस्तों, युद्ध का सबसे क्रूर चेहरा है इंसानी जिंदगियों का नुकसान। युद्ध के मैदान में केवल सैनिक ही नहीं मरते, बल्कि उनके साथ एक परिवार का भविष्य, माता पिता की उम्मीदें, बच्चों का आश्रय भी समाप्त हो जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों से लेकर आधुनिक समय तक जो भी वैश्विक संघर्ष चल रहे हैं, युद्ध ने हमेशा उन निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया है जिनका किसी भी बात से, किसी भी राजनीति से कोई सरोकार नहीं था। मौत के आंकड़ों में चाहे मरने वालों की संख्या कितनी ही रही हो, लेकिन जो युद्ध से बच जाते हैं उनमें भी कई लोग शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग हो जाते हैं। जीवन भर उनके मन मस्तिष्क पर पश्चाताप, भय और अपनों को खोने का आघात अमिट रूप से छप जाता है। अपने अहम की लड़ाई में हजारों लाखों निर्दोष व्यक्ति घर से बेघर हो जाते हैं, उनका सब कुछ लूट जाता है। देश विकास के पथ को छोड़कर वर्षों पीछे चला जाता है। आर्थिक नुकसान जिसकी भरपाई भले संभव हो, लेकिन जान की नुकसान की भरपाई कभी भी संभव नहीं है। इसलिए युद्ध से जितना बचा जाए उतना ही सही है, क्योंकि झूठे अहम के कारण लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य दांव पर लगाना किसी भी मायने में हम सही नहीं कह सकते।

साथियों, हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसी दुनिया सौंपें जहां बारूद की गंध ना हो बल्कि शांति और समृद्धि की हवा बहती हो। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि समस्याओं का जो समाधान है वो बंदूक की गोली से नहीं बल्कि संवाद, समझ और कूटनीति से निकाला जा सकता है। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है बल्कि ये नई समस्याओं को जन्म देता है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, शांति का कोई रास्ता नहीं है, शांति ही एकमात्र रास्ता है। दोस्तों, दुनिया को युद्ध के मुहाने से हटाने के लिए बड़े बड़े नेताओं से लेकर आम नागरिकों तक सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। हमें अपनी सोच से नफरत और संकीर्णता को निकालकर अहिंसा, सहिष्णुता और प्रेम को अपनाना होगा। हथियार को बनाने की होड़ रोककर वैश्विक स्तर पर निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कूटनीतिक वार्ताओं को मजबूत किया जाना चाहिए। शांति के रास्ते और बातचीत के द्वार कभी भी बंद नहीं करने चाहिए, तभी एक ऐसी दुनिया का निर्माण संभव है जहां बंदूक की संगीने नहीं होगी बल्कि एक दूसरे से हाथ मिलाने की संस्कृति होगी और युद्ध के नगाड़ों की जगह शांति और भाईचारे के गीत गूंजेंगे।

कुछ बातें कुछ गीत। अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। दिन के ठीक 12:30 हुए हैं। आइए सुने कार्यक्रम सुगम संगीत। आज फनकार हैं कैसर आजाद बदायूनी।

0: अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम में कैसर आजाद बैदायनी को सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। दिन के 12:50 हुए हैं। खेत खलिहान कार्यक्रम में आज किसान भाइयों के लिए जानकारी का विषय है आधुनिक विधियों से सिंचाई।
1: किसान भाइयों, प्रकृति को पानी जो को है वो सारों अनमोल उपहार है, पर आज पानी संकट जो को है वो पूरे विश्व के सामने एक गंभीर चुनौती बन गया है। आपने बरगे कृषि प्रधान देश में खेती को बड़ो हिस्सों बरसात पर निर्भर है। इसे में जे उपलब्ध पानी को वैज्ञानिक ढंगों आप उपयोग करा तो कम पानी में भी ज़्यादा उत्पादन आप प्राप्त कर सका। किसान भाइयों, पानी के बिना जीवन की कल्पना आप कौन कर सका। खेती में पानी को महत्व जो को है वो बी ही है जिया बीज खाद और अच्छी किस्म को है। जे खेत में टाइम पर सही मात्रा में अपा सिंचाई कर देवा तो यूं बीजा को अंकुरण अच्छो हो सी, पौधे की वृद्धि तेज हो सी, फूल और फल ज़्यादा लगेगा, अपनी फसल को उत्पादन भी बढ़ेगा और सागे जिकी फसल की गुणवत्ता है वह किसान भाई बेहतर हो जाएगी। पहला किसान भाई जो कहा वह खेत में नहर कुआं या ट्यूबवेलों किए गए सिंचाई करता, इन पद्धति में किए गए पानी की भारी बर्बादी होती, माटी कट जानती और बिजली और डीजल को भी ज़्यादा खर्चो आंतो। सागे किसान भाइयों मजदूरी पर भी ज़्यादा खर्च आंतो और सागे सागे टाइम भी बहुत लागतो। अब क्या कह आधुनिक तकनीक ने सिंचाई अंग स्वरूप चुको है वो बदल दियो है। अब अपना किसान भाई बूंद बूंद पानी देन लाग रहा है, सागे मोबाइल मोटर चलान लाग रहा है और सेंसरों माटी की नमी मापन लाग रहा है, मौसम देख के सिंचाई करन लाग रहा है। आधुनिक खेती की पहचान है। आधुनिक सिंचाई की जिकी मुख्य विधियाँ बांगी जी आप बात करा तो सारों पहला बात करा ड्रिप सिंचाई की। इंगमा किया कह बूंद बूंद सिंचाई भी आप इन्हें कह देवा, इंगमा पाइप के माध्यम पौधे की जड़ा तक धीरे धीरे पानी पुगाई जाए और सारों उपयुक्त फसलां जिकी है वे टमाटर मिर्च अंगूर अनार केला संतरा आम और सब्जियां हैं जिका में क्या है कि ड्रिप सिंचाई ज़्यादा कारगर साबित हुई है और यूँ लाभ हो सी कि 40 से लेकर 70% तक अपने पानी की बचत रहेगी। सागी किए कि उर्वरकों की बचत हो सी, खरपतवार जगह है वह किसान भाइयों कम उगेगा और फसल उत्पादन अपनों ज़्यादा हो सी, सागी किए कि गुणवत्ता भी बेहतर हो सी। अब बात करें किसान भाइयों स्प्रिंकलर सिंचाई की तो इन वहाँ किया कि पानी फुहरे की तरह पूरा खेत में फैले और इन वास्ते उपयुक्त फसलां जिकी है वह है कणक चना सरसों मूंगफली चारा फसलां और सागी सब्जियां। अंगमा स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति जिकी है बहुत ज़्यादा कारगर पाई गई है। इनका लाभ यह हुआ है कि असमतल माटी में भी उपयोगी है और यूँ किया कि पानी जो है वो कम लगे, सागी कम मजदूरी लगे और माटी को कटाव को नहीं हुए और सिंचाई पानी की जिकी बचत है वह भी इंग सक सके हो जाए। अब बात करें किसान भाइयों रेनगन सिंचाई की। आ बड़ा स्प्रिंकलर प्रगो हुआ है और इंग में क्या खेतों में इन्हें लगाई जाए और इन वास्ते क्या बड़ा खेत होना ज़्यादा जरूरी है। विशेष तौर कणक गन्ना चारा मूंगफली में किया गया आ सिंचाई पद्धति ज़्यादा लाभकारी पाई गई है। अब बात करें किसान भाइयों माइक्रो स्प्रिंकलर की तो इंगमा किया गया फलदार पौधा और नर्सरी खातर किए गए आ अत्यंत उपयोगी है। इंगमा पौधे का आसपास हल्की वर्षा वर्गी सिंचाई हुए। अब बात करें किसान भाइयों स्मार्ट सिंचाई की तो आज तकनीक तेजियों किए गए खेती में प्रवेश कर लग रही है और अब चुका अपना किसान भाई है वह मोबाइल मोटर ने चालू भी कर लिए मोटर ने बंद भी करे और पानी को जो स्तर है बिंगी भी वह घरे बैठे ही जाँच कर लिया और सागी जिकी बिजली की स्थिति है बाबी और सब कुछ किए के वह अब जान सके। और सागी किसान भाइयों आजकल अपना जगह किसान भाई है वह माटी नमी सेंसर को भी प्रयोग करने लाग रहे है। यूँ किए कि माटी में कितनी नमी है बिंगो अपन ठा पड़ जाए और सागी किए कि सिंचाई अपन कद करनी है इंगो भी अपन ठा रहे और कितनी सिंचाई अपन करनी है इंगो भी अपन ठा रहे और यूँ किए कि पानी की बचत भी हुए। सागी किसान भाइयों बात करा मौसम आधारित सिंचाई की तो जे अगले दिना में किए मेह होना है तो सिंचाई अपन टाल सका, यूँ किया गया पानी बचे बिजली की भी बचत हुए सागे अपना उर्वरक जगह है वे पानी में बेवे को नहीं। अब बात करें किसान भाइयों फर्टिगेशन की तो ड्रिप प्रणाली का माध्यम किया उर्वरक

0: नो फर्टिगेशन के अलावा है। इक मकी है कि खाद सीधी जड़ा ताई पुगे कम मात्रा में, यूं के खाद लागे और फसल उत्पादन बढ़े सागी लागत घटे। तो किसान भाइयों बातचीत आप और कर सिया, पर पहला सुन लिया ओ संदेश।
1: नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयान फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना खुशहाल हो हर किसान अपना।
0: तो किसान भाइयों, न्यारी न्यारी फसलों में आधुनिक सिंचाई की जब आप बात करा तो सारों पहला बात करा कणक की। तो इंग माँ किया क्या जो कि सिंचाई है बा क्राउन रूट अवस्था, बिग बाद कला निकलने का टाइम, बालियां निकलने का टाइम और दाना भरने का टाइम अपन है स्प्रिंकलर उपयोगी है। और धान की जो बात करा तो अब क्या क्या डायरेक्ट सीडेड राइस और नियंत्रित सिंचाई किसान भाई अपनाने लग रहे हैं। यूँ किया क्या पानी की भारी बचत रहे, सागी किया क्या फसल उत्पादन अच्छा हुए। बात करा गन्ने की तो ड्रिप सिंचाई में आसारू उपयोगी है, इगमा किया क्या 50% तक अपनों पानी बचे। सागी किया क्या गन्ने में चीनी को जो प्रतिशत है वो भी किसान भाई यूँ बढ़ है। और सागी किया क्या ड्रिप से की है बस सब्जियां में भी सर्वोत्तम कारगर पाई गई है। फलांगी से बात करा तो आम अमरूद संतरा अनार केला ऐसा सारा ड्रिप में उत्कृष्ट परिणाम वाला पाया गया है। बात करें किसान भाइयों पानी का संरक्षण की तो आधुनिक सिंचाई यदि सफल हो सी जद आप पानी संरक्षण भी करांगा। इंगा उपाय करने खतरा पान किया कि बरसात को पानी है बिना पानी कट्ठो करना चाहिए, खेत में तालाब बनाना चाहिए, सगी मेड़बंदी और चेक डैम और रिचार्ज पिट अपन बनाना चाहिए। मल्चिंग की बात करें तो प्लास्टिक या जैविक अवशेषों माटी ढक्कन पर किया नमी बनी रहे, खरपतवार कम हुए और पानी की बचत ज़्यादा हुए। बात करें किसान भाइयों सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई की तो आज अपना जो किसान भाई है वह सोलर पंप को भी उपयोग करने लग रहे हैं। इनका विशेष लाभ यह है कि आपने बिजली की बचत रहे, बिल को नहीं आवे, सागी की है कि आपनों डीजल खर्च भी को नहीं हुए और यूँ आपनों जो पर्यावरण है वो किसान भाइयों सुरक्षित रहे और इन उपयोग जो है वो अपना किसान भाई लंबे टाइम तक कर सके। तो सरकारी योजनाएं किसान भाइयों बात करा तो सरकार जगह किसान भाइयों ने आधुनिक सिंचाई अपनाने खातर सहायता भी देवे और सरकार द्वारा जो चलाई योजना है बाकी बात करा तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, माइक्रो इरिगेशन योजना, राज्य स्तरीय अनुदान योजना, सोलर पंप योजना एक एक है आपने सरकार द्वारा चलाई है। हाँ योजना में ड्रिप स्प्रिंकलर पाइपलाइन सोलर पंप पर के अनुदान देवे और ज़्यादा जानकारी खातर के कृषि विभाग उद्यान विभाग कृषि विज्ञान केंद्र और ग्राम पंचायत वहाँ अपने संपर्क करना चाहिए। इन अलावा किसान भाइयों अपने ड्रिप प्रणाली लगाते टाइम किया गया कई प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए, जिया साफ पानी का उपयोग करना चाहिए, फिल्टर नियमित रूप से साफ करना चाहिए, पाइप की जाँच अपन करनी चाहिए, सागी किया गया जो कठी लीकेज हुआ है तो बिना पा तुरंत ही ठीक कर देना है, टेमो टाइम पर किया फ्लशिंग करनी है, स्प्रिंकल में सही अपना दबाव बनाए रखना है, नोजल साफ रखनी है, सगी हवा तेज होने पर किया अपने सिंचाई नहीं करनी चाहिए। और जो किसान भाई आधुनिक सिंचाई अपनावे तो पानी की 40 से लेकर 70% तक अपनी बचत हो जाएगी, सगी किया क्या बिजली की भी अपन बचत हो सी और जो को अपनों ईंधन पर लगने वालों खर्चो है वो भी बच जाएगा और सगी किए ज़्यादा अपन मजदूर वगैरह को लगाना पड़े यानी अपनी श्रम लागत भी कम रहे सी। सगी जो का अपना उर्वरक है वह अपन को रेड़ना पड़े बाकी भी अपनी बचत रहे सी और उत्पादन में किए का अपनी वृद्धि रहे सी। सागी जी की अपनी फसल है बिंगी गुणवत्ता जी की है वह बेहतर हो सी और यूं के किसान भाइयों को आर्थिक स्तर भी सुधरेगा। और किसान भाइयों आज मौसम की है लगातार बदलने लग रही है, कभी सूखो कभी ज़्यादा मेघ कभी लंबे टाइम तक गर्मी, इसी परिस्थिति में आधुनिक सिंचाई किसान भाइयों खातर सुरक्षा कवच बन सके, कम पानी में ज़्यादा उत्पादन ही भविष्य की खेती है। तो किसान भाइयों आज को टेम ही तो ही देव आज्ञा, राम राम सा राम राम।
2: आधुनिक विधियों से सिंचाई खेत खलियान कार्यक्रम में अभी किसान भाई इस विषय पर जानकारी सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है, दिन का 1 बजने वाला है, अब से कुछ ही पलों में

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। ब्रिक्स देशों के उद्योग और वाणिज्य मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू हो रही है। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों का समूह वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने, सदस्य देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेगा। बैठक में भाग लेने के लिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज जयपुर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बैठक में मिले सुझावों को सितंबर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के नेताओं के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि जयपुर की ये बैठक आर्थिक सहयोग को नई दिशा देगी। लोकसभा की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले आज सुबह सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कल सलूम्बर जिले के दौरे पर रहेंगे। वे जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। बैठक में विभिन्न विभागों के कामकाज, लंबित प्रकरणों और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा होगी। इस दौरान अधिकारियों के साथ जिले के विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की जाएगी। दौरे के बाद राज्यपाल सड़क मार्ग से उदयपुर के लिए रवाना होंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं सहित समकक्ष बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने का आज अंतिम दिन है। इसके बाद विद्यार्थियों को विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक बोर्ड को 10वीं 12वीं प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 14 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। बारह में कल तेजस कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में युवाओं, विद्यार्थियों, स्टार्टअप संस्थापकों और नवाचारकर्ताओं को उद्यमिता तथा स्टार्टअप से जुड़े नए अवसरों की जानकारी दी जाएगी। कार्यशाला का उद्देश्य जिले में नवाचार आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देना और युवाओं को स्टार्टअप इंडिया की विभिन्न योजनाओं से जोड़ना है। ये कार्यशाला स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत आयोजित की जा रही है। पाली जिले में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग का घर घर सर्वे और एंटी लार्वा अभियान जारी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मारवाल ने बताया कि अभियान के तहत चिकित्सा दल घर घर जाकर मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट कर रहे हैं, संभावित रोगियों की पहचान कर जांच और उपचार की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही लोगों को डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव के उपाय भी बताए जा रहे हैं। उन्होंने आमजन से हर रविवार को ड्राई डे मनाकर घरों में पानी जमा नहीं होने देने की अपील की है। प्रदेश में मॉनसून के प्रभाव से पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में मध्यम से भारी, जबकि पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर जिले के कुम्हेर में सबसे अधिक 14 सेंटीमीटर, रूपबास में 13 और अलवर जिले के गोविंदगढ़ में 13 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर और कोटा संभाग के कई क्षेत्रों में अच्छी बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। रेलवे ने आदर्श

0: रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है महिलाओं के लिए उनका कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को रजनी मोदी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, सावन का महीना चल रहा है और बारिश की उम्मीद तो सभी को है, क्योंकि ये महीने का जो आनंद है ना, वो बारिश से ही है। भले ही महीना सावन का हो, लेकिन ठंडी ठंडी फुहारें जब हमारे ऊपर गिरती हैं तो दिन का आनंद ही कुछ और हो जाता है। और उस आनंदित मन में जो चल रहा होता है, उसे लेकर जब हम भोजन बनाती हैं या पूरे दिन का जो हमारा रूटीन होता है उसे कंप्लीट करती हैं, तो उसके रिज़ल्ट भी कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे आते हैं। यानी सावन का महीना सबको आनंदित करने वाला है और इस हरियाली सावन की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बहनों, आज आपके सामने फिर से आपको सुनवाएंगे, बहुत सारी बातें सुनेंगे आपसे और शेयर करेंगे आपसे अपने मन की बातें, और उसके साथ ही एक परिचर्चा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भाषा की मर्यादा जिसका विषय है, और चर्चा करेंगी, इस विषय पे बात करेंगी डॉक्टर अर्चना गोदारा व डॉक्टर सुचेता जैन। नवीन जी इन दोनों से बात करेंगे और आप उनको सुन के अपने जीवन में अमल ला सकती हैं। उसके अलावा हम ले चलेंगे आपको फिल्मी दुनिया में, जहां आपके और हमारे दोनों की पसंद के बहुत से प्यारे प्यारे गीत होंगे। शुरुआत करते हैं आज का जो विषय है, डिजिटल होते रिश्ते। मैनू हम गीत अक्सर गुनगुनाया करते हैं, सुनते हैं, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये बंधन तो प्यार का बंधन। बिल्कुल बहनों, रिश्ता जो होता है उसमें जब तक प्यार नहीं हो तो वे रिश्ते रिश्ते नहीं होते। टेक्नोलॉजी ने जहां हमें पूरी दुनिया से जोड़ दिया, वहीं हमारे करीबी लोगों से दूर भी कर दिया। बहनों, जितना हम बाहरी दुनिया से जुड़ते जा रहे हैं, उतना ही शायद अपने घर से कटते भी जा रहे हैं। डिजिटल क्रांति ने व्यक्ति के संबंधों को पूरी तरह से बदल दिया है। ये तकनीक हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित कर रही है। बहनों, पारिवारिक संबंध और मित्रता जो ऐतिहासिक रूप से आमने सामने बैठने से आगे बढ़ती है, अब सब तकनीक ने ले ली है। बहनों, बात डिजिटल होते रिश्तों की हो रही है। हालांकि तकनीक ने नए संपर्कों के द्वार भी खोले हैं, इससे हम मना नहीं कर रहे हैं। घर बैठे बहुत सारे उच्च तकनीक के काम किए जा सकते हैं, लेकिन पारंपरिक संबंधों के लिए केवल दिखावा बनकर रह गया ये डिजिटल टेक्निक। रिश्तों में आई कांटेक्ट कम होता जा रहा है। आमने सामने बैठ के जो आंखों में आंखें मिला के जो प्यार जताया जा सकता है या जो बात हम कर सकते हैं, वो भला एक छोटा सा मोबाइल कैसे उसको एक संप्रेषण पैदा कर सकता है। मोबाइल ने हमें ऐसे जकड़ रखा है कि अपने अपने कमरों में बैठे भी हम एक ही घर में रहकर अन्य सदस्यों से फ़ोन पे बात कर रहे हैं। भला क्या समय आ गया है, वो भी समय था जब सब लोग इकट्ठे होकर अपने दुख सुख सभी से साझा किया करते थे, और बहनों मानो ना मानो उसी एक चर्चा के दौरान उन्हीं दुख सुख का हल भी हो जाता था। लेकिन

ये टेक्निक ही ऐसी है कि हम सबको सुख मिलने लगा है इससे। कई बार फिजिकली भले ही हम आमने सामने ना बैठे ही हों, लेकिन ध्यान मोबाइल या लैपटॉप पर ही रहता है, यानी साथ रहकर भी हम साथ नहीं होते। बिन वैसे कैसे हम एक दूसरे को समझ पाएंगे? ये दूरी आखिर कब तक? इन रिश्तों में ये जो दूरियां होती जा रही हैं, क्या ये दूरियां नज़दीकी में लाना ज़रूरी है या फिर टेक्निक को फॉलो करना? ज़रा विचार करिएगा।

ये दुनिया के बदलते रिश्ते न जाने कैसे बदल जाते हैं पल में। मैनू पता तो हम सबको है, लेकिन कारण जानकर निवारण नहीं कोई करना जानता। बस एक सुविधा जो मिली हुई है उसी को फॉलो करके रिश्ते बैलेंस हो रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम परवाह करना छोड़ चुके हैं। शायद इसी वजह से ये पल वाला जो बात आती है ना कि पल में कैसे बदलते हैं, शायद यही वजह मूल है कि पल में रिश्ते बदल जाते हैं। मैनू एक वक्त था जब शाम को खाना खाते वक्त घर के सभी सदस्य दिन भर के अपने अनुभवों को एक दूसरे से शेयर करते थे, लेकिन आज आज ये नज़ारा बदल गया है। आज घर के ज़्यादातर सदस्य अपने अपने मोबाइल पर बिजी रहते हैं। कोई भी त्यौहार आता है उससे पहले सभी मिलकर उसकी तैयारी करते हुए त्यौहार के दिन भरपूर आनंद लेते थे, क्योंकि उस उत्सव में सभी का योगदान होता था। किसी ने कुछ किया, किसी ने कोई काम किया, तो वो क्या उस चीज़ का आनंद लेते थे। आज किसी को समय ही नहीं है राय करने का। जो कुछ करना है बस मोबाइल से देख कर कर लो, और कुछ देर की औपचारिकता के बाद सब सोशल मीडिया पर अपनी अपनी पोस्टें डालने में व्यस्त हो जाते हैं। ये मोबाइल इंटरनेट की सुविधा तो बहनों शायद विदेश में बैठे हमारे रिश्तेदार भाई बहनों से बात करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन हम लोग इतने डिजिटल हो गए कि साथ बैठे यानी कुछ दूरी पर रहने वाले रिश्तेदार से भी फोन पर ही आधे घंटे बात कर लेते हैं, लेकिन जाने की कोशिश नहीं करते। बहनों ऐसे कैसे वो पहले जैसा प्यार बनेगा रिश्तों में? थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखें, बस ज़्यादा नहीं। खाना खाते वक्त परिवार के सदस्य साथ बैठें और शर्त रखें कि जब साथ हों और विशेषकर खाना खा रहे हों उस वक्त मोबाइल का यूज़ नहीं करेंगे। फिर देखना धीरे धीरे वो बात, वो अपनापन अच्छा लगने लगेगा और स्वतः ही मोबाइल की आदत कुछ देर के लिए छूट जाएगी।

0: मेनू कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लीजिए, अब सुनते हैं परिचर्चा। विषय है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भाषा की मर्यादा। विषय पर डॉक्टर अर्चना गोदारा व डॉक्टर सुचेता जैन के साथ बात कर रहे हैं नवीन सिसोदिया जी।
1: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी के इस विशेष परिचर्चा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचारों को व्यक्त करने की आजादी व्यक्ति को अपनी बात कहने, प्रश्न उठाने और समाज के विकास में सक्रिय भागीदारी का अवसर प्रदान करती है। किंतु जब अभिव्यक्ति भाषा का रूप लेती है तब उसके साथ शालीनता, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व जैसे मूल्य भी जुड़ जाते हैं। आज जब सूचना प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया का युग है, इस समय हर व्यक्ति के पास अपनी बात कहने का एक मंच है। ऐसे समय में यह प्रश्न और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित होनी चाहिए अथवा भाषा की मर्यादा उसके लिए आवश्यक नैतिक एवं सामाजिक आधार है। क्या निर्भीक अभिव्यक्ति और संयमित भाषा एक दूसरे के पूरक हैं या फिर इन दोनों के बीच टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज बात करने के लिए हमारे आकाशवाणी सूरतगढ़ के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सुचिता जैन। आप LLB, LLM, PhD हैं विधि से, आप लीगल एजुकेटर हैं और रिसर्चर हैं। साथ ही हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर अर्चना गोदारा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर है समाजशास्त्र की, साथ ही आप साइकोलॉजिकल काउंसलर भी हैं। पहले आप दोनों का

0: हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: सुचेता जी। जब अभिव्यक्ति की बात आती है तो उचित है कि स्वतंत्रता उसमें होनी चाहिए, और वो स्वतंत्रता हमको मिलती किस प्रकार है वो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है और उसका दायरा कितना है, आप इसके बारे में हमें बताइए।
1: जी, भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे कि हम सब जानते हैं, आर्टिकल 19(1)(a) में हमें दी गई है। स्वतंत्रता का अर्थ, या फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं कि हमें मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, इसका अर्थ केवल ये नहीं कि आपको कुछ भी करने की असीमित आजादी दी जाती है। यही बात वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आती है। हमें समझना होगा कि जब हमारे संविधान निर्माता इसके बारे में, इसे फंडामेंटल राइट्स में जब लिख रहे थे, तो इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी।
0: जी।
1: क्योंकि हम हमारे देश को एक लोकतंत्र बनाना चाहते थे, और लोकतंत्र का पहला उसूल है कि जनता को सवाल पूछने का हक दिया जाएगा। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये कभी नहीं था कि आपके मन में जो आए आप वो बोलेंगे, बल्कि इसका अर्थ था कि आप सवाल करेंगे, सवाल उनसे जो देश चला रहे हैं, सवाल उनसे जिन्हें आप चुनकर भेज रहे हैं, जिन्हें आप देश की प्रगति के लिए खड़ा कर रहे हैं, उनसे सवाल करने का आपको अधिकार दिया जाएगा। तो 19(1)(a) हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है राज्य के अगेंस्ट, कि राज्य हमारी आवाज को नहीं दबाएगा अगर हम 19(2) के तहत उस सीमा में रहते हुए अपनी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हैं। 19(2) बहुत सारी बाध्यताओं के बारे में बात करता है कि हम अपनी स्वतंत्रता का एक्सट्रीम प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे कि हम संप्रभुता को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हम किसी की डिसेंसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हम डेफामेटरी कोई स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, हम देश की इंटेग्रिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो फंडामेंटल राइट, जहां हमें एक तरफ अधिकार देते हैं कि आप वाक एवं अभिव्यक्ति के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं, तो दूसरी तरफ 19(2) हमें बांधता है कि आपकी इस अधिकार पर संयम लगाना आवश्यक है, तभी लोकतंत्र जीवित रह सकता है।
0: जी बिल्कुल, बहुत ही सरल शब्दों में आपने बता दिया कि किस प्रकार हमारा जो संविधान है वो हमें एक तरफ आजादी देता है और साथ ही हमें अंकुश भी लगाता है कि आपको आजादी इतनी नहीं दी गई है कि आप पूर्णतः निरंकुश हो जाएं। क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्णतः निरंकुश भी हो सकती है, या उसकी कोई मोरल सीमाएं भी होती है?
2: जी, जब हमें लोकतंत्र आजादी देता है बोलने की, तो वो केवल हमें अधिकार नहीं देता, वो हमें बहुत सारे कर्तव्य भी देता है। और सामान्यतः हम अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों की बात भूल जाते हैं।
0: जी।
2: आपको जब बोलने की आजादी दी जाती है, तो आप ये मान के चलिए वो एक आपका मस्तिष्क है, लेकिन जब आप अपनी बात को बड़े संवेदनशील तरीके से बहुत ढंग से कहते हैं, तो वो आपकी आत्मा है। और व्यक्ति मर जाता है, लेकिन आत्मा ही जिंदा रहती है।
0: जी।
2: विचार कभी मरते नहीं है। तो आप निरंकुश नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि आप अपनी बात को इतने संवेदनशील ढंग से, इतने प्रेम से कहिए कि सामने वाला आपकी बातों का विरोध करना चाहे तो भी ना कर पाए। यानी कि अगर हम किसी को विरोधी या बहुत भद्दे भाषा में यदि हम बात करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति बहुत विद्रोही हो जाता है और वो हमारी बात को उस तरह से नहीं सुनता जैसा कि उसको सुनना चाहिए। और यदि हम अपनी बात को बहुत सिंपल तरीके से और बहुत ही वैल्यूबल तरीके से कहते हैं, तो कई बार विरोध करने वाला व्यक्ति भी विरोध नहीं कर पाता और वो आपकी बात को सुनता है। और जब इस तरह की बातें होती हैं, तो बातें तर्क पे होती हैं। और जब व्यक्ति अपनी मूल्यों को खो देता है और अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तब तर्क नहीं कुतर्क आते हैं। तो निरंकुशता तो नहीं होती, लेकिन हमेशा हमें अपने बोलते समय अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए कि हम कहां बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। और जब हम अपनी बातों को बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से, बहुत ही मर्यादापूर्ण जब बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको सुनने वाले लोग बहुत होते हैं और वो अपनी कही गई बात पे एक बार पुनः विचार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो हमेशा आपको अपनी बात पहुंचाइए, लेकिन मर्यादित ढंग से पहुंचाइए। यकीन मानिए, आपका विरोध नहीं होगा, आपकी बातों पर कहीं ना कहीं चर्चा अवश्य होगी।
0: लेकिन जैसा कि आपने भाषा की मर्यादा की बात की, तो ऐसा हम पाते हैं कि भाषा की मर्यादा जो है, काफी हद तक आपकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्या उसको रोकती भी है?
2: हाँ, अब इसे कुछ सीमा में कह सकते हैं कि रोकते हैं। कई बार अंदर से व्यक्ति को गुस्सा भी आता है और वो बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन गुस्से में कही गई बात हमेशा विपरीत असर लेके आती है। तो आप ये कह सकते हैं कि है, भावनाओं को रोकता तो है, लेकिन आप जब उसे बहुत ढंग से जब उस बात को कहते हैं, तो उसमें समय लग सकता है, लेकिन उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। यदि आपने उस विरोध को तुरंत और विरोधपूर्ण ढंग से और उत्तेजित तरीके से प्रकट किया, तो हो सकता है जो आप चाहते हैं वो ना मिले।
0: जी सुचेता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने पहले भी बताया कि डिसेंसी और डिफेम करने की बातें जो आपने की, इंटेग्रिटी की बात की, इनको हम अगर थोड़ा और इलेबोरेट करें, तो क्या ये जो डिफेमेशन है, ये किसी इंडिविजुअल के प्रति हो सकता है, या फिर हम बात करें स्टेट के प्रति होता है, किस प्रकार इसको आप डिफाइन करेंगे?
1: देखिए, मुझे लगता है कि आप जो ये सवाल करना चाह रहे हैं कि अभिव्यक्ति के साथ भाषा की

0: भद्रता को कहाँ तक ले जा सकते हैं?
1: नहीं, मेरा इसमें पूछने का अर्थ ये है कि क्या ये किसी इंडिविजुअल के प्रति भाषा को बांधता है या फिर स्टेट के प्रति भाषा को बांधता है?
0: देखिए, अगर हम फंडामेंटल राइट्स में जाते हैं तो वो तो हमें सिर्फ ये बांधता है कि स्टेट हमारी आवाज को नहीं दबाएगा, लेकिन जब आप अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल इस प्रकार करते हैं कि आप किसी पर भी पर्सनल अटैक करें, आप किसी को भी डेफामेटरी स्टेटमेंट्स कहें या किसी की मर्यादा भंग करें, तो डेफिनेटली आप कानून के दायरे में आते हैं।
1: जी, जैसा कि अक्सर हम देखते हैं कि डिफेमेशन का केस लग गया, इस तरह की बातें हम अखबारों में पढ़ते हैं, तो वो भी क्या इसी आर्टिकल के अंतर्गत ही आती है?
0: नहीं, इस आर्टिकल के तहत वो नहीं आती है, इसमें डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम अभी लेटेस्ट अगर हम सिनेरियो देखें तो जो प्रोटेस्ट अभी चला था युवाओं का, जो प्रोटेस्ट अभी चला था, तो उस प्रोटेस्ट में कुछ युवाओं ने, कुछ बच्चों ने बहुत सारे डेफामेटरी स्टेटमेंट्स कहे, चाहे वो पीएम के अगेंस्ट में कहे, सरकार के अगेंस्ट में कहे, और कुछ पर शायद एफआईआर भी हुई।
1: जी,
0: तो मैं कुछ स्टेटमेंट्स देख रही थी कि आ रहे थे कि संविधान में कहीं नहीं लिखा या कानून में कहीं नहीं लिखा कि अगर आप अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो आप पर कोई एफआईआर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप किसी को पर्सनली अटैक करते हैं या किसी की मदर को आपने पर्सनली अटैक किया है, किसी को अगर आपने कानून से हटकर या सरकार से हटकर अगर आपने पर्सनली अटैक किया है, तो डेफिनेटली आप पर लीगल एक्शन बनते हैं।
1: जी, सही कहा आपने, और हम इस बात को और आगे लेके जाते हैं। तो आज डिजिटल युग है, सोशल मीडिया का जमाना है, उसने अभिव्यक्ति को और ज्यादा व्यापक बना दिया है, तो क्या भाषा की गरिमा जो है वो सोशल मीडिया पर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं?
2: जी, एक्चुअल में क्या है, जो हमें जो आज़ादी दी गई है ना, वो सिर्फ बोलने की नहीं गई, आपको अपने विचार सिर्फ बोलने नहीं है, मतलब आप कला के माध्यम से भी उसे कर सकते हो, आप ड्राइंग के, पेंटिंग के, एक्टिंग के, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको व्यक्ति, भाषा केवल मुंह की आवाज़ नहीं होती, भाषा आपके हाव भाव भी होते हैं, बहुत सारी कलाएँ भी होती हैं। और सोशल मीडिया ये कभी नहीं कहता कि आप अपनी मर्यादाओं को भूल जाएं, बल्कि मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया ने आपको मौका दिया है अपनी बात को कहने का। पहले हमारे पास बहुत सारे ऐसे बुद्धिमान लोग रहे हुए हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति रहे जिनके पास जाने कितना अथाह भंडार था, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता था कि मैं मेरे विचारों को पहुंचाऊं कहां तक। तो आप उसे जो आपको एक मौका मिला है, मुझे लगता है कि आप अपनी बात को बहुत बेहतर तरीके से, बहुत ही मर्यादित तरीके से कहेंगे तो वो बहुत दूर तक जाएगी। और यदि आप उसका मिसयूज करते हैं और भाषा की मर्यादा को भूल जाते हैं, तो आप उतने ही जल्दी डब्बे में चले जाएंगे, यानी कोई आपको फॉलो नहीं करना चाहेगा।
1: डॉक्टर अर्चना, आप समाजशास्त्र भी पढ़ाती हैं और साइकोलॉजी भी समझती हैं, तो मैं आपसे विशेष रूप से ये पूछना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति का अगर कोई इश्यू है, कोई इसकी बात है, जब वो नहीं सुनी जाती, किस लेवल तक वो कंट्रोल करता है अपनी भाषा को? या हम इसको इस तरह से भी देखें कि भाषा की मर्यादा तभी टूटती है जब उसकी बात नहीं सुनी जाए, इस पर आपके क्या विचार है?
2: ये चीज हम हर तरह से ले सकते हैं, मतलब हम हमारे घर में भी ले सकते हैं, ऑफिस में भी ले सकते हैं, और अपन एक राष्ट्रीय मंच पे भी ले सकते हैं, कि जब हमारी चीजों को दबाया जाता है, हमारी भावनाओं को दबाया जाता है, तो हमारे अंदर एक गुस्सा फूटता है, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज है, आप चाहकर भी इसे नहीं दबा सकते। लेकिन
1: ये गुस्सा कई बार जरूरी नहीं होता?
2: होता है, बिल्कुल जरूरी होता है, लेकिन उस गुस्से को भी यदि आप तरीके से व्यक्त करेंगे तो उस गुस्से के साथ देने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे आपको। लेकिन यदि आप उस गुस्से में अपनी मर्यादा को यदि भूल गए हैं, तो हो सकता है आपकी बात तो आगे तक जाए, लेकिन वो एक नेगेटिव रूप में आएगी, और आपको बजाय आपकी बात वहां तक पहुंचे और उसका एक नेगेटिव पॉइंट और आपको मिल जाएगा। तो माना कि गुस्सा आता है, आदमी इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन गुस्से में कही गई बात में यदि शब्द अगर सही हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी। यदि आपने अपशब्दों का प्रयोग कर लिया तो आपकी मेंटल स्थिति को कोई भी नहीं देखेगा, ये नहीं कहेगा परेशान है, ये है, वो है, आपकी भाषा पे ही गौर किया जाएगा। तो गुस्से में भी यदि आप अपशब्द नहीं कहेंगे तो यकीन मानिए आपकी आवाज आज नहीं तो कल पहुंचेगी जरूर ये, लेकिन यदि अभद्र भाषा का प्रयोग हो गया तो लोगों को एक मौका और मिल जाएगा आपको दबाने का।
1: जी, भाषा की मर्यादा की अगर बात करें तो हमारे देश को हम आज बात करते हैं कि डेवलपिंग से डेवलप्ड की ओर बढ़ रहा है, ऐसे देश भी हैं जो पहले से डेवलप्ड हैं, लेकिन वहां भी भाषा की आजादी है लोगों को, और अक्सर हम देखते हैं कि अगर प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं तो वहां पर भाषा की मर्यादा नहीं देखी जाती, इस बात को आप किस तरह देखते हैं?
0: भाषा की मर्यादा देखिए सभी जगह देखी जाती है, मैं इस बात में यही कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि आप कहें कि दुनिया के किसी भी देश में आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहां पे भाषा की मर्यादा नहीं देखी जा रही, या
1: प्रोटेस्ट
0: आप...
1: जो होते हैं अक्सर भाषा की मर्यादा को तोड़ते ही क्यों हैं?
0: हाँ, ये सवाल जो है वो बहुत अच्छा है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। भाषा की मर्यादा की अगर हम बात करें, हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, घर से लेते हैं।
1: जी,
0: सपोज हम अपने बच्चे को किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं, एक चिप्स के पैकेट के लिए मना कर रहे हैं, वो दो बार आपसे पूछेगा, तीन बार आपसे पूछेगा, आप हो सकता है आप उसे गुस्से में मना कर दोगे। जैसे ही आप उसे गुस्से में मना करोगे, वो शायद पैर पीटेगा या दो शब्द आपको सुना के जाएगा कि आप तो हमेशा ही ऐसे करते हो।
1: जी,
0: उस एक्शन का फिर रिएक्शन भी होगा, क्योंकि वहां सोल्यूशन नहीं हुआ, उसे ये बात समझ में नहीं आई कि उसे चिप्स का पैकेट क्यों

0: नहीं खाना। लेकिन यही बात जब वो अपनी कह रहा है और वो 4 बार 5 बार 6 बार कह रहा है, आप उसे टाइम देंगे, आप उसे अगर बैठ के बात करेंगे कि हाँ इसलिए आपको ये चिप्स का पैकेट नहीं खाना है, फिर चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा, लेकिन आप उसे वैलिड रीजन देते हैं कि मैं इसलिए आपको अलाउ नहीं कर सकती ये खाने के लिए, तो वो हो सकता है कि एक बार अपना मन मार के रहेगा लेकिन वो उस पर विचार जरूर करेगा। तो सेम जब हम प्रोटेस्ट की बात करते हैं, तो इंसान आता है किसी कॉन्टेक्स्ट को लेकर, वो बहुत गुस्से में होता है, उन्हें मान लो सरकार की किसी नीति पर बहुत गुस्सा आया होता है और वो उसका विरोध कर रहे होते हैं। उसी समय जैसे हम बात कर रहे हैं अभी सोशल मीडिया की, तो होता क्या है, जो मुद्दा होता है ना उसका कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है।
1: जी
0: आप जिस मुद्दे पर होते हैं बात, वो मुद्दे से होते होते पर्सनल हो जाती है। फिर आप ये नहीं कहते क्या सही है क्या गलत, आप कहते हैं कौन सही है कौन गलत।
1: जी
0: हम वहां पहुंच जाते हैं।
1: जो एग्जाम्पल अभी आपने दिया कि बच्चे की और पेरेंट्स की बात की, तो मांग करने वाला बच्चा है, इसी प्रकार अगर हम बात करें प्रोटेस्ट की, तो वहाँ पर मांग करने वाले प्रोटेस्टर्स हैं। तो पहला दायित्व आपने जिस प्रकार पेरेंट्स का बताया, तो क्या जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है उनका भी दायित्व नहीं बनता?
0: बिल्कुल बनता है। जिस तरह हमने कहा कि पेरेंट्स को बैठकर बात करनी होती है, तो चाहे हम सरकार के अगेंस्ट कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट कर रहे हैं,
1: जी
0: तो इंस्टीट्यूशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी लें, वो सबसे पहले अपनी उस गलती को एक्सेप्ट करें कि हाँ सरकार या इंस्टीट्यूशन के बेस पर ये गलती हुई है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिन चीज़ों के बारे में आप बात कर रहे हैं भविष्य में हमारे देश में या हमारे इंस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं हो। ये अकाउंटेबिलिटी अगर हम शो करते हैं तभी हम एक डेवलप्ड लोकतंत्र बन पाएंगे।
1: जी बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी की आपने बात की,
0: अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है
1: हाँ वो दोनों तरफ से।
0: दोनों तरफ से,
1: जी
0: दोनों
1: बिल्कुल
0: तरफ से।
1: डॉक्टर अर्चना, अभी बात चली कि भाषा की मर्यादा जो है वो महिलाओं की ऐसी होनी चाहिए, लड़कियों की ऐसी होनी चाहिए, हाल ही में देखने को मिला है। तो क्या भाषा की मर्यादा का इस बात से भी कोई संबंध है कि जो बोल रहा है वो पुरुष है या स्त्री है?
0: जी एक्चुअल में हमारे यहाँ
1: हमारे
0: पे,
1: समाज की अगर बात
0: हाँ
1: करें।
0: मैं हमारे समाज की बात करूँ, क्योंकि हमारे समाज में एक्चुअल में अगर हम वैसे देखें ना प्राकृतिक तौर पे, तो एक जीव बनाया गया था, दो अलग जैसे रंग बनाए गए हैं, बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारी डिजाइंस हैं, वैसे हम दो डिजाइंस में पैदा हुए,
1: जी
0: लेकिन हम लोगों ने उनके अंदर बहुत अंतर कर दिया कि महिलाएं तो कम बोल, धीरे बोल, चुप बोल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ये बात करते हैं कि हमें मतलब विकासशील देश नहीं, हमें विकसित देश से रहना है, तो आपको वो चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेंगी। दूसरी बात, जब आप ये चाह रहे हो कि मेरी बेटी भी उसी पद पर जाए, मेरी बेटी भी उतना ही पढ़े, वो भी एक अच्छे रोजगार में जाए, और फिर आप ये कहते हो कि नहीं तुम अपनी जबान को बंद कर लो, जब्त कर लो, ये संभव नहीं है। क्योंकि शिक्षा और ज्ञान आपको सिखाता है बोलना, वो आपको चुप रहना भी सिखाता है, वो आपको बोलना भी सिखाता है। तो अगर हम ये कहें, जैसे ये तो वो बात हो गई, जैसे रेप होता है तो कहते हैं कि लड़कियों घर से मत निकलने दो, उनके कपड़ों को ठीक कर दो,
1: जी
0: समस्या तो कहीं और है ना। हमने
1: हाँ
0: लड़कों से क्यों नहीं कहा कि आप अपने समाज की जो महिलाएं हैं उसकी रिस्पेक्ट करना सीखें, आपने उन कमियों को क्यों नहीं ढूंढा जहां कमियां थी। तो ये तो वही बात हो गई कि महिलाओं तो चुप रहो, मान लीजिए महिला चुप भी रहेंगी तो समस्याएं तो खत्म नहीं होंगी। उद्देश्य तो समस्याओं को खत्म करना है, उद्देश्य तो हमारा विकास करना है, उद्देश्य तो हमारा ये है कि हम लोगों के अंदर एक सामाजिकता लेके आए, एक व्यवहारिकता लेके आए, एक अच्छे गुणों का विकास करें। तो जब आप पर्टिकुलर एक ही पॉइंट्स को दबाएंगे तो दूसरे पॉइंट्स खराब हो जाएंगे।
1: जैसा कि अभी हाल ही के दिनों की घटनाओं की अगर हम बात करें, तो सोशल मीडिया पर इसके रिएक्शन जो आते हैं उनको हम देखें, तो लोग कहते हैं लड़की होकर भी इस तरह की भाषा का उपयोग कर रही है, जबकि अगर अभद्र भाषा की बात करें तो लड़कों ने भी की और लड़कियों ने भी की।
0: देखिए हमारा शैक्षिक विकास तो हो गया, लेकिन बौद्धिक विकास मुझे लगता है थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि हम अपनी परंपराओं से बाहर नहीं निकल पाए हैं।
1: जी
0: और आज भी लड़की जो है ना, वो हमें लगता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, पराया धन है। आज भी बहुत सारे लोग ये नहीं मानते कि ये मेरा बच्चा है, क्योंकि जब बच्चा पैदा किया जाता है तो ये सोच के नहीं किया जाता बेटा है बेटी।
1: जी
0: ये भी एक स्थिति है कि जब बच्चे नहीं होते तब हमें लगता है कि ना कुछ भी हो जाए भगवान हम काम चला लेंगे, और जब हो रहे होते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि लड़का हो। तो हम उस परंपराओं से बंधे हुए लोग हैं, हमने वो जो माहौल देखा है लड़कियों का, तो हम शायद इस चीज को झेल नहीं पाते कि एक लड़की की आवाज आ रही है। और जिस दिन हम सीख जाएंगे कि ये लड़की की आवाज नहीं केवल आवाज है, यकीन मानिए बहुत सारी समस्याएं तो उसी दिन ही खत्म हो जाएंगी। और रही बात मर्यादित भाषा की, तो वो तो हमारे संस्कार और हमारे परिवार हैं। यदि लड़की के हैं तो यकीन मानिए लड़के के भी ऐसे ही होंगे, और कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का प्रभाव तो पड़ता है, जो माहौल मिलेगा। और मुझे लगता है कि जब हमें आज़ादी दी गई है बोलने की, तो अपने विचार रखने में कोई आपत्ति नहीं है, बस ये याद रखें कि आपके कर्तव्य क्या हैं, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। अगर आपने जिम्मेदारी छोड़ दी तो समस्या है, लेकिन जिम्मेदारियां यदि आपके हक में हैं तो मुझे लगता है कि बोलना कोई समस्या नहीं है। बाकी समाज तो जब बढ़ेगा तभी बढ़ेगा।
1: जी डॉक्टर सुचेता, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए भाषा के मानदंड जो है क्या सामान्य नागरिकों से भिन्न होने चाहिए?
0: देखिए यहाँ पे ना मेरे विचार थोड़े अलग हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो कि

0: जब हम भाषा के भी व्यक्ति की बात करते हैं या अभद्र भाषा की बात करते हैं, जैसा अभी आपने कहा कि लड़की बोल रही है तो उसके बारे में कमेंट्स आ रहे हैं, और जब लड़के बोलते हैं तो ये बात सामान्य हो जाती है।
1: एक दूसरा तबका भी है जो इस बात को प्रेज कर रहा है कि देखिए हमारी लड़कियां जो हैं वो भी बोल रही हैं।
0: इसी बात पर मैं आना चाहूंगी, मतलब हम यहाँ समभाव क्यों नहीं रख पाते? और ये समभाव सिर्फ भाषा को लेकर नहीं है। हम जब, जैसा कि हमने कहा कि भाषा की अभद्रता जो है वो कानून के दायरे की बात नहीं है, संविधान आपको नहीं बताएगा कि आप रोजमर्रा में किस तरीके से बात करेंगे, किस टोन में बात करेंगे, आपकी भाषा का इम्पैक्ट क्या होगा, वो नहीं बताता। उसने तो कुछ एक्सट्रीम सीमाएं तय कर दी कि भाई आप देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तब तक आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अब जो बात आती है कि भाषा की अभद्रता, तो वो तो हमारी सोसाइटी, कम्युनिटी, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बन जाती है।
1: जी
0: तो जब हम घर में हम बात करते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देते हैं, तो मुझे लगता है हम जब बात करते हैं बच्चों के साथ में, तो हम उन्हें क्या कहते हैं कि ये बड़े हैं, आप उन्हें सम्मान से बात करें। हम ये नहीं कहते कि सबके साथ सम्मान से बात
1: जी
0: करें,
1: बिल्कुल
0: बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा है, बड़ा आदमी है, कोई पब्लिक फिगर है या एक सामान्य नागरिक है, तो आप सभी के साथ समभाव से बात क्यों नहीं कर सकते? जब कोई ऑफिसर, कोई जज आपके सामने आता है, आप खड़े होकर हाथ जोड़कर उनका नमस्कार करते हैं,
1: जी जी
0: लेकिन अगर कोई पियन आपसे बोलेगा कि नमस्कार सर, तो आप सिर्फ सर हिला देंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से शुरू हो जाती है? क्योंकि हम समभाव नहीं रखते हैं। और
1: जी
0: अगर हम ये समभाव रखें तो हम देखेंगे कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पब्लिक फिगर की है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है,
1: जी
0: और बिल्कुल इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
1: जैसा आपने बताया कि रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पब्लिक फिगर्स की नहीं है, तो निश्चित रूप से इस सवाल का जवाब मिलता है कि भाषा की मर्यादा की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जेंडर की हो या किसी भी पर्सनालिटी की हो।
0: बिल्कुल
1: हम लीगल पर्सपेक्टिव्स की बात करें तो हेट स्पीच जो शब्द है वो कई बार सुनने को मिलता है। हेट स्पीच को कहाँ तक हम डिफाइन करते हैं? कई बार क्या कोई शब्द ऐसे डिफाइन किए गए कि इन शब्दों का उपयोग करने पर ही वो हेट स्पीच माना जाएगा?
0: देखिए, अगर हम हेट स्पीच के पर्सपेक्टिव को देखें, तो ये बेसिकली अभी क्या, कुछ सालों में जब से हम कहें कि डिजिटलाइजेशन हुआ है, तब से ये वर्ड जो है वो बहुत ही फेमस हो गया है। इसका मूल मुद्दा जो था वो क्या था कि सोशल मीडिया पे जैसे जब आप बात करना शुरू करते हैं, जैसे आपने कभी किसी की कोई रील देखी, आपने वो रील देखकर एक व्यक्ति ने उस पर अपना एक पर्सपेक्टिव दिया,
1: जी
0: फिर उस एक पर्सपेक्टिव पर फिर चार और लोगों ने अपने पर्सपेक्टिव दिए, और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मुद्दा मतलब वहां से हट गया कि बात क्या हो रही थी। अब वो जो जिस व्यक्ति ने वो पर्सपेक्टिव दिया वो उसी पर आ गए। या तो हम आक्षेप लगाते हैं कि भाई तुम हो ही ऐसे, और फिर उसके साथ साथ जो और होते हैं वो लग जाते हैं, हाँ ये ऐसे हैं, इनका विरोध होना चाहिए, इन्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा
1: जी
0: नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति एक पूरा तबका जो है वो अपनी कह दो कि हेट जो है वो दिखा देता है कि वी डोंट लाइक हिम और हर,
1: जी
0: तो वो बन जाती है हेट स्पीच। क्योंकि कानून क्या कह रहा है कि आप अगर किसी व्यक्ति के साथ, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि आप उससे हेट कर रहे हैं, आप ऐसा माहौल बना देते हैं कि आपके आसपास या आपकी कम्युनिटी या आपका पूरा समाज या एक पूरा पर्टिकुलर तबका फिर उससे हेट करने लग जाता है, देन
1: जी
0: इट बिकम्स अ हेट स्पीच। कि आपने अपने पर्सपेक्टिव को लोगों को दिखाकर उनके अगेंस्ट में किया, और हम रिसेंटली ये देख भी रहे हैं
1: बिल्कुल
0: कि बात किस कॉन्टेक्स्ट में होती है वो पहुंच कहीं और ही जाती है।
1: जी,
0: और
1: टारगेट अगर किसी को किया जाए।
0: अब हम जब अपनी असहमति दिखाते हैं, जैसे अगर मुझे आपकी कोई बात नहीं पसंद आ रही, आपको मेरी कोई बात नहीं पसंद आ रही, हमारे पास उस असहमति को जताने के लिए तर्क होने चाहिए।
1: जी बिल्कुल
0: गुस्सा जब हम करते हैं या जब हम हेट स्पीच की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि भाई ये लोग तो है ही ऐसे, जैसे अगर हम बच्चों के बारे में बात कर देते हैं, ये आजकल के बच्चे,
1: आजकल
0: ये
1: के
0: जो शब्द
1: बच्चे
0: हम इस्तेमाल करते हैं आजकल के बच्चे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस पूरे के पूरे पूरे एक तबके के बारे में अपनी एक राय बना रहे हैं, फिर हम कहते हैं कि ये जो राय है वो हमारे जैसे सभी के बीच में बन जाएगी।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: क्या होगा उन बच्चों के लिए या उस पर्टिकुलर एक जनरेशन के लिए, हमारी एक राय बन गई। इसी तरीके से हेट स्पीच बनती है,
1: बिल्कुल
0: वो पर्टिकुलर जब हम किसी को कहने लग जाते हैं ना, नहीं तुम हो ही ऐसे, ये आजकल की लड़कियां, ये आजकल के बच्चे, ये क्या है, ये आपकी असहमति नहीं है, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास कोई लॉजिकल तर्क ही नहीं है।
1: हाँ,
0: अगर
1: इसके
0: आपके
1: पीछे
0: पास,
1: आपने तर्क नहीं प्रस्तुत
0: हाँ
1: किए।
0: अगर आपके पास तर्क है तो आप प्रस्तुत कीजिए, फिर उसका जवाब भी आएगा। लेकिन हमारे पास जब तर्क नहीं होता तब हम कहते हैं कि आप लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं, ये लड़कियां ऐसी हैं या ये लड़के ऐसे हैं।
1: जी, डॉक्टर रचना, समाज की जब हम बात करते हैं तो किसी भी समाज की परिपक्वता को आंकने के लिए क्या भाषा के स्तर का भी उपयोग किया जा सकता है? या हम कहें कि जितनी अच्छी भाषा का स्तर होगा, क्या वो समाज ज्यादा परिपक्व है?
2: देखिए, हम उस समाज का हिस्सा हैं जहाँ पर भवों से ये कहा जाता है कि आप जो है

0: घूंघट निकाल के रहेंगी इस चार दीवारी में जब हम 5 मेंबर घर में हैं। और जब वो नौकरी के लिए जाती है बाहर तो वो 3 से 4 हजार लोगों से दिन में मिलती है और कोई घूंघट नहीं होता,
1: जी
0: है ना। तो भाषा की परिपक्वता तो बहुत बाद की बात है। हम इतने स्वार्थी जीवन में जी रहे हैं कि यदि हमारे पक्ष में कोई बात कही गई है तो वो उचित है, यदि हमारे विपक्ष में कही गई है तो अनुचित है। तो परिपक्वता को तो शायद मेरे ख्याल से देखा ही नहीं जाता, क्योंकि हम दो चीज़ें तो वहाँ बांट देते हैं कि पुरुष ने क्या कहा, पुरुष अगर गुस्सा करता है तो ठीक है ओके, लेकिन तुमने बहू के गुस्सा किया ये तो बहुत ही, मतलब बहुत ही बुरी बात है, आपको तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? हम परंपराओं को क्यों मानते हैं? कहीं तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन हम क्यों हैं परंपराओं पे चले आ रहे हैं, जो है वो है। तो हम ये मान के चलते हैं कि मतलब अगर भाषा मर्यादा में बोली जाती है और उसमें परिपक्वता दिखती है तो आपको सुनने वाले लोग बढ़ जाएंगे, आपके लिए सोसाइटी में इमेज बहुत अच्छी हो जाएगी, लोगों के सामने यदि आपकी बात जाती है तो लगता है कि हाँ शायद यहाँ एजुकेटेड लोग रहते हैं। पर मुझे लगता है कि हम शायद उस स्थिति से बहुत दूर हैं अभी, हमें अपने विचारों को शायद बदलना पड़ेगा, परिपक्वता की तरह हमने अभी ध्यान दिया ही नहीं है।
1: जी
0: तो पहले तो हम संस्कारों से निपटें।
1: आपने

0: भाषा मर्यादा में बोली जाती है और उसमें परिपक्वता दिखती है, तो आपको सुनने वाले लोग बढ़ जाएंगे, आपके लिए सोसाइटी में इमेज बहुत अच्छी हो जाएगी, लोगों के सामने यदि आपकी बात जाती है तो लगता है कि हाँ शायद यहाँ एजुकेटेड लोग रहते हैं। पर मुझे लगता है कि हम शायद उस स्थिति से बहुत दूर हैं अभी, हमें अपने विचारों को शायद बदलना पड़ेगा, परिपक्वता की तरफ हमने अभी ध्यान दिया ही नहीं है,
1: जी,
0: तो पहले तो हम संस्कारों से निपटें।
1: आपने बात की कि जब हमने भाषा की बात की तो आपने कहा कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे पहले काम करने की जरूरत है,
0: हाँ
1: तो किस प्रकार काम किया जाए? क्या स्कूल्स में ये किया जाए, या पेरेंट्स अपने स्तर पर करें, या हम समाज के तौर पर हम क्या कर सकते हैं?
0: इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी पड़ेगी। पहले तो हमें ये मानस बनाना पड़ेगा, ये विचार अपने अंदर लाना पड़ेगा कि मैंने जिन बच्चों को पैदा किया वो मेरे बच्चे हैं। आप बिल्कुल भूल जाइए कि वो मेरा बेटा या बेटी। दूसरी बात, आप उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाइए कि आपके पास ये अधिकार हैं, लेकिन आपकी इस घर के प्रति, इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को आपको बेहतर तरीके से निभाना है। उसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं, तो जब वो बच्चे जब अपनी जिम्मेदारी दिखाते हैं, तो समाज के लिए या सरकार के लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति एक अर्थपूर्ण बात करेगा, वो अर्थपूर्ण विचार आप सरकार को देंगे, सरकार उन मुद्दों पे विचार करेगी, वो किसी संस्था के माध्यम से या सरकारी ऑफिस के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं हमारे समाज के लिए लागू करेंगी, जो कहीं ना कहीं हमारे विकास की ओर होंगे, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से विकास हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से हो, और चाहे वो मनोवैज्ञानिक तरीके से हो। इसकी शुरुआत लेकिन हमें घर से ही करनी पड़ेगी। और अगर कहीं पे आपको लगता है कि चीजें सही नहीं है, लड़कियों को रोका जाता है या जाति के हिसाब से रोका जाता है या कोई भी ऐसी चीज है, तो सबसे पहले तो हमें घर से ही अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, सभ्य बनाना पड़ेगा। और जब हम सभ्यता की तरफ बढ़ जाते हैं, तो हम बहुत सारी गलत कामों को नहीं कर पाते, सबसे बड़ा डेवलपमेंट तो वही है हमारा।
1: जी, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर सुचिता, इसी मुद्दे पर मैं आपके विचार भी जानना चाहूँगा कि आपका क्या कहना है कि किस प्रकार हम हमारे समाज में डेवलप कर सकते हैं एक भाषा की मर्यादा को, या फिर संस्कारों की बात करें हम।
2: जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जब हम अपने रोजमर्रा का व्यवहार करते हैं, अगर हम उसमें समभाव रखते हैं, तो मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इससे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, वो पहले से ही सॉल्व हो जाती हैं। जब आप घर में बच्चे से लेकर बड़े तक हर एक की बात को सुनते हैं, समझते हैं, उन्हें अपनी बात रखने का मौका देते हैं, चाहे वो एक छोटा बच्चा है, सपोज वो 5 साल का बच्चा है, स्कूल जा रहा है, वो जब स्कूल जा रहा है, स्कूल से आके अपनी कोई बात बता रहा है, और जब हम उसके विचार सुनते हैं, उसको
1: जी
2: प्रॉपरली सुनते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ सही हुआ या गलत, चाहे टीचर ने किया, सही हुआ या गलत, तो हमने उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं सिखाई। और भाषा की मर्यादा हम उसे सिखाते हैं कि आपको ये बात जो है वो किस तरीके से करनी है।
1: जी
2: अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, तो आप अपने टीचर को कैसे कहेंगे कि मुझे ये बात जो है वो सही नहीं लगी, या अपना तरीका जो है वो आप बदलें, या मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही।
1: इस चीज की
2: तो
1: स्वतंत्रता भी होनी चाहिए कि अपने टीचर को कह सकें।
2: बिल्कुल होनी
1: बिल्कुल।
2: चाहिए, क्योंकि गलत तो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, गलत तो टीचर्स भी हो सकते हैं, फिर
1: लेकिन
2: गलत
1: हमारे समाज
2: इंस्टीट्यूट
1: में
2: भी
1: तो
2: हो
1: ये
2: सकता है।
1: पर्सपेक्टिव है कि जो उम्र में बड़े हैं वो सही हैं।
2: बिल्कुल, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि हम संभाव नहीं रख रहे हैं, तभी ये जो भाषा की मर्यादा आती है वो वहीं आती है। जो आवाज़ हमेशा से दबा दी जाती है, अब वो दबी हुई जो चीज़ होगी वो तो फिर कितने प्रेशर से बाहर आएगी ये कोई नहीं जानता।
1: जी
2: अंदर दबी हुई चीज़ कितने प्रेशर से आएगी। यही अगर आप शुरू से वो स्वतंत्रता और वो संभाव घर से ही शुरू करते हैं, समाज से शुरू करते हैं, कि अगर कोई बड़ा घर में गलत है, और अगर आप कह पा रहे हैं, अगर आपका बच्चा आपको कहता है कि नहीं भाई मम्मा आपने बिल्कुल गलत किया ये, तो सबसे पहले आप वहां एक्सेप्ट करो, तो उसे ये बात समझ में आएगी, अगर जीवन में मैं कभी कुछ गलत करता हूँ तो मुझे उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। और
1: जी
2: बहुत प्राउडली आपको अपने बच्चे को सॉरी कहना चाहिए कि हाँ मुझसे गलती हुई। तो वो वही बच्चा समझिए कि जब देश के किसी ऊंचे पद पर बैठेगा, तो वो कितना अकाउंटेबल बनेगा, क्योंकि उसने वो माहौल देखा होगा कि नहीं, मैंने अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स को वो जिम्मेदारी लेते देखा है।
1: एक समाज जो है वो अभद्र भाषा को बनाता है, समाज में ही पनपती है, हम लोग ही उसको पनपाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो अभद्र भाषा है, या फिर हम सीधे शब्दों में गए गाली जो है, वो मुख्यतः महिलाओं को टारगेट करते हुए ही होती है। और वही गाली अगर जब महिला देती है तो हम कहते हैं कि इसने कैसे ये गाली दी। इस पर आपके विचार?
2: इसमें मैं कहूंगी ये जो मानसिकता है, मतलब पितृसत्तात्मकता जो हमारे समाज में चली आ रही है, कि जब कोई महिला मतलब अगर कोई ऐसा काम कर दे, तो सारे समाज की उंगलियां जो हैं वो उस तरफ हो जाती हैं।
1: और
2: जैसा
1: ये सारे जो शब्द हैं ये महिलाओं को टारगेट करके
2: बिल्कुल
1: क्यों बने हैं?
2: बिल्कुल महिला को टारगेट करते हुए, ये पुरुष ने अपनी महानता दिखाने के लिए किया था, अपनी पावर दिखाने के लिए किया था कि हम तुमसे ज्यादा पावरफुल हैं।
1: जी,
2: ये जो शब्द हैं वो यही दिखाना चाह रहे होते हैं कि हम तुमसे ज्यादा पावरफुल हैं। और अब क्या हो रहा है कि

0: लो लड़कियां पढ़ ली, लड़कियां आगे बढ़ ली, तो अब उन्हें लगता है कि भाई अब हमारे से ज्यादा पावरफुल तो आप नहीं है, तो अब वो सोच रही है कि शायद हम भी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करें तो शायद हम और पावरफुल लगेंगी। फिर कॉन्टेक्स्ट फिर बदल रहा है, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि शायद जो चीज पुरुषों ने की अगर सेम वही हम करने लग जाएं तो शायद हम भी पावरफुल लगेंगी,
1: बिल्कुल
0: तो वही कॉन्टेक्स्ट बदल गया। जबकि हमें करना क्या था, हमें वो बदलना था जो वो पुरुष बोल रहे हैं।
1: जी
0: ये चीज कैसे हो रही है, जैसे हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि कुछ महिलाओं ने कुछ पुरुषों को, मीन्स अपने पार्टनर को मार दिया, किसी ने
1: बिल्कुल
0: धक्का दे दिया, किसी ने मर्डर दे दिया कर दिया, तो सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि पूरा पुरुष समाज डर गया है। भाई डरने की आवश्यकता तो थी नहीं, पिछले पांच
1: हाँ,
0: सालों में कुछ 600-700 केस ऐसे हुए हैं, और जो करोड़ों महिलाओं के साथ
1: वो
0: हुए
1: लंबे
0: हैं
1: समय का हमें देखना
0: वो
1: पड़ेगा।
0: लंबे समय वाला, मतलब वहां तक तो पुरुष समाज को डरने वाली स्थिति में पहुंचने तक तो मुझे लगता है कि शायद बहुत जनरेशन लग जाएंगी।
1: लेकिन ये कंपटीशन तो नहीं है।
0: कंपटीशन नहीं है, यही मैं कहना चाहूंगी। इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ी बात क्या है, जब हम महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, आप देखेंगे कि ऐसी जो भी जगह होती है ना जहाँ विमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही होती है, वहाँ मोस्टली महिलाएं होती हैं,
1: जी
0: पुरुष नहीं होते, क्योंकि हम पुरुषों को नहीं बता रहे कि महिलाएं तो एम्पावर हो रही हैं, अब आपको उस एम्पावर्ड महिला के साथ कैसे रहना है, बस यही हम भूल जा रहे हैं। इसीलिए ये जो विकास है कि विमेन एम्पावरमेंट, वो एक तरफा चल रहा है।
1: एम्पावरमेंट की भी तो कोई परिभाषा होनी चाहिए।
0: एम्पावरमेंट की परिभाषा ये वही थी, भाषा की अभिव्यक्ति की अगर हम बात करें, अब यहाँ तो हम सिर्फ मतलब भाषा की बात कर रहे हैं, अभिव्यक्ति है। स्वतंत्रता किस चीज़ की होती है, स्वतंत्रता एक्चुअली विचारों की होती है, कि आपके मन में जो आ रहा है आप बोल पा रहे हैं, आप उसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आप वो कर पा रहे हैं, यही मुझे लगता है फ्रीडम की सबसे बड़ी डेफिनेशन है। फ्रीडम की डेफिनेशन ना तो कपड़ों से आ रही है, ना किसी बड़े घर से आ रही है, ना किसी बड़े पद से आ रही है,
1: जी
0: फ्रीडम की डेफिनेशन जो है वो विचारों से आ रही है। और यहाँ जो गैप है वो यही है कि ये जो वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करें वो एक तरफा चल रहा है, क्योंकि हम हमारे पुरुष समाज को ये नहीं बता रहे कि एम्पावर्ड महिला के साथ अब रहना कैसे है। वो तो अपनी मम्मी अपनी दादी को जिस तरीके से देखते आए हैं, वो उम्मीद करते हैं कि हमारी जो पार्टनर आएगी वो भी हमारे साथ उसी तरीके से रहेगी।
1: जी
0: यही कॉन्टेक्स्ट कॉम्पिटिशन का रीजन बन रहा है।
1: बहुत ही अच्छा आपने समझाया किस प्रकार से समाज में महिलाओं को भी अगर हमें आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले उनको स्वतंत्रता देनी होगी भाषा की, और ये बात छोड़नी होगी कि इसको पुरुष बढ़ा रहे हैं, महिलाएं बढ़ा रही है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इस गैप को कम करना होगा। बातें और बहुत हो सकती है, ये मुद्दा काफ़ी बड़ा है, लेकिन समय की सीमा है, तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि हमारे श्रोताओं को आप एक संदेश दीजिए कि किस प्रकार हम ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां पर आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी भी रहे, स्वतंत्रता रहे, लेकिन आपकी भाषा जो है वो भी मर्यादित रहे।
2: एक्चुअल में हमारा जो समाज है ना वो एक सीमित दायरे के अंदर है, मतलब हमने अपना एक जो सीमा बना ली है हम उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप ये मत कह सोचिए कि महिला है पुरुष है भारतीय है राजस्थानी है गुजराती है, आप ये सोचिए जब हम पैदा हुए तो हमारी मर्जी से नहीं पैदा हुए, हमें जो माँ बाप मिले वो भी मर्जी से नहीं मिले, हमें जो एनवायरनमेंट मिला वो भी मर्जी से नहीं मिला। तो जब हमने हर चीज़ हमें दी गई है तो कुछ चीज़ें हम अपने वैचारिक भी हमें मतलब विचार भी हमें दिए गए हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए अपना मानसिक विकास करने की, अपना सामाजिक विकास करने की, और इतना दबाव में मत रहिए कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। आप जीने के लिए आए हैं, कोशिश कीजिए जीने की, और हमेशा एक बात को ध्यान रखिए, हमेशा मर्यादा में रहें, क्योंकि सवाल अमर्यादित चीज़ों पे उठते हैं। जब आप अपनी बात को मर्यादा में कहेंगे तो गलत होते हुए भी आपका विरोध नहीं हो पाएगा। और हमारा सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल ये नहीं है कि हम अपने विचारों को व्यक्त करें, हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि किस तरह से हमें हमारे समाज को आगे बढ़ाना है, कमियों को दूर करना है, देश को विकसित बनाना है। तो हम अपनी बात को इस तरह से कहें कि वो सही तरीके से हमारी सरकार के पास और हमारे योग्य पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के पास इस तरह से जाए कि वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएं कि वाकई में कहाँ सुधार की जरूरत है, कहाँ कमी है। और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि शुरुआत हमेशा परिवार से होनी चाहिए और माँ बाप को हमेशा माँ बाप की तरह रहना चाहिए, परंपराओं में बंध के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे पुरुष हैं जो समय के साथ जिनकी सोच बदली है, अपने पार्टनर के प्रति सोच बदली है, लेकिन फैमिली उनका साथ नहीं देती।
1: जी
2: तो नई चीजें जब भी शुरुआत होती है तो विद्रोह तो होता ही है। तो जैसे विद्रोही मतलब जैसे लक्ष्मीबाई को ही ले लीजिए, या फिर और भी हैं नेता जिन्होंने महिलाओं के विकास के लिए काम किया और लोगों ने साथ नहीं दिया, लेकिन आज उनका नाम चलता है। तो करिए विद्रोह, कहीं ना कहीं मजा आता है जिंदगी में, और जब विकास हो रहा है तो ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, बस हाँ कि हम किसी का नुकसान ना करें, ना बातों से ना हाथों से।
1: जी
2: थैंक यू।
1: डॉक्टर सुचेता, आप
0: मैं बिल्कुल डॉक्टर अर्चना गुदारा से सहमत करूंगी कि इंटरवेंशनिस्ट होना बहुत जरूरी है। मैं तो कहूंगी कि बिल्कुल इंटरवेन कीजिए, अगर आप समाज में कुछ बदलाव चाहते हैं तो आपको इंटरवेन तो करना ही होगा। लेकिन यहाँ मैं समाज के हर एज ग्रुप से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी अपनी जिम्मेदारी

0: जिम्मेदारी जो है वो समझें। अकाउंटेबिलिटी लेना कभी मत छोड़ें, चाहे आपका बच्चा है, चाहे आप एक टीचर हैं, चाहे आप एक पेरेंट हैं, चाहे आप एक नेता हैं, चाहे आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं। अगर आपके पार्ट पे कोई गलती हुई है जिसकी जिम्मेदारी आपकी थी, तो वो आप अकाउंटेबिलिटी लें। और अगर समाज में हर तबका अपनी अकाउंटेबिलिटी रखता है, तो मुझे लगता है कि ये जो भाषा की अभद्रता है वो धीरे धीरे स्वयं ही खत्म हो जाएगी। इसके लिए पर्टिकुलर कानून या कुछ, मुझे नहीं लगता कानून बहुत ज्यादा जिम्मेदारी यहाँ निभा पाएगा।
1: जी
0: अगर भाषा की अभद्रता की बात करें तो कानून की जिम्मेदारी मुझे नहीं लगता कि यहाँ उतनी है जितनी एज अ सोसाइटी और एज अ पेरेंट घर से शुरू होती है। तो समाज का हर वर्ग अगर संभव तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो मुझे लगता है निश्चित ही हम एक बहुत ही उत्तम राष्ट्र बनकर सामने आएंगे।
1: जी बिल्कुल, हमारा जो प्रथम टारगेट है वह यही होना चाहिए कि हम उत्तम राष्ट्र का
0: उत्तम
1: निर्माण
0: राष्ट्र
1: कर
0: जी
1: पाएं। और भाषा की मर्यादा एक समाज का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अगर हमारी भाषा मर्यादित रहेगी
0: जी
1: तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अमर्यादित भाषा से हम किसी को भी हर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी के भी प्रति टारगेट नहीं कर रहे हैं।
0: जी
1: क्योंकि भाषा को जब हम अमर्यादित करते हैं तो किसी ना किसी को पकड़ते हैं।
0: बिल्कुल, वो
1: बिल्कुल
0: पर्सनल अटैक होता है,
1: हाँ,
0: बिल्कुल होता है।
1: तो उम्मीद करेंगे हमारे श्रोताओं तक आपकी बात पहुंची होगी। और आप दोनों हमारे आकाशवाणी सूरतगढ़ के स्टूडियो में पधारे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: बहनों, अभी आपने बड़ी ही सुंदर और सारगर्भित चर्चा सुनी। परिचर्चा में शामिल हुई डॉक्टर अर्चना गुदारा व साथ में डॉक्टर सुचेता जैन। आपसे बात कर रहे थे नवीन सिसोदिया जी। घड़ी की सुइयां इजाज़त कम ही दे रही हैं, चलिए चलते चलते सुन लेते हैं ये गीत।

ये बारिश की बूंदें आज कुछ पुरानी यादें लाई हैं, अपने साथ हवाओं में एक मीठा सा सुकून लाई हैं। कागज की कश्ती तो अब नहीं बहती इन गलियों में, मगर बचपन की वो मासूम सी मुस्कुराहट आज फिर लौट आई है।

0: अभी महिलाओं के लिए महिला जगत कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। दिन के 2 बजने वाले हैं, ये समय है समाचारों का।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Lok Sabha adjourned till 2 p.m. following opposition ruckus over several issues. Rajya Sabha also adjourned till 2:15. Bombay High Court convicts former Tehelka editor Tarun Tejpal in 2013.

0: दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मोकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरानीधरन तथा डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित हो गई है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 के लिए स्थगित की गई। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्वतीय और सीमावर्ती पर्यटन अवसंरचना से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र ने राज्यों को प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायालयों में स्वीकृत पदों और रिक्तियों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है।
2: जब काउंसिल की बैठक चल रही हो, कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था, शोरगुल या किसी अन्य तरीके से इस अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी अन्य सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालेगा।
0: विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच मानसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। एक रिपोर्ट।
3: झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन भाजपा और एनडीए विधायकों ने जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। वहीं मंत्री चंद्रा लिंडा ने कहा कि इस मामले में सत्ता या विपक्ष नहीं बल्कि परीक्षा माफिया असली दोषी है। इस बीच मामले की जाँच कर रही सीआईडी ने रांची और लखनऊ से 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें टीडीपीएल कंपनी का अकाउंटेंट भी शामिल है। मामले में अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। विवाद को सुलझाने के लिए सरकार की 4 मंत्रियों वाली उच्च स्तरीय कमेटी आज छात्रों के साथ वार्ता कर सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर्स एसोसिएशन भी शामिल है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वो नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है, या तो एक चरण में या फिर संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य और उन्नत के समान 2 चरणों में। सरकार ने कहा कि उसने पेपर लीक और प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पात्र

0: सह प्रवेश परीक्षा नीट के संचालन में व्यापक सुधार किया है। पीठ ने कहा है कि वो सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सभी पक्षों से अपने जवाब और सुझाव दाखिल करने के लिए कहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बंबई उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में आज दोषी ठहराया है। न्यायालय की गोवा बेंच की जस्टिस नीला गोखले और अमित जमसंदकर की खंडपीठ ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाया है। इनमें विश्वास या अधिकार के पद का दुरुपयोग कर दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और किसी महिला को निर्वस्त्र करने की नीयत से हमला करने से संबंधित धाराएं शामिल हैं। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा कि ना का मतलब ना होता है। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पोत सुरक्षा का माहौल तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर खतरे, ड्रोन हमले, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, डिजिटल नेटवर्क, सूचना प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले जोखिमों ने समुद्री सुरक्षा को नया आयाम दिया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पोत सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि बंदरगाह की सुरक्षा एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।
1: There is actionable recommendation to strengthen India's port security framework and make the proposed Bureau of Port Security a robust, responsive and future-ready institution. Let us work together for a safe maritime India, a strong maritime India and a विकसित भारत, क्योंकि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और हम देश के लिए जी रहा हूं और देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। That should be the commitment.
0: भाजपा सांसद तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग की माफी को भारतीय संसद की जीत बताया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय कानून का पालन करना होगा।
2: ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने केरलम बाढ़, ओडिशा चक्रवात और हाल ही में असम में आई बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य तथा जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में प्रादेशिक सेना की भूमिका की सराहना की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं।
3: अब तक 4,70,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल है, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है। याद रहे ये यात्रा 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। नगर से इश्फाक शाह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन EIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान

0: किया है। विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तक मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क संपर्क टूट गया है, वहीं प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है।
1: प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात से जारी बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें बाधित हुई हैं। कुछ मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी देखी गई है। राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा है और कई गाढ़ गडेरे भी उफान पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को पूरी तरह सतर्कता बरतने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में नदी नालों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि
2: बरसात के लिए आज देहरादून, बागेश्वर और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बरसात लगातार चल रही है, कई जनपदों में हो रही है। और नदियों के जलस्तर की बात करें तो वर्तमान में अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, वाणगंगा, यमुना और शारदा का स्तर बढ़ रहा है।
1: इस बीच चारधाम यात्रा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जारी है और प्रशासन यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उधर ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 द्वार खुले हुए हैं।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है। अभी जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 स्लुइस गेट खुले हुए हैं। पानी का स्तर घटने के बावजूद बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलें बनी हुई है और सामान्य जीवन को बहाल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इस बीच कल रात से हो रही लगातार भारी बारिश ने राजधानी भुवनेश्वर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर की कई सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा में बारिश कम होने की उम्मीद है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ के बाद स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संस्कृत के श्लोक को साझा करते हुए कहा कि जिसमें सभी प्रकार के श्रेष्ठ वनस्पतियों तथा औषधियां पैदा होती हैं, वो पृथ्वी माता विस्तृत और स्थिर हो। विद्या, शौर्य, सत्य, स्नेह आदि सद्गुणों से पालित पोषित कल्याणकारी और सुख साधनों को देने वाली मातृभूमि की हम सदैव सेवा करेंगे। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में 2 खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धारणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 78,790 पर, जबकि निफ्टी 10 अंक गिरकर 24,635 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए और राज्यसभा की बैठक दोपहर 3:15 तक के लिए स्थगित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मौकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरानीधरन और डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.1 MHz, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DRM चैनल 909 KHz पर दोपहर के 2:30 हुए हैं। आइए प्रोग्राम सुने फिल्म संगीत।

सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज 6 अगस्त का दिन और आज एक ऐसी संगीतकार जोड़ी के एक कलाकार का जन्म हुआ जिन्हें हम नदीम के नाम से जानते हैं, यानी नदीम अख्तर सैफी। 6 अगस्त 1954 को उनका जन्म हुआ और श्रवण कुमार राठौड़ के साथ मिलकर उन्होंने फिल्मी दुनिया को अनेक मधुर गाने दिए। कुछ ऐसे गाने आज हम आपको सुनवा रहे हैं इसी जोड़ी के। पहला गीत आशिकी फिल्म से, जिसे गाया अनुराधा पौडवाल के साथ कुमार सानू ने, गीत लिखा समीर ने।

इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे उर्दू सर्विस के कार्यक्रम।

मीडियम में 1071 किलोहर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी। आदाब, ये आकाशवाणी है, अब आप फैसल खान से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में तख्लीकी सलाहियत का गैर मामूली ज़खीरा मौजूद है, जिससे कंटेंट की तख्लीक के एक आलमी मरकज के तौर पर मुल्क की पोजीशन को मुस्तहकम बनाने के लिए बरोएकार लाया जा सकता है। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में खून खराबा बंद करे और उन सभी भारतीय इलाकों को बिला ताखीर खाली करे जिन पर उसने जबरन गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तहलका के साबिक एडिटर तरुण तेजपाल को 2013 के जिंसी ज्यादती के मामले में मुजरिम करार दिया है। जम्मू कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश उसलूबी से जारी है। हॉकी इंडिया ने AHF एशिया कप 2026 के

0: साबिक जूनियर साथी से है। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच के जस्टिस नीला गोखले और जस्टिस अमित जमसंदकर पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने तेजपाल को ताजिरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत कसूरवार गर्दाना है। अदालत ने कहा कि वो आज तीसरे पहर सजा सुनाएगी। समाप्त के दौरान तेजपाल ने कहा कि वो सियासत का शिकार हुआ है और दो लड़कियों का बाप है, लिहाजा उसके साथ नरमी बरती जाए। गोवा सरकार की तरफ से पेश होने वाले वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से सदा की कि उसे ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए ताकि एक मजबूत पैगाम जा सके। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तेजपाल की साबिक जूनियर साथी ने नवंबर 2013 में एक होटल के एलिवेटर पर जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाया था। 2021 में जेली अदालत ने उसे बरी कर दिया था, लेकिन गोवा सरकार ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लखीमपुर खीरी के तशद्दुद के मामले में असल मुलजिम आशीष मिश्रा की जमानत की शराइत में मजीद नरमी करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस बी मोहना ने इस सिलसिले में मिश्रा की दरखास्त को खारिज कर दिया। मिश्रा के वकील ने दलील दी थी कि मौजूदा बंदिशों की वजह से वो अपनी बेटी की सालगिरह की तकरीब समेत दीगर खानदानी प्रोग्रामों में शामिल नहीं हो पा रहा है। जम्मू कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुशोसलूबी से जारी है और अब तक मुल्क भर से लाखों अकीदतमंद पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के शुरू होने के बाद से 4,70,000 से ज्यादा अकीदतमंद पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा 28 अगस्त तक जारी रहेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि यात्रा बाहिफाजत खुशोसलूबी और नहायत मुनज्जम तरीके पर जारी है। उन्होंने सिक्योरिटी दस्तों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, सिविल इंतजामिया और रजाकारों की सताइश की है, जिनकी कोशिशों से इस यात्रा को यकीनी बनाया जा सका। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन के मोकी में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 रुकनी खवातीन की भारतीय जूनियर टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में 18 खिलाड़ी हैं, जिसकी क्यादत मिडफील्डर खैदम शीलेमा चानू करेंगी। नए मुकर्रर हुए हेड कोच टिम व्हाइट की निगरानी में एक ट्रेनिंग कैंप के बाद ये टीम टूर्नामेंट में खेलेगी। हॉकी में कल तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर में जारी 16वीं भारतीय जूनियर मर्दों की कौमी चैंपियनशिप के डिवीजन ए मुकाबलों में उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमें अपने क्वार्टर फाइनल मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। आज के सेमीफाइनल मैचों में उड़ीसा का मुकाबला पंजाब से जबकि झारखंड का मध्य प्रदेश से होगा। भारत के भाला फेंकने वाले खिलाड़ी आशीष यादव और टी धरणीधरन ने अमरीका के शहर यूजन में जारी 20 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की आलमी चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। इसके अलावा डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी अमानत कंबोज भी हतमी मरहले में पहुंच गए हैं। फाइनल इतवार को खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में तख्लीकी सलाहियत का गैर मामूली जखीरा मौजूद है, जिसे कॉन्टेंट की तख्लीक के एक आलमी मरकज के तौर पर मुल्क की पोजिशन को मुस्तहकम बनाने के लिए बुरोकार लाया जा सकता है। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वह अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में खून खराबा बंद करे और उन सभी भारतीय इलाकों को बिला ताखीर खाली करे जिन पर उसने जबरन और गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तहलका के साबिक एडिटर तरुण तेजपाल को 2013 के जिंसी ज्यादती के मामले में मुजरिम करार दिया है। जम्मू कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुशोसलूबी से जारी है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामाइन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश चांदनी फिल्म का नगमा, आवाज़ें सुरेश वाटकर और अरुणा देश पांडे की, नगमा निगार अनुबी, मौसीकार शिव हरी।

आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा गीत, जिसे मौसीकी सजाया था आर डी बर्मन ने। फिल्म थी 1942 अ लव स्टोरी। आज के मेरी पसंद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आप तमाम सामयीन के लिए, अंदाज फिल्म का नगमा, आवाजें बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की, मौसीकार हैं नदीम शर्मा।

सामिन, इस वक्त मेरे साथ ही आज का फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन आई आर और डी डी फ्री डिश पर। पेश खिदमत प्रोग्राम अंदाज़े नज़र।

0: की तरजीहात को, उसकी पसंद नापसंद को और उसके पूरे तर्ज जिंदगी को बदल रही हैं। तो जाहिर है कि अदब या अदबी सहाफत या उर्दू सहाफत, ये तमाम चीजें उसी के तहत आती हैं। ये अलग से कुछ नहीं हो सकती, माशरे से अलग हम करके नहीं देख सकते। और आज पिछले अहद में हम देखते हैं तो जो दिलचस्पी लोगों की थी अदब से, वो आज कम हुई है। बज़ाहिर अदब पढ़ने वाले बढ़े हैं, लेकिन सही मानों में हकीकी दिलचस्पी रखने वाले कम हुए
1: ये
0: हैं।
1: बहुत बुनियादी बात है कि ये वक्त के साथ साथ तरक्की तो हुई है, लेकिन पढ़ने वालों की दिलचस्पी जो है, मुझे लगता है कि बात बहुत आपने आम कही है कि कुछ कम हुई है। ऐसा ही मुनव्वर साहब, मुझे भी यही लगता है कि जो जिया साहब कह रहे हैं, एक जमाना था जब फनून, शफून और ऐसे बहुत अहम रसायल निकलते थे और सौगात, उन रसायल में जो मबाहिस होते थे, उन मबाहिस को बहुत संजीदगी से लिया जाता था, उन पर बहसें होती थी, उस पर्चे में छपना जो है वो एक बहुत बड़ी बात होती थी कि भाई अगर कोई पर्चे में छप गया तो महीनों उसके मजमून का चर्चा होता था। क्या सूरत हाल है कि आजकल हमारी उर्दू सहाफत जो है, तो उर्दू की जो अदबी सहाफत है, वो वसायल तो बहुत हैं और बहुत आसानियां पैदा हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो मबाहिस खत्म होते नजर आ रहे हैं। क्या ख्याल है आपका?
2: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में ये सूरत हाल ये है कि वक्त के साथ साथ जो तजर्बेकार सहाफ़ी थे, जयिस सहाफ़ी थे, वो रुख्सत हो गए और नए सहाफ़ी जो आ रहे हैं मैदान में, नई नस्ल जो आ रही है, उनके पास मुताले का फुकदान है। वो कुछ तैयारी तो कर रहे हैं, वो अखबारात में काम कर रहे हैं, रसाइल में काम कर रहे हैं, लेकिन जिस मुताले की अदबी सहाफ़त को ज़रूरत है वो उनके पास कम है या नहीं है, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि नहीं है। हालांकि है, जिस सतह पे भी है, लेकिन वो कोई ना कोई सतह ऐसी है कि वो जो बुनियादी ज़रूरतें हैं अदबी सहाफ़त की, वो उनसे नाआशना ही नज़र आते हैं बज़ाहिर। उसके लिए सबसे ये है कि तजिया निगारों का एक मुसलसल बहरान पैदा हो गया उसकी वजह से, इसलिए कि जो चीज़ें उनके सामने आती हैं वो उस पर तजिया करने की सलाहियत उनके यहाँ नहीं पाई जाती, और अगर सलाहियत पाई भी जाती है तो वो उसके उन पहलुओं को नहीं उभार पाते जिनकी उस अदबी मैदान में ज़रूरत है। दूसरे ये कि असल में हुआ क्या है, हुआ यह है कि यहाँ शुमाली हिंद में खास तौर से उर्दू मीडियम स्कूलों का फुकदान है। उर्दू मीडियम स्कूल नहीं है, उर्दू मीडियम स्कूल बुनियाद है उर्दू की, और उर्दू बुनियाद फिर बनती है अदब की, और अदब फिर बुनियाद बनती है अदबी सहाफत की, सिलसिला या दर सिलसिला बात आगे बढ़ती है। और जब हमारे पास बुनियाद ही कमज़ोर होगी और फिर हम मामूली सतह पे उर्दू सर्टिफिकेट लेकर या उर्दू कोर्स कोई करके आगे बढ़ेंगे और अपने किसी तरह से मुलाजमत भी हासिल कर लेंगे, और मुलाजमत हासिल करना ही असल अब मौजू रह गया है, अब असल खिदमत नहीं है। जो पहले लोग थे वो अदबी खिदमत भी करते थे, उनके सामने नज़रिया यह होता था कि जो चीज़ है मैं इसमें अदबी खिदमत कर रहा हूँ और इसको अपने तौर पर, मुमकिन तौर पर, जहाँ तक भी हो सकता है, परवान चढ़ाऊँ।
1: अदबी खिदमत से क्या मुराद है?
2: अदबी खिदमत से ये मुराद है जो अदबी जखायर हैं हमारे, उनको हम मंजर आम पर लाएँ और उनसे दूसरे लोग बुनियादी तौर पर इस्तिफादा करें, और जब उसकी सलाहियत हमारे अंदर नहीं होगी तो हम उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। उसके लिए हमारे पास लाइब्रेरियां हैं, लेकिन आप देखते होंगे लाइब्रेरियां आजकल खाली ही नज़र आती हैं। आजकल लाइब्रेरी में कहीं लोग जाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं, या जाते हैं तो सिर्फ अपने काम के लिए कि उनको इतनी तैयारी करनी है इम्तिहान की, उसके बाद ख़त्म। पहले ये होता था कि जो कॉलेजेस के अलावा भी लाइब्रेरियाँ होती थी, वहाँ पर लोग जाते थे, अखबारात के जखायर जहाँ मौजूद हैं वहाँ पे उनका मुताला करते थे, रसाइल जहाँ मौजूद हैं उनका मुताला करते थे। अब जैसे आजकल की ही बात कीजिए आप, आजकल में तमाम फाइलें जब से 1942 या कब से ये है तो वहाँ मौजूद है, और लोग पहले किस कदर वहाँ आते थे और उनसे मुताला करते थे, उनसे इस्तिफादा करते थे, आज मेरे ख्याल से वो सूरत हाल नहीं है।
1: ये
2: बताएं।
1: सूरत हाल ना होने की वजह, मुनव्वर भाई, हसन भाई, मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये भी है कि बहुत ही मटेरियलिस्टिक हो गई है सारी चीजें, और अदबी मबाहिस से किसी नौ की बजाहिर कोई फायदा लोगों को नजर नहीं आता, जो नई लस्न है। हालांकि हमने ये देखा कि भाई पिछली सदी में हर जबान का अपना एक अदब होता है, हर जमाने में अदब लिखा जाता है, आज भी दुनिया की हर जबान में अदब लिखा जा रहा है, वो पढ़ा जा रहा है, लेकिन क्या हिंदुस्तान की सतह पर उर्दू जबान और अदब को पढ़ने वाले किसी तरह की एहसास से कमतरी का शिकार हैं, या कि क्या सूरत हाल है ये?
0: देखिए तालीफ हैदर साहब, आपने जो ये सवाल उठाया है ये बहुत अहम सवाल है। असल बात क्या है, देखिए अगर पहले हम बुनियादी सवाल की तरफ जाएंगे, अदब क्या है। अदब जो है, अदब के लिए कहा जाता है कि ये हमारे जमालियाती जौक की तरबियत करता है, उसको कहना चाहिए कि जो एस्थेटिक हमारा सेंस है उसको सेटिस्फाई करता है। और अदब में तखयल भी होता है, आला और अरफा ख्याल भी होते हैं, और इंसानी जज्बात की तर्जुमानी

0: होती है।
1: सही
0: तो अदब कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम कारोबार के तौर पर या उस तरह लें। अदब का मुताला करने के लिए जो हमारे पास जो चीज हमें प्राइम मोटिव हमारा होगा वो हमारा अदबी जौक होगा। और आज के समाज में हम ये देख रहे हैं कि एक ऐसी मकसदियत पैदा हो गई है। मकसदियत अच्छे सेंस में भी होती है और मकसदियत बुरे उसमें भी इस्तेमाल हो सकती है कि जिस चीज का हमें कोई बराह रास्त फायदा नजर नहीं आ रहा उस चीज में हम दिलचस्पी कम ले रहे हैं। और हमने भी अपने तालिब इल्मी के दौर में हम रिसाले अदबी रिसाले पढ़ते थे तो हमें उस वक्त यही होता था कि हमें कोई किसी फायदे के लिए हमने कभी नहीं 20वीं सदी या कोई रिसाला खरीदा। हम सोचते थे चलो इसमें फिक्र तौंसली
1: मैं
0: का
1: तो आपके
0: मजमून
1: बात
0: है या करें या लाल कपूर का तंज है तीरो नाश्ता है वो हम इसके लिए पढ़ते थे। आज कारीन की एक बड़ी तादाद और लिखने वालों की ऐसी है जो इस मकसद से लिख रहे हैं कि या तो उनकी चीज छप जाए या उनको जो है कई ऐसे अक्सर लोग हमसे राबता करते हैं कि हमें वो रिसाला तो मिल गया लेकिन वो जो बेगार था उसमें हमारा नहीं था वो मजमून। अब अगला मैं देखूंगा ये तो हमारी रख देते हैं ऐसे ही मजमून। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी तहरीर कहीं छपेगी हमारी तस्वीर छपेगी तब तो हमें दिलचस्पी है अदबी सहाफत से वरना हमें अदबी सहाफत से कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये चीज है कि जो बेलौस कारीन उनकी तादाद कम हुई है। आज ऐसे लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं जो अगर उनकी चीज छपी तभी उनको दिलचस्पी होती है।
1: ये मुनव्वर भाई मेरे ख्याल से सूरत हाल आपके सामने भी आती होगी
0: जी
1: इदारत के
0: बिल्कुल
1: दौरान,
0: बिल्कुल यही
1: कि जो
0: नुस्खा है।
1: मजामीन आ रहे हैं वो मजामीन जो है वो भी किसी एक खास मकसद के तहत आते होंगे, और जो मुबाहिस जिस तरह के कायम हो रहे हैं वो भी एक खास मकसद के तहत ही कायम हो रहे हैं। मतलब कोई खालिस अदबी मौजूआत का मुताला करने के लिए और उससे कोई एक बहस सामने आ रही है या कोई नतीजा अखज किया जा रहा है, जिस तरह से हम देखते चले आए, मतलब ये पूरी नस्ल जो है वो हमारे सामने जो 20वीं सदी में हमारे दरमियान आई, इसमें शमी मनफी थे या बाकर मेहंदी थे या वारिस अलवी थे, शमसुर्रहमान फारूकी थे, ये पूरी नस्ल जो हमारे सामने आई ये अदबी मौजूआत से वाबस्तगी रखती थी। लेकिन शायद मेरे ख्याल से आज अदबी मौजूआत के बजाय जो है वो कारोबारी मौजूआत जो है वो ज्यादा दाखिल हो गए हैं। क्या ख्याल है आपका?
2: जी असल में ये आलमगीरियत और ग्लोबलाइजेशन के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें उन्होंने ऐसा गरचे एक इनकलाब बर्पा किया है लेकिन उसमें अदब के लिए जो शिद्दत होनी चाहिए जो उसके लिए दिल के अंदर अपने एक जज्बा होना चाहिए वो नहीं पाया जाता। और उसके लिए मैं फिर यही कहूँगा उसके लिए मुताले का फुकदान है। मुताला नहीं करते वो जौक पैदा नहीं होता। मुताला करने से असल में जौक भी पैदा होता है। हम किसी एक सिंफ में मुताला करते हैं उसी में जौक हमारा पैदा होता है उसी में हम परवान चढ़ाते हैं और उसी में फिर हम मजमून लिखते हैं या शायरी करते हैं या तंजिया मलाहिया मौजू पे किसी पे मजमून मुंतखब करते हैं। उसके लिए सबसे बड़ी कमजोरी जो है उसको दूर करने की जरूरत है और उसको दूर करना जो है वो उसके लिए क्या किया जाएगा उसके लिए ये होगा कि हम ऐसी चीजें सामने लाएं और मुताले के लिए हम ऐसी चीजों का इंतखाब करें जिन्हें हमारा जहन कबूल करता हो। अब हमारा जहन तो किसी चीज को कबूल नहीं कर रहा और हमें इम्तिहान देना है उसका तो वही इम्तिहान देने में वहीं पर ही बात दिगरगुं हो जाती है। इसलिए नई नस्ल में ये चीजें नहीं पाई जा रही हैं और नई नस्ल ये जो सोचती है कि हमें जो है अदब की खिदमत तो अपनी जगह है हमें तो सिर्फ मुलाजमत हासिल करनी है और मुलाजमत हासिल करने के लिए हमें इतना पढ़ना जरूरी है उतना ही पढ़ें बाकी क्या करेंगे
1: नहीं, इसी के
2: बाकी कुछ नहीं
1: दरमियान
2: करना।
1: मुनव्वर भाई मतलब सहाफ़ियों के पास तो जैसे आप हैं या ज़िया साहब हैं तो आप लोगों के पास जो मजामीन आते होंगे, ज़िया साहब मजामीन आते हैं हर महीने, किस क्या तादाद होती है?
0: मजामीन बहुत बड़ी तादाद में आते हैं लेकिन उनमें ज्यादातर जो है वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के उन तलबा या असातिज़ा के होते हैं कि जिनको किसी वायवा में किसी इंटरव्यू में शामिल होना है और वहाँ एक खास तादाद जरूरी होती है मजामीन की जो आपके छपे हों उसकी गिनती होती है। उस मकसद के मजामीन ज्यादा होते हैं और खालिस अदबी जौक के लिए खालिस इल्मी मुताले के लिए लिखे गए मजामीन कम होते हैं हमारे पास।
1: शमसुर्रहमान फारूकी शायद अगर ये ऐसे मजामीन छापते रहते तो शायद शबखून जो है वो एक तारीख रकम ना कर पाता,
0: बिल्कुल
1: मेरे ख्याल से शायद ये
2: बिल्कुल।
1: सारे
2: और
1: रसायल।
2: उसी
1: जी
2: तरह की सूरत हाल है मजामीन की सूरत हाल ये है कि कम से कम 15-20 मजमून 10 तो कम से कम वरना 10 से ज्यादा ही मजमून कम से कम जब भी मेल खोलो तभी सामने नजर आ जाते हैं।
1: ओ
2: अब उनको आप निकालिए उन्हें देखिए पढ़िए तो उसमें ज्यादातर तादाद ऐसी होती है जैसे जैसे ज़िया साहब ने बताया जैसे जिस स्कॉलर होते हैं कि जैसा मेरा मजमून लगना है मुझे 2 नंबर 4 नंबर इसके मिलेंगे आप इसको छाप दीजिए। ऐसे अफराद बहुत कम हैं जैसे प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब हैं प्रोफेसर अब्दुल हक साहब हैं इनके मजामीन आते हैं प्रोफेसर अतीकुल्ला साहब हैं ये लोग मजमून लिखते हैं लेकिन वो ही सूरत हाल होती है कि हर महीने तो छाप नहीं सकते
1: सही
2: कोई भी रिसाला हर महीने किसी को नहीं छाप।

0: सकता, और उसके लिए 3-4 महीने की जरूरत होती है। 3-4 महीने बाद उनके मजामीन छापे जाते हैं।
1: इसकी क्यों कैद होती है कि हर महीने नहीं छाप सकते जिया साहब? असल में सरकारी रिसालों में ये कैद इसलिए होती है कि किसी भी सरकारी इदारे में ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि हम किसी खास जो फर्द है उसके साथ कोई फेवर कर रहे हैं, चाहे वो कितना ही अच्छा लिखने वाला क्यों ना हो, लेकिन अगर हम उसको बार बार छापेंगे तो ये भी हो सकता है कि हम उसके साथ कोई जानबदारी बरत रहे हों। और क्योंकि सभी को मौका मिलना चाहिए इसकी, अगर नहीं मिले तो कोशिश यही होनी चाहिए सभी को मौका, इसीलिए ये रूल बनाया जाता है। अब
0: नई नई सदी में जो ये 21वीं सदी है मुनव्वर हसन साहब, जिया साहब इतने बरसों में आप लोग भी इतने जमाने से इदारत कर रहे हैं या हिंदुस्तान के दीगर जो रसायल यहाँ से निकल रहे हैं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि नई सदी में जो मैं सूरत हाल देख रहा हूँ, ये भी मुमकिन है कि बहुत सारे लोग जो है वो इस एकेडमिक वर्ल्ड से अलग होके भी लिखने की कोशिश करते हैं या इस तरह के भी मौजूआत होते होंगे। जैसे मैं देखता हूं कि जो पर्चे आलमी सतह पर कुछ पर्चे हैं उर्दू
1: जी
0: के जो निकल रहे हैं, उनमें
1: जी
0: तराजिम शाये होते हैं, उनमें बहुत अच्छे मजामीन शाये होते हैं, नज़में शाये होती हैं। मेरे ख्याल से खालिस

0: कि नई सदी में जो मैं सूरत हाल देख रहा हूं, ये भी मुमकिन है कि बहुत सारे लोग जो है वो इस एकेडमिक वर्ल्ड से अलग होके भी लिखने की कोशिश करते हैं, या इस तरह के भी मौजूआत होते होंगे। जैसे मैं देखता हूं कि जो पर्चे आलमी सतह पर कुछ पर्चे हैं उर्दू
1: जी
0: के जो निकल रहे हैं,
1: जी
0: उनमें तराजिम शाये होते हैं, उनमें बहुत अच्छे मजामीन शाये होते हैं, नज़में शाये होती हैं। मेरे ख्याल से खालिस हिंदुस्तान की सतह पर लोग कम हैं, लेकिन अगर कम भी हैं तो उनकी शनाख्त क्यों कम मुमकिन है? मतलब किस तरह से उनकी शनाख्त होगी कि भाई ये लोग जो हैं वो एकेडमिक्स की दुनिया से अलग होकर एक खालिस जज्बे के तहत मजामीन लिख रहे हैं? क्या ख्याल है मुनव्वर साहब?
1: जी बिल्कुल, इस तरह तो होता है और बहुत से लोग कर भी रहे हैं ऐसा। अपने अपने मौजू से हटके भी लिखते हैं, मुख्तलिफ मौजूआत पर लिखते हैं, लेकिन वही सीनियर्स जो हैं वो मामला यही होता है कि उनकी सब चीज़ें सामने नहीं आ पाती हैं। फिर यह होता है कि वो किताबी शक्ल में भी सामने आती हैं, वो लोग उनको किताबी शक्ल में शाये करके पेश करते हैं। इसलिए कि सारे मजामीन रसाइल में चले जाएं ऐसा मुमकिन नहीं होता। अखबारात में तो खैर जा सकते हैं, अखबारात में तो छप जाती हैं चीज़ें, लेकिन रसाइल का जहाँ तक ताल्लुक है, रसाइल का एक मिजाज होता है, हर रिसाले का एक अपना मिजाज होता है, वो उसके एतबार से मजामीन उसमें शाये किए जाते हैं, उसी के एतबार से अफसाने शाये किए जाते हैं, उसी के एतबार से गजलें शाये की जाती हैं। बाज़ रसाइल जो हैं वो सिर्फ जदीद तर्ज की गज़लें शाये करते हैं, बाज़ रसाइल जो हैं रिवायती गज़लें शाये करते हैं, बाज़ रसाइल जदीद और रिवायत दोनों को मिला के शाये करते हैं। ऐसे रसाइल की तादाद ज़्यादा है जिसमें जदीद और रिवायती दोनों तरह की गज़लें शाये होती हैं, और वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, इसलिए कि उसके कारी दोनों तरह के मिल जाते हैं उसको। और यही आज सूरत हाल मजामीन की है। जब मजामीन का इंतखाब किया जाता है, आज सहल पसंदी बहुत ज़्यादा आ गई है नई नस्ल में, या नई नस्ल को छोड़िए जो पिछली नस्ल के भी बाज़ लोग हैं, उनके यहाँ भी सहल पसंदी आ गई है। और वो भी कोई किताब उठाई और उस पर कोई तबसराती मजमून लिखा और ज़रा तवील मजमून हो गया तो उसको भेज दिया कि साहब ये एक मजमून हो गया है, इसको आप शाये कर दीजिए। नहीं शाये कर पाते हम लोग, मजबूरी है। रसाइल के सफ़ात भी महदूद होते हैं, उन्हीं के अंदर मजामीन समेटने हैं। अब उसी में अगर हमारे पास 4-5 सफ़े के 8-10 मजमून आ गए तो हमारे रसाइल का तो पेट भर गया, और मजामीन आए हैं हमारे पास 20-25, तो जाहिर है 15 मजमून तो नहीं छप पाएंगे। 15 मजमून में भी कोई और मजमून होंगे एक दो, तो अगले महीने काम आ जाएंगे, वरना वो रखे रहेंगे या उनका तकाजा होगा। जैसे बताया उन्होंने, किसी का तकर्रुर है, किसी की तरक्की है, किसी स्कॉलर की PhD जमा हो रही है, उनको करना है। अब उसमें सूरत हाल ये होती है कि उनको बताया जाए।
0: नहीं, ये मनोहर भाई बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन जैसे सूरत हाल को बदला कैसे जाए? मतलब हिंदुस्तान की सतह पर ये तो मसाइल हैं, लेकिन मसाइल को कैसे बदला जाए? मतलब हमारे सामने, हमारे पेशे नजर, आपका जो तजर्बा है, हमारे पेशे नजर जो मौजूआत या जो रसायल हैं कि भाई ये रसायल थे और इन रसायल को हमने जो है वो मतलब ऐसा जाना कि भाई इसी तरह से रसायल होना चाहिए, तो अब सूरत हाल को तब्दील करके रसायल की दुनिया में इंकलाब कैसे लाया जाए?
2: आप सही कह रहे हैं कि उसमें तब्दीली की बात भी हमें सोचनी चाहिए। हम यही नहीं सोच सकते सिर्फ कि जो मसाइल हैं हम उनको गिनवाने लगे। बात यह है कि अगर हम लोग अदब में सच्ची दिलचस्पी लें और जो रसाइल हैं उनको खरीदें, उनकी सरपरस्ती करें, उन्हें पढ़ें, और उनमें अगर हमें कोई कमी लगती है तो उसको पॉइंट आउट करना भी जरूरी है कि भाई आप जो है मुदीर को लिख सकते हैं कि इसमें आपको ये चीजें अच्छी नहीं लगी। और उसमें अगर हम लोग दिलचस्पी लेंगे, और रिसाइल से पहले तो अदब में दिलचस्पी लेंगे अगर हम, तो मैं समझता हूं कि रिसाइल में एक नई जान पड़ सकती है। वैसे तो आप देख रहे हैं कि नई सदी जो है इसमें पूरा प्रिंट मीडिया ही एक डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, क्योंकि लोगों का ज्यादातर वक्त जो है डिजिटल मीडिया में, मोबाइल में सर्फ हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ डिजिटल रिसाइल भी निकल रहे हैं, अदबी रिसाइल अगर हम देखें, और जो सरकारी रिसाइल हैं, निजी भी हैं। ओवरऑल मेयार में मैं समझता हूँ कि कमी जरूर आई, लेकिन अगर हम लोग दिलचस्पी लें अपने जबान में, अपने अदब में, और रसाइल को खरीद कर पढ़ेंगे तो हालात बेहतर हो सकते हैं, और नई सदी में हम एक अच्छी अदबी सहाफत जो है पेश कर सकते हैं।
0: खरीद के पढ़े जाए, इसकी पॉलिसी कैसे बनेगी हसन भाई?
1: हाँ सर, खरीद के पढ़ना, पॉलिसी क्या है, कुछ बहुत ज्यादा पैसे तो खर्च होते नहीं है, बस अपने दिमाग को इस तरफ लगाने की जरूरत है।
0: क्या कारईन जो इतने मजामीन भेज रहे हैं, क्या उर्दू के रसायल जो मुदीर हैं या जो इदारे रसाले निकाल रहे हैं, क्या उनको मालूम है कि उनके रसायल का कारी कहाँ है और उसको किस तरह से पकड़ना है? क्या ये पूरी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में तो कहीं कोई कमी नहीं है जिससे कारी तक हमारे रसायल पहुंच ही नहीं रहे? क्या इस तरह की कोई कमी महसूस करते हैं आप?
1: नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जिस डिजिटल दौर से हम गुजर रहे हैं उस तरह की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए कि उसकी उतनी जितनी मेहनतों की ज़रूरत है उतनी मेहनत नहीं हो पाती।

0: असल में हुआ है कि एक बड़ा तबका जो है अदबी सहाफत का ही कह लीजिए, नई सदी में, इसमें 21वीं सदी में, ये सोशल मीडिया की तरफ चला गया है अभी गुज़िश्ता 8-10 साल से। और सोशल मीडिया पर जाने के बाद उनके सामने सूरत हाल यह है कि उनकी एक चीज़ अभी शाये हुई, अभी उनके पास कमेंट आने शुरू हो गए, बस वो फारिग हो गए, कहने लगे बहुत अच्छा मैंने लिख दिया। अभी पिछले दिनों एक थी शायद, मैं एक नज़्म पढ़ रहा था कोई, उसमें लिखा हुआ था आओ बच्चों, ढूंढने के साथ तखातुब था, तो मैंने उसमें कमेंट किया कि ये गलत है और आप जो है आओ बच्चों लिखिए। तो उल्टा बजाय इसके कि कोई उसमें अच्छा कोई अदीब होता है, कोई शायर होता है, कुछ लोग उनके पर मेरे पास कमेंट आने शुरू हो गए, कैसे ये क्यों होगा, ये क्यों होगा, ये क्यों होगा। मैंने उन्हें लिख के समझाया कि जैसे आप ए लोगों बोलते हैं, ए लोगों नहीं बोलते, इसी तरह से आओ बच्चों बोलेंगे। तो वो शायरा थी, उनकी समझ में आई बात, और उन्होंने दोबारा फिर वो नज्म अपनी ठीक करके दोबारा पोस्ट की। तो ये सूरत हाल है, चार हमारे पास कमेंट आ गए, 10 कमेंट आ गए और हम फारिग हो गए कि हमने बहुत अच्छा लिख दिया है। रसाइल में तो ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी शक्ल में, चाहे कोई कितना भी कमजोर अदीब हो, वो ऐसा जाने ही नहीं देगा। लेकिन यह है कि चीजें
1: ये
0: सोशल मीडिया से नुकसान पहुंच रहा है, सोशल मीडिया में इसलाह की जरूरत है, सोशल मीडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं वो इसमें इसलाह करें, और अच्छे लोग जो हैं वो भी सोशल मीडिया से जुड़ें और इसी तरह से जो चीजें देखें उन पर कमेंट करें, उन्हें बताएं,
1: यकीन
0: इसलाह करें उनकी। जब
1: यकीन
0: इसलाह करेंगे, अब मैंने उन्हें बताया कि जब आप सही लिखोगे तभी तो बच्चों की इसलाह होगी, वरना बच्चे तो यही पढ़ेंगे, यही बोलेंगे, और जब तक इसलाह का आपके यहाँ पहलू नहीं होगा तो यही चलता रहेगा, यही सिलसिला आगे बढ़ जाएगा।
1: यकीन है जैसा आप कुछ कह रहे थे।
2: मैं ये एक तो आपने मार्केटिंग की बात की, थोड़ा सा प्रिंट मीडिया की मार्केटिंग मुतासिर हुई है, बहुत सी जो न्यूज़ एजेंसियां हैं, बुक शॉप्स हैं, उन्होंने अपना कारोबार बंद कर दिया है या कुछ और कारोबार करने लगे, उससे हमारे भी काफी एजेंट्स और कम हुए हैं, और जब एजेंट नहीं होगा तो वो सप्लाई नहीं पहुंच पाती उन जगहों तक जहां तक हमारी पहुंचनी चाहिए, ये एक मसला है। और दूसरी बात, अभी जैसे मुनव्वर साहब ने कही, एक और ऐद हाजिर में एक नई एक मसला ये भी है कि अब कोई भी शख्स जो है, एक नई तब्दीली आई है रवैये में कि वो सिर्फ तारीफ सुनना चाहता है। ये इंसानी फितरत है, हम ये चाहेंगे कि लोग हमारी तारीफ करें या हमें बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करें, लेकिन हमें इसके लिए भी तैयार होना चाहिए कि अगर हमसे कोई गलती हुई है या किसी दूसरे ने हमारी कोई गलती की तरफ निशानदेही की है तो उसे हमें मानना भी चाहिए। लेकिन आज ये एक अफसोस की बात यह है, और इससे अदब का नुकसान भी हो रहा है, कि आज का अदब लिखने वाला ये तवक्को कर रहा है कि जैसे ही उसकी तहरीर सामने आएगी तो तारीफ से
0: सिर्फ
2: लोग कुल
0: तारीफ
2: माने,
0: तारीफ।
2: और अगर कोई उसकी तनकीद करता है तो वो चाहे कितनी ही सेहतमंद और जायज तनकीद क्यों हो तो वो बुरा मानते हैं लोग, ये चीज गलत है।
1: मेरे ख्याल से शायद 20-21 सालों में मंजरनामा बहुत तेजी से तब्दील हुआ है। जो आम लिखने वाले हैं वो तेजी से हमारे दरमियान से गायब होते चले गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अब संजीदा मौजूदात पे बहस करने वाले जो लोग हैं वो अगर हैं भी तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा वो शिरकत नहीं करते हैं, बल्कि किनारा कर रहे हैं। हम सूरत हाल इस कदर बिगड़ चुकी है, एक तो सोशल मीडिया और एक रसाइल का जो एक पूरा एक मैं समझता हूं कि एकेडमिक दुनिया जो हावी हो चुकी है रसाइल पर, इसकी वजह से भी जो है, जो कि हर टॉम डिक एंड हैरी जो है वो पीएचडी में आ गया है, और वो पीएचडी के मौजूद बड़े ही ऊट पटांग से होते हैं, उन मौजूद पे पीएचडी के वो मजामीन लिखते हैं, वो जब मजामीन लिख के भेजते हैं तो जाहिर है कि मुदीर एक नहीं मना करेगा, दो मना करेगा, चार मना करेगा, लेकिन वो उसकी भी एक मजबूरी है कि वो इदारत को अपनी जारी रखेगा, तो कहां तक मना करेगा। तो मेरे ख्याल से इस फिजा से भी जो है वो संजीदा लिखने वाले वो शायद दूर हुए हैं, क्या ख्याल है
0: हाँ, असल में
1: उन्होंने?
0: संजीदा लिखने वाले दूर हुए हैं, और उसकी वजह यही है कि वो क्या करें, उनके सामने मसला यह है कि वो करें क्या, दूर क्या हो गए हैं। एक तो एक पूरी की पूरी नस्ल खत्म हो गई है, या वो उम्र की इस दहलीज पे पहुंच गए हैं कि अब उन्होंने लिखना पढ़ना छोड़ दिया है, और नई नस्ल जो आई है वो अपना जिस तर्ज पे लिख रही है वो सबको पता है, और कुव्वत बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल। पहले यह होता था कि लोग बर्दाश्त भी करते थे और हिम्मत भी रखते थे बर्दाश्त करने की। मुझे एक पुराना वाकया याद आ गया कि हजरत माहिरुल कादरी तफ्सीर निगारी में बहुत
1: जी,
0: मारूफ थे,
1: फरहान
0: और
1: निकालते थे
0: बहुत फरहान निकालते थे, और किसी की भी किताब के अपना
1: जी, तबसरे करते थे,
0: इतना अमदा तबसरा करते थे कि हर बहर उसको। अब उनके पास जोश मिली आबादी की यादों की बारात गई, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या किया जाए, उन्होंने कहा कि जोश साहब अपने हाथ से लिख के भेजेंगे तो तबसरा करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। तो जोश साहब ने एक किताब भेजी, उस पर लिखा बकरा हाजिर, ठीक है, जोश साहब ने लिख के भेजा। तो इतनी सलाहियत थी, हालांकि जोश मिली आबादी के सामने फर्ज की कतारें खड़ी रहती थी, उसके बावजूद भी उन्होंने, उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं गिरफ्त करेंगे मेरी, लेकिन उनके अंदर यह सलाहियत थी कि वो उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत रखते थे। आज बर्दाश्त करने की हिम्मत है नहीं किसी में भी, आप किसी भी अदीब को उठा लीजिए, किसी को भी, कोई बर्दाश्त नहीं।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 14.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 4 बजने वाले हैं। अब आप थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर।

0: वो वादे वो इरादे वो कस्में वो गुजारिश वो कविता वो गीत वो नहर वो आकाश वो पहाड़ वो समुद्र वो खिलखिलाते चेहरे वो फूल वो पत्तियां और वो मिट्टी जिसके ऊपर आप और हम खड़े हैं, वो मिट्टी जो हमें अनाज देती है, वो मिट्टी जो रहने के लिए घर, काम करने की ऊर्जा, एक पहचान देती है। उस मिट्टी का तिलक कर अगर हम सर उठा के खड़े हों तो कोई भी पहचान लेगा कि हम भारतीय हैं। और इसी मिट्टी में जहां हम अनाज उगाते हैं, हरी भरी वादियों में उसके लुत्फ उठाते हैं, यहां पर देश की रक्षा करने के लिए फौलाद भी जन्म लेते हैं। और ऐसे ही जांबाज इंडियन आर्मी के अफसर ब्रिगेडियर सुशील तमर हमारे साथ, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित, आज संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। देशवासियों के साथ हमारे इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस के साथ मैं ब्रिगेडियर सुशील तमर जी का स्वागत कर रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू। और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग।
0: सबसे पहले तो पूरे देश की तरफ से मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि यू आर सर्विंग इन द इंडियन आर्मी बट यू डिड फाइंड द अपॉर्चुनिटी। आपने जो भी रेगुलर नेसेसरी परमिशंस थी वो ली और अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
1: नहीं, मेरे लिए खुद भी एक बहुत खुशनसीबी का मौका है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आपसे मुखातिब हो सकूं, आपके श्रोताओं से बात कर सकूं। इट्स रियली एन ऑनर।
0: मुझे ये बताइए कि क्या हमारे इंडियन आर्मी के अंदर जो जांबाज अफसर होते हैं जिन्होंने बहुत एक काबिल तरीके से एक ऑपरेशन या बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं, वो इसी तरह मीठी जुबान बोलते हैं? मतलब कभी कभी वो कड़क साउंड नहीं करते, वो इट्स समवॉट लाइक अ कैमोफ्लेज।
1: नहीं, मेरे ख्याल से ये संगति का असर है। आपका लहजा खुद इतना सुहाना है कि शायद हमारे लहजे में भी आपकी मिठास आ गई है।
0: ओके, तो दुश्मन को मीठा मीठा कह के थोड़ा सा उसको सॉफ्ट डाउन करो एंड देन टारगेट है, इज दैट द आईडिया?
1: या, दैट्स इट।
0: तो अपने सुनने वाले को बता दूं कि ब्रिगेडियर सुशील तंवर एक अलुमनाय है मिलिट्री स्कूल अजमेर के, नेशनल डिफेंस अकेडमी पुणे खड़गवासला के और इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून के। आप प्रेस्टीजियस मिलिट्री कोर्सेज करने के लिए डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस डायरेक्टर्स कोर्स IIDC जो किंग्स कॉलेज लंदन में होता है वो करने भी जा चुके हैं। और ये महारत हासिल करके आपने, ये कहूँ कि

0: the coveted uniform of the Indian Army you penny?
1: बिल्कुल मेरे लिए बहुत खुशनसीबी का मौका है. मैं तो एक्चुअली बचपन से ही हम मिलिट्री स्कूल अजमेर में पढ़ा हुआ हूँ जैसे आपने बताया, और हमारे स्कूल का ये मकसद था कि छात्रों को डिफेंस सर्विसेज में ऑफिसर्स के लिए ट्रेन किया जाए
0: जी.
1: उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी चले गए. सो बचपन से ही यूनिफॉर्म हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी, एंड दैट इज़ वाई वी फील ब्लेस्ड कि हमें मौका मिला देश की सेवा करने का, वर्दी पहनने का.
0: और इसके साथ साथ अपने देशवासियों को बता दें कि आज जो हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं ब्रिगेडियर सुशील तंवर, आपने 17 साल जो योगदान दिया भारतीय आर्मी को अभी तक, उसमें काउंटर टेररिज्म एनवायरनमेंट जो जम्मू एंड कश्मीर में था, वहां पे इलीट 15 कोर की इंटेलिजेंस यूनिट को कमांड किया है. यंग ऑफिसर होने के नाते इन्होंने बहुत सारे जोखिम झेले. ऑपरेशन रक्षक में आप एक बैटल कैजुअलिटी के शिकार हुए, लेकिन शरीर शिकार हुआ, हौसला नहीं हारा और आगे बढ़ते गए. नॉर्दर्न कमांड की कमीशन कार्ड और साथ ही साथ इन्हें COAS कमेंडेशन कार्ड 2 बारी मिल चुका है. इनके बारे में और हम बात करेंगे, लेकिन विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी, ये सफर शुरू कहाँ हुआ आपका? When did you want to come to the Indian Armed Forces?
1: जैसा मैंने पहले बताया कि हम मिलिट्री स्कूल अजमेर में पढ़े हुए हैं
0: जी.
1: 10 साल की उम्र में स्कूल में एडमिशन हो गया था.
0: ओके.
1: तो मेरे ख्याल से शायद मैं 5वीं 6वीं क्लास में रहा होऊंगा जब मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे भी फौज में जाना है, सेना में जाना है. और एक बार हम स्कूल में आ गए तो हमारा रूटीन, लोग कहते हैं कि मैंने 17 साल फौज में दिए, 20 साल दिए, 25 साल दिए, लेकिन हम स्कूल वाले, हम जो फौज में आ गए, हम कहते हैं कि हम तो बचपन से ही पीटी परेड करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं. तो आई थिंक इट वॉज राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड दैट आई रियली वॉन्टेड टू ज्वाइन.
0: तो बचपन से ही आप एक डिसिप्लिन माहौल में रहे होंगे?
1: हाँ, डिसिप्लिन था, काफ़ी डिसिप्लिन था जो हमारे जीवन में था. सुबह टाइम पर उठना, पीटी करना, क्लासेस टाइम पे जाना, शाम को गेम्स, स्टडी पीरियड. और वैसे पुराने जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनका एक अलग डिसिप्लिन और एक रूटीन था, खासकर हमारे मिलिट्री स्कूल्स. 5 मिलिट्री स्कूल हैं पूरे देश में, तो मैं अजमेर में पढ़ा हुआ हूँ. तो हमारे स्कूल में बचपन से ही ये शिक्षा दी जाती थी कि डिसिप्लिन में रहें और फौज की तैयारी करें, और हम आगे फौज में.
0: ओके. पर साथ साथ में और भी बहुत सारे सवाल पूछता रहूँगा लाइफ की फिलॉसफी से जुड़े. आपको लगता है कि तब का डिसिप्लिन, बड़े होने के बाद जो डिसिप्लिन है, यू हैव नो रिग्रेट्स कि डिसिप्लिन से ही जो जिंदगी है ना वो थोड़ी सी और निखरती है, लुक्स मोर कलरफुल?
1: हाँ, मे नॉट बी कलरफुल, बट सर्टेनली डिसिप्लिन ब्रिंग्स एन ऑर्डर. मुझे लगता है कि डिसिप्लिन रहने से आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक निखर जाती है.
0: ओके.
1: उसमें एक तरीका आता है, एक सलीका आता है, आपका आपके आसपास वाले लोगों पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है ऐसा मुझे लगता है. और सेना में तो डिसिप्लिन ही ज़िंदगी है.
0: yes.
1: तो इसीलिए अगर हम ना भी चाहें तो भी हमें डिसिप्लिन में तो रहना ही पड़ेगा.
0: पर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, दैट्स अ रीज़न कि इंडियन आर्मी इज़ वन ऑफ द टॉप आर्मीज़ ऑफ द वर्ल्ड.
1: सर्टेनली सर्टेनली. एंड हम लोग UN जाते हैं, बाहर जाते हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ हमारी एक्सरसाइज होती हैं.
0: एब्सोल्युटली.
1: और वैसे तो वर्ल्ड ओवर आर्मीज आर नोन फॉर डिसिप्लिन, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी सेनाओं में इतना अनुशासन नहीं है, लेकिन भारतीय सेना की बात ही कुछ और है.
0: सो क्योंकि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे मिले जुले सवाल भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे सिविलियन हमें सुन रहे हैं, हमें पूरा देश इस समय सुन रहा है, क्योंकि आकाशवाणी के लगभग सारे स्टेशन इस समय ट्यून्ड हैं. न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से बहुत सारे हमारे NRIs जो हैं वो इस प्रोग्राम को बहुत सुनते हैं. हमारा व्हाट्सएप का जो मशीन है वो मैं खोल लेता हूँ, एंड ऑफ कोर्स अभी अभी मेरे पास मैसेज आया कि ऑस्ट्रेलिया से कोई हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे, और उनका नाम है जोया. खैर, उन्होंने कुछ सुझाव दिए, वो तो मैं बाद में पढ़ता हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कि ऐसी क्या ख़ास बात है इंडियन आर्मी में आज की डेट में, इतने मॉडर्नाइजेशन पीरियड में हम लोग जा रहे हैं, हम एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हैं, ये कहना सही होगा?
1: बिल्कुल सही है. तो हम ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हैं और दुनिया बदल रही है, साथ में सेना बदल रही है. दी वॉर्स आर चेंजिंग, दी एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बैट इज चेंजिंग. तो काफ़ी बदलाव आ रहा है.
0: जब आपने पहली बार

0: आपने वर्दी पहनी, उसके बाद आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई?
1: हाँ, जब हम 97 में कमीशन हुए थे तो हमारी यूनिट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थी,
0: ओके
1: मणिपुर में। तो कुछ साल मैंने वहाँ गुजारे, लेकिन उसके बाद जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, ज़्यादातर वक्त मैंने जम्मू कश्मीर में गुजारा, लेकिन शुरुआती 2-3 साल मैंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गुजारे थे।
0: तब का नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अब का बहुत फर्क आ गया होगा।
1: फ़र्क तो हर जगह आया
0: जी
1: है।
0: जी
1: नॉर्थ ईस्ट इंडिया मुझे जाने का इतना मौका नहीं मिला,
0: ओके
1: बीच बीच में जाता रहा, बट एज ए ट्रैवलर, एज ए टूरिस्ट, नॉट एक्चुअली सर्व नहीं किया मैंने वहाँ पे इतना ज़्यादा।
0: ओके
1: लेकिन जो हमारे साथी हैं वो बताते हैं कि सब कुछ बदल चुका है, तरक्की हुई है, लोगों के नज़रिया बदला है, सड़कें बदली
0: जी
1: हैं, डेवलपमेंट हुई है, तो आपके मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हुए हैं, तो ज़िंदगी जो है बिल्कुल ही बदल गई है, और साथ ही ज़िंदगी जीने के तरीके भी बदल गए हैं।
0: सो टेल अस समथिंग मोर अबाउट योर पोस्टिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। उस समय बड़ा डिफिकल्ट पीरियड था जब आप वहाँ आपकी पोस्टिंग हुई।
1: जी, मैंने जम्मू कश्मीर में 15 साल से ज़्यादा गुजारे हैं, और पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, रजौरी, आपने बात की 15 कोर की इंटेलिजेंस यूनिट की,
0: जी
1: 12 मुला में मैं रहा, तो
0: ओके
1: तकरीबन जम्मू एंड कश्मीर से मेरा एक बहुत ही क्लोज़ रिलेशन है वहाँ के लोगों के साथ,
0: ओके
1: बहुत मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं क्योंकि मैंने इतना वक्त गुजारा है, और मुझे कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा जो फर्स्ट होम इज़ जम्मू एंड कश्मीर।
0: वाओ, ये सुन के तो बहुत अच्छा लगा। मतलब फौलाद भी कह रहा है कि जम्मू कश्मीर की बात ही कुछ और है।
1: बात ही कुछ हो रहा है वहाँ के
0: जी
1: लोगों के साथ,
0: जी
1: हमने बहुत काम किया उनके साथ, हमारे जाति ताल्लुकात हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर सोल्जरिंग के सारे पहलू वो सामने आते हैं, चैलेंजिंग है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं, और लोगों के साथ एक मिलने जुलने का सिलसिला है। तो अगर हम कहते हैं कि पी स्टेशन में कोई दिल्ली में है, कोई मथुरा में है, कोई पूना में है, इसके बनस्पत कोई जम्मू एंड कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहने से उसको सोल्जरिंग का जो रियल वैल्यू है वो सामने आती है। सो इट्स टफ बट इट इज़ ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइंग।
0: आप हमारे सिविलियंस को इस वार्ता के, आपके और मेरे बीच जो वार्ता चल रही है उसके माध्यम से आप ये बताना चाहें कि चाह रहे हैं कि जब हमारी इंडियन आर्मी वहाँ, जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे जवान हैं, हमारे अफसर हैं, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप यूनिफॉर्म पहने और आपने गन पकड़ी एंड यू आर अ ड्रेडेड यू नो मैन इन अ यूनिफॉर्म। आप लोगों से मिक्सअप भी होते हैं। जागरूकता एक बहुत बड़ी चीज़ है, अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है, स्पेशली यूथ के लिए।
1: बिल्कुल, और आपने एक ड्रेडेड वर्ड का इस्तेमाल
0: जी
1: किया जो कि थोड़ा सा नकारात्मक होता है उसके मायने,
0: ओके
1: लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर के लोगों के हिसाब से देखते हैं तो वी आर नॉट सीन एज ड्रेडेड, आई थिंक वी आर सीन मोर एज
0: नो,
1: प्रोटेक्टर,
0: इट्स
1: और
0: ड्रेडेड
1: हमारा
0: फॉर दी
1: यस या
0: पीपल
1: ड्रेडेड, इट
0: हु
1: इज
0: यू
1: ड्रेडेड फॉर
0: फाइट
1: पीपल,
0: अगेंस्ट।
1: या वी आर फाइटिंग अगेंस्ट, सो
0: या
1: दैट वे यस, बट अदरवाइज आजकल जिस तरीके का माहौल है,
0: जी
1: कई तबकों में सेना को एक ड्रेडेड आइडेंटिटी भी दी जाती है, लेकिन आई थिंक वी आर वेरी टफ विद पीपल हुम वी आर फाइटिंग अगेंस्ट, बट वेरी फ्रेंडली टू एवरीवन हु इज़ ऑन आवर साइड।
0: तो आप इतना टाइम थे जम्मू कश्मीर में, वहाँ की लैंग्वेज वगैरह कुछ सीखी?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो ज़रूरी है, लोगों के साथ अगर हमारे को रिश्ते जोड़ने हैं तो फिर वहाँ की भाषा भी सीखनी पड़ेगी।
0: राइट, कुछ बताइए ना वहाँ पे, अब जब आपकी पहले पोस्टिंग हुई, या कोई कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो आपको याद आता हो, एंड यू सेइंग फाइनली मैं अब आर्मी के साथ हूँ और मैं ऑपरेशंस में हूँ।
1: देखिए, वहाँ तो डे 1 से ऑपरेशंस चलते हैं, मुझे अभी मैं बिल्कुल स्पेसिफिक डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा किसी ऑपरेशन के, लेकिन जैसे आपने बताया मुझे वहाँ पर गोली भी लगी एक एनकाउंटर में जो सुरनकोट में हुआ था।
0: ओ आई सी, आप
1: इसके
0: कुछ
1: अलावा
0: इलेबोरेट करना चाहेंगे?
1: नहीं, बट एक जगह थी जहाँ पर हमें सर्च ऑपरेशन करना
0: ओके
1: था, और
0: डन
1: वहाँ पर जैसा कि किसी भी ऑपरेशन में हो सकता है, आतंकवादियों से सामना हो गया और मुझे गोली लग गई, बट नॉट इट वाज नॉट वेरी सीरियस इंजरी, और ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था, और इसमें बाद में हमें आइडेंटिफाई किया हमने कि कौन था इसके पीछे, लेकिन इस तरीके के वाकये मेरे साथ हुए हैं, मैं बच गया, लेकिन हमारे बहुत बहादुर जवानों और अफसर्स ने अपनी

0: जान की बाजी लगाई है, अपनी जान का बलिदान दिया है। मेरे बहुत साथी, मैं जिस बैच से बिलोंग करता हूँ उस बैच में वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट 30 ऑफ आवर बैचमेट्स फॉर वेरियस रीजंस। सो द कॉस्ट इज क्वाइट हाई, बट दैट इज अ कॉस्ट दैट नीड्स टू बी पेड
1: फॉर द नेशन।
0: या फॉर द नेशन एंड फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री।
1: एक नशा है ना आप लोगों को कि नहीं यार, वर्दी पहनी है, बस अब सिर्फ देश ही दिखता और कोई नहीं दिखता।
0: नशा है, जुनून है, एंड आई थिंक दिस इज आवर फर्स्ट लव।
1: मैंने नशा इसलिए बोला क्योंकि आपने एक सॉन्ग सेलेक्ट किया हुआ है, उसके बोल ही कुछ ऐसे हैं।
0: हाँ, पहला नशा
1: जी,
0: और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना।
1: एनी स्पेसिफिक रीज़न?
0: हाँ, इसका रीज़न दो तीन रीज़न है। पहला रीज़न उसका ये है कि ये मूवी जो जीता वही सिकंदर, मैंने यही दिल्ली में रिड्स थिएटर होता था, कश्मीरी गेट के बाहर, तो मेरे भाई के साथ मैंने ये मूवी देखी थी। मैं आई थिंक 11th या 12th में था, और वो मुझे याद है, वो गाना पूरा, इट इज़ इम्प्रिंट ऑन माय माइंड। और फिर एक ऐसा वक्त आया जब मैंने इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून भी लगाया था, तो सब लोग सोचते थे ये क्या है पहला नशा। तो आई यूज़ टू से, मैंने अभी आपको कहा है कि आर्मी इज़ आवर फर्स्ट लव।
1: सर, बात तो आर्मी के आगे भी होगी। इस गाने को सुनते हैं, फिर पूछता हूँ किसके लिए आपने गाया था। संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और हमारे साथ ब्रिगेडियर सुशील तंवर मौजूद हैं स्टूडियो में।

0: तो हम अपने सुनने वाले को बता दें कि आप सुन रहे हैं ये खास प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो अभी इंडियन आर्मी को सर्व कर रहे हैं, ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित और इंडियन आर्मी की शान। और अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, माध्यम व्हाट्सएप का ही है। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप उसमें व्हाट्सएप भेजकर अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स, मैं जानता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस की जो सेलिब्रेशंस हैं, जो तैयारियां वो शुरू हो चुकी हैं, तो आप अपने भाव यहाँ पे प्रकट कर सकते हैं। नंबर है 9868107070, 9868107070, यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी से मैं अभी जानना चाहूँगा कि आपने बात की जम्मू कश्मीर की, तो बहुत लंबा अरसा आपने वहाँ पे बिताया है। यू मस्ट हैव सीन द समर्स एंड द विंटर, सारे वेदर आपने वहाँ पे देखे होंगे, तो कुछ शायरी वारी भी तो निकली होगी कभी ना कभी, कुछ मन तो किया होगा ना कुछ गुनगुनाने का, जैसे आपने ये गीत हमें सुनवाया, कुछ और भी आपने कुछ लिखा, कुछ भाव प्रकट किए वैसे?
1: हाँ, जम्मू कश्मीर में मैंने वक्त गुजारा, वहाँ के लोगों के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बनाए
0: जी,
1: और दो किताबें मैंने लिखी हैं।
0: ओके।
1: एक किताब है मुखबिर, विच इज़ ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज।
0: मुखबिर ओके।
1: मुखबिर मतलब इन्फॉर्मर होता है, और ये 17 कहानियाँ हैं इसमें।
0: ओके।
1: सब जम्मू कश्मीर की कहानियाँ हैं।
0: अच्छा।
1: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस की कहानियाँ हैं।
0: ओके।
1: वहाँ के लोगों की कहानियाँ हैं।
0: ओके।
1: और दूसरी किताब मेरी अभी आई है, अमन के फरिश्ते। ये कहानी है, दिस इज़ नॉवल, ये जम्मू कश्मीर में जम्मू प्रांत के पुंछ जिले में सूरनकोट एक जगह है।
0: okay.
1: वहाँ पर एक यंग मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर, उसकी कहानी है, और ये किताब अभी 5 महीने पहले ही आई है। दोनों किताबें राजपाल एंड सन्स ने पब्लिश की हैं, और इन दोनों किताबों में मैंने जो भी जम्मू कश्मीर में देखा, मेरे साथियों ने जो देखा, सो इट इज़ जस्ट ए कलेक्टिव एक्सपीरियंसिस, ऑफ कोर्स इट इज़ फिक्शन एंड रियलिटी कम्बाइंड।
0: मैं आपसे मुखबिर के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, आपने कहा कि उस वहाँ पे तरह तरह की कहानियाँ हैं, तो ये कहानियाँ जब आप वहाँ सर्व कर रहे थे, आपने तब लिखी या तब मन में बनाया और फिर बाद में?
1: ये कहानियाँ मेरे दिमाग में आती रही, जो मैं देखता रहा
0: जी,
1: जो मेरे साथी देखते रहे। हालांकि किताब ये 3-4 साल पहले आई है
0: जी,
1: कुछ कहानियाँ मैंने तब लिखी जब मैं वहाँ से वापस आ गया
0: जी,
1: और कुछ कहानियाँ मैंने वहाँ पर रहते हुए लिखी, तो मिला जुला संगम है ये। लेकिन जहाँ तक फीडबैक का सवाल है, काफ़ी लोगों ने मुझे ये कहा है, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि इन किताबों को पढ़ के, इन कहानियों को पढ़ के उन्हें जम्मू कश्मीर के बारे में एक नया नज़रिया मिला।
0: ओके।
1: और मेरे लिए एज ए राइटर इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती।
0: कुछ कुछ कहानियों का कुछ अंश यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहेंगे?
1: हाँ, इसमें 17 कहानियाँ हैं, जैसे ये कहानी मुखबिर जो पहली कहानी है मुखबिर, जिसके टाइटल जिसका ऊपर है किताब का, वो कहानियाँ एक बारामूला के पास गुलाम हसन नाम का इंसान रहता है।
0: ओके।
1: जो कि फौज के लिए मुखबिरी करता है।
0: ओके। दीज आर ऑल हाइपोथेटिकल नेम्स, राइट?
1: या सम ऑफ दीज नेम्स आर रियल,
0: रियल आल्सो,
1: बट मोस्टली इट इज हाइपोथेटिकल। मैंने क्या किया इसमें, जो मेरे साथ रहे लोग
0: जी,
1: जो मेरे साथ ही रहे, जिन्होंने हमारे साथ काम किया, जो मेरे साथ जुड़े रहे, हमने कहीं ना कहीं जो किरदार थे एज माय ट्रिब्यूट, हमने उनके नाम रख दिए। इट मे नॉट बी रियल, बट समवेयर दे डू एग्जिस्ट।
0: स्पाई नेम्स कह लो?
1: हाँ, स्पाई नेम्स कह लीजिए। कई असली नाम हैं, जैसे मेरे कोई साथी हैं उनके नाम पर, जो मेन किरदार है उनके नाम पर।
0: मेरा भी एक नाम है।
1: आपके नाम पर भी लग देंगे अगली किताब?
0: मेरा नाम रखा हुआ है।
1: अच्छा, क्या रखा हुआ आपका नाम?
0: फाल्कन 1।
1: अच्छा, आपके

0: के व्हाट्सएप प्रोफाइल पे भी फैल्कन वन आया था जब आपने मुझे पहली बार कॉल किया
1: हाँ
0: था, तो
1: या
0: मैंने कहा ये फैल्कन वन कहीं किसी ये
1: बस
0: खतरनाक किसी इंसान का फ़ोन आ रहा है,
1: हाँ
0: लेकिन फिर जब मैंने आपसे बात की और आपकी आवाज़ सुनी तो मुझे फिर पता लगा कि अच्छा आप तो ऑल इंडिया रेडियो से बोल रहे हैं,
1: जी
0: लेकिन जो स्क्रीन पे नाम आया था फैल्कन वो सच में काफ़ी ख़तरनाक था।
1: मेरे एक दोस्त भी हैं, आज ही बने हैं, उनका नाम है टैनी।
0: हाँ वो उनसे आप मिलते रहिए, आपको उम्मीद है मज़ा आएगा।
1: मेरे सामने बैठे हैं टैनी,
0: हाँ
1: सही कह
0: मुझे
1: रहा हूँ।
0: फौज में, हाँ मुझे फौज में लोग, फौज में एक रिवायत है
1: आपके भी
0: निकनेम्स
1: व्हाट्सएप
0: की।
1: व्हाट्सएप की इमेज के साथ आया था टैनी स्पीकिंग।
0: हाँ तो हमारी फौज में एक रिवायत है
1: जी
0: निकनेम्स की,
1: जी
0: मडवाल को मैडी बोल देते हैं, संवाल को सैम बोल देते हैं, तो यशराज है तो यश बोल देंगे, तो यू नो वी हैव ए विद लव एंड विद अफेक्शन वी गिव निकनेम्स। शायद हर पेशे में होता होगा लेकिन फौज में कुछ ज़्यादा है और ज़्यादा अपनापन है, तो मुझे फौज में लोग टैनी कहते हैं, सीनियर जूनियर सब, कोई सर भी बोलता है तो टैनी सर बोलता है, तो दैट इज़ हाउ
1: एंड यू
0: टैनी
1: एंजॉय
0: केम।
1: इट, वी एंजॉय दीज नेम्स,
0: या
1: इज़न्ट?
0: बिकॉज़ दे आर सेड आउट ऑफ अफेक्शन, और कुछ फिर आदत बन जाती है लोगों
1: आदत
0: की,
1: बन जाती है, एक अपनापन भी होता
0: एक
1: होगा।
0: अपनापन तो है, काफ़ी अपनापन है।
1: तो ये जो फिल्म्स में हम देखते हैं, जैसे टाइगर कॉलिंग बारह सिंगा, बारह सिंगा टू टाइगर, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं हमारे।
0: हाँ क्योंकि जब आप रेडियो पर खासकर बात करते हैं
1: जी
0: तो कुछ कोड वर्ड्स होते हैं,
1: ओके
0: तो टाइगर लैम्ब लायन इस तरीके के होते हैं जो सेट होते हैं, और इसके बाद कुछ इंडिविजुअल नेम्स होते हैं,
1: ओके
0: सो दीज आर कॉल साइंस बेसिकली।
1: कॉल साइंस, यस,
0: तो यस दिस इज़ ट्रू, बट फिल्मों में थोड़ा ज़्यादा ग्लैमरस कर देते हैं उसको।
1: ग्लैमरस कर देते हैं। जी हाँ, मुझे याद है कि यहाँ पे हमने ग्रुप कैप्टन मुनीश यादव को आमंत्रित किया था संदेश टू सोल्जर्स में। द पायलट हु फायर्ड एट द टाइगर हिल फ्लाइंग द मिराज 2000 अलोंग विद ग्रुप कैप्टन रघुनाथ नाम्बियर, तो वो आए थे। तो हम बताया, वो जो 25 या 26 सेकंड की जो क्लिप है यूट्यूब में, जहाँ एयरफोर्स ने टाइगर हिल पे अटैक किया था लेजर गाइडेड बॉम्ब, तो मैंने उनसे पूछा था आपका कॉल साइन क्या है, तो हंसने लगे, बोले इट वॉज टॉम कैट।
0: हाँ एयरफोर्स में बड़े स्टाइलिश नेम्स होते हैं,
1: जी।
0: उनके कॉल साइंस आर क्वाइट स्टाइलिश, दैट वे वी आर ए लिटिल ग्राउंडेड।
1: तो कमिंग बैक टू गुलाम अहमद,
0: हाँ गुलाम हसन,
1: गुलाम हसन,
0: गुलाम
1: ओके
0: हसन, तो ये गुलाम हसन की कहानी है
1: जी
0: जो कि वहाँ पर एक मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम के साथ काम करता है
1: जी
0: और किस तरीके से वो अपने आप को साबित करता है, ये वो कहानी है। उस इलाके में एक टेररिस्ट ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करके आ जाता है
1: ओके
0: और वहाँ पर जो टीम कमांडर है वो उसको टास्क देता है
1: ओके
0: कैप्टन अभिमन्यु कि आप पता करें, और वो पूरी जी जान लगा देता है, और देयर इज अ स्लाइट ट्विस्ट इन द एंड अबाउट व्हाट हैपेंस टू गुलाम हसन। तो ये कहानी है, एक कहानी है मुजाहिद जो एक बहुत यंग लड़के इम्तियाज़ की कहानी है, ये सूरनकोट की कहानी है, और इसमें जो मेन किरदार है वो इम्तियाज़ है और दूसरा कैप्टन समर है। कैप्टन समर इम्तियाज़ को ट्रेन करता है, उसको पाकिस्तान भेजता है लश्कर तौयबा के साथ काम करने के लिए, और फिर कैसे कहानी आगे बढ़ती है वो आप किताब पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा, बट इट इज़ ऑल्सो ए वेरी वेरी टेंडर एंड येट ए वेरी करेजियस स्टोरी। फिर एक
1: यस,
0: कहानी है लव जिहाद,
1: लव
0: उसमें
1: जिहाद, ओके
0: लव जिहाद एक कहानी है पाकिस्तानी टेररिस्ट की जो हिंदुस्तान आता है घुसपैठ करके जिहाद के लिए, लेकिन यहाँ पर उसको हंडवारा में एक लड़की के साथ इश्क हो जाता है, और उसी वक्त वहाँ पर एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर होते हैं कर्नल ऋषभ, उनको ये सब बात पता लगती है, तो वो किस तरीके से इन दोनों के रिश्ते को यूज़ करते हैं और किस तरीके से तीनों मिलकर फिर भारतीय सेना के लिए काम करते हैं, ये उस कहानी का मेन प्लॉट है। तो आप पढ़ें कहानियाँ, आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस।
1: लेडीज के हाथ में वो पावर होती है, दे कैन चेंज एनी बडी, है
0: या आई आई दैट्स व्हाट
1: ना?
0: एवरीबॉडी
1: कुछ
0: सेज,
1: होता है सर,
0: दैट्स व्हाट एवरीबॉडी
1: कुछ ना
0: सेज।
1: कुछ तो होता है सर। मेरे पास बहुत सारे ना एसएमएसेस आ रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी वो भी लेता हूँ। जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमें मैसेज कर रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। तेलंगाना से एम आर मधुसूदन आपको 80th इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं भारत माता की जय, और हमारी कंट्री जो 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रही है एडवांस में ही, वो आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं।
0: मेरी तरफ से भी सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं
1: जी। विजय कुमार विश्वनाथन जी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से हमें एक मैसेज भेज रहे हैं। संदेश टू सोल्जर्स दोस्तों आप सुन रहे हैं, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ इस समय ब्रिगेडियर सुशील तंवर मौजूद हैं।

0: विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसके माध्यम से हमें जुड़ सकते हैं, केवल एसएमएसएस, केवल व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए। नंबर है 9868107070, 9868107070। और एक और मैसेज हमारे पास आया है, एंड दिस इज शमीम रजा। लोकेशन कहाँ से वो उन्होंने नहीं बताई, सो वील नॉट आज दैट। मिस्टर पाटिल ने हमें एक मैसेज भेजा है और उन्होंने आपके बचपन और शिक्षा के ऊपर जो बात पूछी है उसके बारे में आप बता ही चुके हैं। जय हिंद सर। सर मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ, मैं नियमित रूप से पढ़ नहीं पाता, और एनडीए के लिए अगर कोई किताब आप मेंशन कुछ सजेस्ट करना चाहें तो प्लीज़ बताएं। सूर्य कुमार हैं ये, कुछ आप कहना चाहेंगे?
1: हाँ, जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आजकल जो ट्वेल्थ का सिलेबस होता है, रिटन एग्ज़ाम जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, उसके लिए काफ़ी गाइड्स एंड काफ़ी गेस्ट पेपर्स आते हैं, तो मुझे तभी अंदाज़ा नहीं है। एक्चुअली मैंने तो एनडीए 25-30 साल पहले किया था, लेकिन आई विल चेक कि अभी आजकल लोग किस किताब को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा सफलता किसमें मिल रही है। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अगर आप 11वीं और 12वीं का जो CBSE का सिलेबस है उसको अच्छी तरीके से करें तो शायद आपको एनडीए का रिटन एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। और एनडीए में रिटन एग्ज़ाम सिर्फ पहला पड़ाव है, क्योंकि मेन उसमें एसएस भी होता है। तो अगर एक बार आप रिटन की तैयारी कर लेते हैं और उसमें क्लियर कर जाते हैं, तो देन SSB इज़ एक्चुअली ए टफर नट टू क्रैक।
0: राइट। देन यहाँ पे यश सिंधे मुंबई से हमें को हमारे को मैसेज भेज रहे हैं, ब्रिगेडियर सुशील जी के जज्बे को सलाम, ऐसे वीरों को हर हिंदुस्तानी सलाम करता है, आपकी वजह से हम चैन से सो पाते हैं, भारत माँ के सच्चे और वीर संतान हैं आप। सुशील जी आपकी सेवा और त्याग को नमन है, इस मुल्क की हिफाजत को मजबूत चट्टान की ज़रूरत है, वो आप हैं। ही इज़ ऑलरेडी बिकम अ फैन ऑफ यू सर।
1: और मैं ये सुनता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे क्या, पूरे हमारे जितने भी साथी हैं, हम सिर्फ इस भरोसे से, इस उम्मीद के साथ अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं ताकि ये देश महफूज रहे, ताकि ये देशवासी खुश रहें। और जब हमारे देश के लोग इस तरीके का जज्बात जाहिर करते हैं तो फिर और भी अच्छा लगता है,
0: बहुत सारे
1: और हमारा जो निश्चय है, वो दृढ़ संकल्प है, वो और मजबूत होता है।
0: दैट्स वंडरफुल। कुछ और मैसेजेस आ रहे हैं, मैं जल्दी से लेना चाहूँगा। आस्था शर्मा हिमाचल प्रदेश से, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी टू लिसन टू यू। और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि उन्होंने भी एनडीए के एग्ज़ाम दिए हैं और अभी भी तैयारी कर रहे हैं। फायरमैन भरत कुमार चमोली गढ़वाल से लिख रहे हैं कि हमारा सलूट जो है वो स्वीकार करें, एंड ऑफकोर्स हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स हैं उनके खुद के दादा पापा और तीन भाई आर्मी में सर्व कर चुके हैं, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। तंवर जी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गंगानगर ज़िला से डॉक्टर गणेश अरोड़ा हमारे को ये मैसेज भेज रहे हैं। हितेंद्र दास ने असम से हमें मैसेज भेजा है। सूरत से उल्हास पाटिल हमें मैसेज भेज रहे हैं, यू आर द रियल हीरो। वृंदावन से भी मैसेज आ गया रोहित रे का, एंड ऑफकोर्स इंडियन आर्मी के बारे में बहुत सारी बातें, ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं एक जनाब जिनका नाम है शशि सिंह यादव। एंड ऑफ कोर्स एक और मैसेज हम लेना चाहेंगे यहाँ पे कि दिल से सलाम कर रहे हैं मोनीश इद्रिसी उत्तर प्रदेश से, बिलासपुर से आपको। सो यंगस्टर्स हैं बहुत सारे जो मैसेज भेज रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि लिसनिंग बहुत ज़्यादा है संदेश टू सोल्जर्स की। इससे पहले कि हम अगला म्यूजिकल ब्रेक लें, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारी जो प्रेमे इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ के इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं, कुछ आप बताइए कि जब आप नई जनरेशन के युवाओं को देखते हैं, what changes do you see compared to the youngsters in your time?
1: हाँ, मैं भारतीय सैन्य अकेडमी जो देहरादून में है वहाँ पर इंस्ट्रक्टर रहा था जी। और बहुत गर्व महसूस होता है जब हम नई पीढ़ी को देखते हैं। उनकी उनकी काबिलियत, उनका जुनून और हाउ वेल इन्फॉर्म्ड दे आर। बहुत ये बातें होती हैं कि नई पीढ़ी में कमज़ोरी है, वो स्ट्रेस नहीं ले सकते, उनके पास इतना तजुर्बा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि व्हेन यू आर विद यंग पीपल, यू योरसेल्फ फील यंगर। आपको लगता है कि इनकी एनर्जी जो है वो कमाल की है। और जब आप एकेडमी में होते हैं तो आपको मौका होता है एज ए इंस्ट्रक्टर टू शेप देयर पर्सनैलिटी, एंड आई थिंक दैट्स ए प्रिविलेज। और अभी भी जब हमारे जो कैडेट्स हैं, अब अफसर बन गए हैं सारे, जब मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है देख के कि हमने उनको, वी हैव सीन देयर एंटायर जर्नी, दे केम एज नोविसेज एंड नाउ दे आर कमांडिंग बटालियंस एंड डूइंग सो वेल। सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू इंटर।

0: with
1: तो
0: young.
1: आपका जो द प्रोसेस ऑफ डीलिंग और टीचिंग देम और ट्रेनिंग देम इज एज टफ एज योर गुरुज वर और इट्स गॉन टफर और यू अंडरस्टैंड नहीं यार इसको?
0: देखिए ये जो है डिबेट हमेशा रहती है. हमें लगता है कि हमने ज़्यादा मुश्किल वक्त झेला है और हमारे बाद वाली मैं पीढ़ी तो नहीं बोलूँगा ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ लेकिन लेकिन वी आर फ्रॉम द सेम जनरेशन बट आई थिंक दिस इज Everyone says कि we have seen tougher times, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात सही है, शायद हमने ज़्यादा मुश्किलें झेली
1: हैं. ओके, आपने एक सॉन्ग सजेस्ट किया था कुछ आपकी ट्रेनिंग टाइम्स और कुछ आपके ग्रुप से रिलेटेड जो मैं चला चुका हूँ.
0: हाँ, ये कजरारे गाना है. जब हम IMA में पोस्टेड थे तो हम यंग ऑफिसर्स वी वर इंस्ट्रक्टर्स, तो हम ये गाना इतना चलाते थे दिन रात. तब ये नया नया गाना आया था और ये गाना मैं सुनता हूँ तो मुझे वो दिन याद आ जाते हैं, मेरे दोस्त याद आ जाते हैं. एंड आई जस्ट लव दिस सॉन्ग.
1: थोड़ी और याद ताज़ा करते हैं आपकी, ये गाना हम भी चलाते हैं और कुछ ताज़ी उस समय की ताज़ी बात कुछ याद आ जाए तो आप शेयर करिएगा हमारे साथ. संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं, मेरा नाम है मनीष जौली और मेरे साथ खास मेहमान बैठे हैं ब्रिगेडियर सुशील तंगड़ा.

संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है मुनीश जौली और मेरे साथ यहाँ ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी बैठे हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ और ढेर सारे श्रोता जो हैं जो हमें मैसेज भेज रहे हैं।

0: उनके नाम मैं बहुत जल्दी लेना चाहूंगा। देहरादून की डिफेंस कॉलोनी से कैप्टन वी के एस कार्की आईपीएस हैं, रिटायर्ड हैं, उन्होंने हमें मैसेज भेजा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इस मैसेज के लिए। कोटा राजस्थान से राम गोपाल शर्मा जी हमें यहाँ मैसेज भेज रहे हैं। एंड ऑफकोर्स मीरा तिवारी नोएडा से कह रही हैं कि आपके बारे में, ब्रिगेडियर सुशील नंवर जी के बारे में सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद कोर ऑफ सिग्नल में थी जब कारगिल युद्ध चल रहा था। दैट्स वंडरफुल टू नो मैम। आशा है कि आज की जनरेशन इनकी कहानी सुन के इंस्पायर हो और देश की इज्जत रखें और नेशनल डेवलपमेंट में योगदान दें। हम भी यही आशा करते हैं, लेकिन इसके बारे में हम सुशील जी से पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। वीर सैनिकों को नमन कर रहे हैं शंभवी पांडे। एंड ऑफ कोर्स वी आर मूविंग अहेड विद लॉट ऑफ अदर मैसेजेस, जहां पर हमारे को सूर्य कुमार एक मैसेज भेज रहे हैं, वो भी एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं। मोहम्मद अली ने विशाखापट्टनम से 80वें इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं लिखी हैं और उन्होंने कहा कि मैं आपकी लिखी हुई किताब जरूर पढ़ूंगा और उन्होंने कहा है इंशाल्लाह मैं भी अपने देश भारत के लिए सर्व करूंगा एक दिन। आगे बढ़ते बढ़ते कुछ मैसेजेस हमारे पास जो आ रहे हैं। ग्राम ढाणी कुतुबपुर तहसील जिला हासी हरियाणा से रामधारी अवाना ने हमको मैसेज भेजा और बहुत प्यारा सा मैसेज बनाकर आपके लिए भेजा है। एंड ऑफ कोर्स बाकी जो नाम मैं लेता रहूंगा धीरे धीरे बहुत जल्दी से, जैसे भवानी उन्नाव से सुनील कुशवाहा ने हमें मैसेज भेजा है, भुवन जोशी हल्द्वानी से हमें मैसेज भेज रहे हैं और तिरंगा भी उन्होंने भेजा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके साथ जब हमने ये गाना सुना, खैर मैं फोकस कर रहा था मैसेजेस पे, वील गेट बैक टू इट लेटर, आप हमने बात की कजरारे की, तो वर यू आल्सो वेरी नॉटी जब आप एकेडमी में थे, कुछ आपने मिस्चिफ विस्चिफ नहीं की तब?
1: हाँ, मिस्चिफ तो हर इंसान करता है मेरे ख्याल से।
0: ओके,
1: हमने भी किए, सब ने किए।
0: ओके,
1: शायद लेकिन उतने नहीं किए जितने अब मैं सोचता हूँ, तो सोचता हूँ कि थोड़ा और करना चाहिए था।
0: ओके,
1: लेकिन आज आप लगता है सारे राज खुलवाने की ठान कर आए हैं।
0: अच्छा लगेगा ना, सिविलियन, देखिए सिविलियन को लगता है कि आर्मी के जवान हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो अफसर हैं, कभी मुस्कुराते नहीं हैं। आप मुस्कुरा भी रहे हैं, वो कभी मीठा नहीं बोलते, आप तो मिश्री हैं। अनुराग पांडे एक रेडियो जॉकी हैं AIR मथुरा में, वो एक मैसेज भेज रहे हैं और ही इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग यू, तो हमारे सिविलियंस की थोड़ी सी वो बदल जाएगा ना, कि आपकी उस यू नो सॉलिड बॉडी के अंदर भी एक विनम्र सा दिल है।
1: हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि फौजी जो होते हैं वो बहुत नरम दिल होते हैं।
0: ओके,
1: इनसाइड द सॉफ्ट एक्सटीरियर, हार्ड एक्सटीरियर इज अ वेरी सॉफ्ट इंटीरियर, और जब आप लोगों से मिलते हैं तब उनको अंदाजा होता है, तो शरारतें तो लाजमी हैं।
0: पर आप लगते नहीं सर कि आपने शरारती की होगी।
1: नहीं, जैसे आप वाकई की पूछ रहे थे
0: जी,
1: तो मुझे याद है हम यंग ऑफिसर थे।
0: okay.
1: तो वेरी ब्रीफली माऊ में हम यंग ऑफिसर्स कोर्स कर रहे थे। okay. उस टाइम टाइटैनिक मूवी आई थी।
0: okay.
1: ओपन एयर थिएटर है, बहुत मज़ेदार, वहाँ पर बहुत मस्ती होती है ओपन एयर थिएटर में माऊ के इन्फेंट्री स्कूल में। तो जब टाइटैनिक में वो शिप डूबने लगा, तो किसी ने बोला यार कुछ ये शिप डूब रहा है तो हम भी कुछ करते हैं, तो मैं चुपके से हम लेके गए थे एक पटाखों की लड़ी।
0: ओके,
1: तो बाकी तो कोई गया नहीं, मैं गया और जैसे ही मैंने लड़ी जलाई, उजाला हुआ, उधर शिप डूब रहा था और उधर सबको पता लग गया कि ये भाई साहब जो हैं, और उसमें से एक पटाखा हमारे एक DS थे जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, वो उनकी मैडम भी आई हुई थी देखने के लिए, और वो पटाखा सीधा उनकी झोली में जाके गिरा, शायद बड़ी कीमती साड़ी में छेद हो गया, तो पीछे से मुझे आए कि आप जरा बाहर आइए।
0: बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, सर के ऊपर गिरता तब तक ठीक था,
1: लेकिन उस टाइम लोग थोड़े ज्यादा जिंदा दिल थे ऐसा मुझे लगता
0: पर
1: है।
0: हुआ क्या उसके बाद?
1: कुछ नहीं, मुझे बताया गया कि ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा एक इमेज अच्छी थी, पर यह हुआ कि उसके बाद वो जो हमारे सर थे उन्होंने और बाकी सब इंस्ट्रक्टर्स ने मुझे क्रैकर बॉय कहना शुरू कर दिया।
0: okay.
1: तो क्रैकर बॉय कम एयर, बट अच्छा था, देयर वाज नो इल विल। तो ऐसे कई सारे किस्से हैं।
0: टैनी द क्रैकर बॉय,
1: यस,
0: ऐसे बुलाते होंगे आपको?
1: हाँ, मतलब अपने अपने अंदाज से बुलाते थे।
0: राइट, यहाँ पे एक जनाब और हैं दीपू, उन्होंने कहा सर आप अपनी किताब के नाम दोबारा ले लेंगे, बहुत सारे लोग परचेज करना चाह रहे हैं, दे वांट टू रीड द इंसिडेंट्स एंड द एक्सपीरियंसेस।
1: हाँ, तो पहली किताब है मुखबिर जो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, और दूसरी किताब है अमन के फरिश्ते, ये दोनों किताबें हिंदी में हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में हैं और राजपाल एंड सन्स ने प्रकाशित की हैं।
0: राइट, देन राजकुमार पाल UP जौनपुर से लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आप

0: बातें सुन के मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। हरियाणा पुलिस के एक कांस्टेबल हैं, वो आपको सलाम भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपकी बहादुरी और राष्ट्र सेवा को सलाम। मैं हरियाणा पुलिस में एक सिपाही हूँ, लेकिन हमारी सीमाएं आप जैसे वीरों की वजह से सुरक्षित हैं। ईश्वर आपको सदैव स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रखें, रामधारी अवाना। और ये किस जगह पे हैं वो सिक्योरिटी कारण से हम लोग नहीं बता सकते, बट साथ ही साथ कश्मीर से एक मैसेज आया है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट से, एंड केश राजपूत है, वो एक मैसेज भेज रहे हैं। मेरे पास लगभग 12 मिनट बचे हैं सर, कैन वी डू सम टफ टॉकिंग?
1: या श्योर
0: ओके, नाउ दिस इज द रियल टॉक सर, इसमें कोई भी स्क्रीनिंग नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत सारी बातें हुई, अवेयरनेस हुई, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि ऑफ कोर्स वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ मॉडर्न एरा कॉम्बैट, लेकिन हमारी आर्मी में, हमारी आर्म्ड फोर्सेस में दिन पर दिन कोई ना कोई इनोवेशंस, कोई क्रिएशन अलग सी तो हो ही रही होगी।
1: हाँ, आप अखबार में
0: अरे
1: पढ़ते
0: अरे
1: हैं
0: जी,
1: और पब्लिसाइज भी होती है कई
0: ओके,
1: चीज़ें, और लड़ाई के मायने बदल रहे हैं, किस तरीके से जंग लड़ी जाती है वो मायने बदल रहे हैं।

0: मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि ऑफ कोर्स वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ मॉडर्न एरा कॉम्बैट, लेकिन हमारी आर्मी में, हमारी आर्म्ड फोर्सेस में दिन पर दिन कोई ना कोई इनोवेशंस, कोई क्रिएशन अलग सी तो हो ही रही होगी.
1: हाँ, आप अखबार में पढ़ते हैं
0: जी.
1: और पब्लिसाइज भी होती है कई चीज़ें,
0: ओके.
1: और लड़ाई के मायने बदल रहे हैं, किस तरीके से जंग लड़ी जाती है वो मायने बदल रहे हैं,
0: ओके.
1: नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं, ड्रोन, सैटेलाइट्स और बाकी प्रिसीजन वेपन्स आ रहे हैं. इसके अलावा जो हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उनका आउटलुक भी चेंज हो रहा है.
0: ओके.
1: इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, द वैल्यू ऑफ नैरेटिव. तो काफ़ी सारी चीज़ें जो चेंज हो रही हैं और होनी भी चाहिए.
0: मुझे ये बताइए, अभी जैसे ईरान, अमेरिका, इसराइल को लेके जो भी वहाँ पे कॉम्बैट हो रहा है, या कहीं पर भी विश्व भर में यूक्रेन, रशिया को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो वहाँ पर भी हमारे कोई ना कोई इंटेलिजेंस, यू नो, कोई कोई टैप तो रखते होंगे ना कि क्या क्या वेपन यूज़ हो रहा है, कौन सा वेपन कहाँ काम आ रहा है, कितना यूजफुल है, नहीं है. Am I right to mention like that?
1: Yes, because
0: okay.
1: armies all over the world, ये नहीं
0: yes.
1: कि सिर्फ हमारी सेना, but wars कैसे लड़ी जा रही हैं उसकी study करना बहुत ज़रूरी है, so that we can refine our tactics, we can refine the way we use our weapons. तो this is an ongoing process. और सेना में लोगों को लगता है कि जब लड़ाई नहीं हो रही तो क्या कर रहे होंगे, जब हम लड़ाई नहीं हो रही थी तो हम लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं, और उस तैयारी में ये सब study करना भी शामिल है.
0: ओके सर, मैंने आपसे बोला था मैं सीधे सवाल से विलन के पूछूंगा आपसे. 24 घंटे हम लोग चौकन्ने हैं बॉर्डर पे, अपनी स्काईज को देख रहे हैं कि कोई वहाँ से कोई वर्सेटाइल ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा.
1: हाँ, ऑब्वियसली, आई मीन ना सिर्फ स्काई, टुडे थ्रेट इज फ्रॉम एवरीवेयर.
0: ओके.
1: एंड जहाँ तक आपने जंग की बात की, मैं ये भी बोलूँगा कि इट्स नॉट आर्मीज विच फाइट ए वॉर, इट इज द नेशंस विच फाइट ए वॉर.
0: जी.
1: तो हम सब चौकन्ने हैं, हम सबको चौकन्ना रहना भी चाहिए.
0: तो आपकी इंटेलिजेंस 24 घंटे काम करती है. कुछ देर पहले आपने कहा कि हम, हमारे भी कुछ लोग जो हैं सरहद पार जाते हैं, ऐसा नहीं कि उनके आते हैं, हमारे भी जाते हैं. बट लेट मी टेल यू दैट वी आर नॉट बॉर्डरिंग द वेस्ट, वी आर बॉर्डरिंग 360 डिग्री. हमें अपनी रखवाली करनी पड़ती है. ऐसा नहीं है कि थ्रेट हमें एक ही कंट्री से, या हमें चौकन्ना नहीं होना बाकी जगह. तो हर जगह का पैटर्न अलग है इंटेलिजेंस का, क्योंकि भाषाएँ अलग हैं, टेक्नोलॉजी किसी के पास सुपीरियर है, किसी के पास नहीं है.
1: देखिए, एडवर्सरीज डिफरेंट हैं, हालात डिफरेंट हैं, ज्योग्राफी डिफरेंट है, पॉपुलेशन डिफरेंट है, सो थ्रेट्स भी डिफरेंट हैं. कहीं ना कहीं वो कन्वर्ज भी होती हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से, इंटेलिजेंस के लिहाज से, ये ज़रूरी है कि हम उन डिफरेंट पैटर्न्स को समझें. तो इसीलिए हर तरफ देखना पड़ता है.
0: इज इट ईजी टू प्रिपेयर द स्पाइज और यू नो पीपल इन द इंटेलिजेंस, हाउ डिफिकल्ट अ जॉब इट इज किसी भी कंट्री के लिए?
1: इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, ऑफ कोर्स इट इज़ चैलेंजिंग, इट इज़ डेंजरस, बट इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. और मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस.
0: एक टफ सवाल पूछ लूँ सर?
1: पूछिए, आप टफ ही सवाल पूछ रहे हैं.
0: आपका मन करे तो जवाब दीजिएगा. जब हम कहते हैं हमें इंटेलिजेंस चाहिए, तो इट्स नॉट लिमिटेड टू आर ओन कंट्रीमैन, इट कैन एक्सपैंड टू वेरियस अदर नेशनैलिटीज आल्सो, इज दैट ट्रू सर?
1: हाँ, अगर आप देख ही रहे हैं रोज दुनिया में क्या हो रहा है
0: जी,
1: हर जगह कोई ना कोई एजेंट पकड़ा जा रहा है. सो यू यूज ऑल मींस एट योर डिस्पोजल.
0: राइट. एक रसगुल्ला खिलाने का मन कर रहा है. आपको कोई भी प्यार व्यार नहीं हुआ सर? यू वर नेवर रोमांटिक इन योर लाइफ?
1: देखिए, हर इंसान रोमांटिक होता है.
0: आप भी थे?
1: थे नहीं है लेकिन लेकिन किस मद्देनजर, किस मायने में है वो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट.
0: देश से बहुत प्यार है, माय फर्स्ट लव. ठीक है सर, आपने गाना अपनी प्लेलिस्ट में हमें दिया है, बाहों में चले आ, इसका क्या रीजन है?
1: हाँ, ये पुराना गाना है, अनामिका पिक्चर का, मूवी का,
0: कोई ना कोई तो रीजन होगा सर.
1: हाँ, एक मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी, उनको बहुत अच्छा लगता था ये गाना.
0: थी सर?
1: हाँ थी, और वो गाती भी थी ये गाना. और मैंने आपको बाकी गाने भी दिए हैं जो बाकी दोस्तों के हैं, लेकिन आप इसी गाने को पकड़ के बैठ गए हैं. लेकिन ये गाना बहुत अच्छा है, तो इसको प्लीज सुनवाइए
0: सर. वो जो लव स्टोरी थी वो आप

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं, मेरा नाम है मनीष जॉली और एक और गाना है जिसकी ख्वाहिश यहाँ पे हमारे ब्रिगेडियर साहब ने रखी है और वो गाना बड़ा सॉलिड है, मिक्का सिंह का. व्हाट अबाउट दिस? आई मीन वी आर जस्ट गेटिंग क्लोज, यू नो, एट द ब्रिंक ऑफ द आर टू क्लोज दिस शो, बट व्हाट इज द सीक्रेट अबाउट दिस सॉन्ग सर? एकदम से मतलब पुरानी और फिर नया दिल में बजी गिटार.
1: नहीं, जब आपने मुझे बताया कि आप पसंदीदा गाने बनाएं बताएं, तो फिर एक मेरे अच्छे दोस्त हैं
0: जी,
1: और हम दोनों मिलके गाना बहुत एंजॉय करते थे.
0: ओके.
1: तो बस सुनी की याद आ गई और उन्होंने बोला ये गाना अगर नहीं बजेगा तो फिर देख लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा.
0: सर आप परफेक्ट बंदे हो इंटेलिजेंस के लिए, सारी बातें बोल देते हो पर कुछ भी नहीं बोलते. मेरे एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त हैं, उन्होंने कहा था अगर नहीं बजेगा तो बाहों में चले आओ, चलाया था कि बहुत अच्छा लगता था. पहला नशा चलाया क्योंकि वो अच्छा था, कजरा रहे डांस करते थे बस. वो बताया आपने कुछ भी नहीं, यू नेवर रिवील्ड, बट आई थिंक इंडियन आर्मी ने सही बंदे को चूज किया सर इंटेलिजेंस के लिए.

0: समय ना हमारे पास बहुत कम है। क्या होता है ना, जब हम अपने फौजी भाइयों के साथ, फौजी अफसरों के साथ जो प्रोग्राम करते हैं ना, हमें लगता है कि एक घंटा बहुत कम है, अब बातें और होनी चाहिए। बट यू आर बीइंग हर्ड अक्रॉस द बॉर्डर, यू आर बीइंग हर्ड अक्रॉस द ग्लोब। बहुत सारे SMS, व्हाट्सएप मैसेजेस यहाँ पर हमारे पास आए हैं, सब लोग आपको बधाई दे रहे हैं, दे आर फीलिंग वेरी प्राउड। लेकिन अब यहाँ से आपका सफर कहाँ जाता है, वेयर डू यू टेक योरसेल्फ फ्रॉम हियर?
1: हम तो फौज में कुछ कह नहीं सकते कि अगला मुकाम, अगला पड़ाव क्या होगा। तो जहाँ भारतीय सरकार, भारतीय सेना में भेजेगी, वहाँ जाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि वापस जम्मू एंड कश्मीर की तरफ रुख करेंगे और वही करते रहेंगे जो अब तक करते रहे हैं, उसी शिद्दत, उसी जुनून के साथ।
0: तो वो एक कहावत थी ना, इफ देयर इज हेवन ऑन अर्थ इज देयर इन कश्मीर, कुछ अलग बनाता है आपको। आपको प्यार हो गया उस जगह से, आप गए थे भारत माँ की रक्षा करने, आप रक्षा भी कराए और वहाँ अपना दिल भी दिया है कश्मीर को।
1: नहीं, दिल, हाँ दिल की तो बात है, जम्मू एंड कश्मीर मुझे पसंद है, लेकिन जहाँ पर भी मैंने राजस्थान में नौकरी की है, मैंने एब्रॉड नौकरी की है, UN के साथ नौकरी की है, वहाँ भी अच्छा लगा। तो इट इज़ नॉट द प्लेस एक्चुअली, इट इज़ द पीपल अराउंड यू एंड हमारा जो एक इकोसिस्टम है भारतीय सेना का, वो बहुत मज़ेदार है, आपको हमेशा मोटिवेटेड रखता है।
0: आपने बहुत सारे जॉइंट एक्सरसाइजेस भी किए हैं अलग अलग नेशंस के, डिड विद द US?
1: हाँ, हमारे साथ जापान में मैंने गया हूँ, मैं UK गया हूँ, मैंने सूडान में नौकरी की है यूनाइटेड नेशंस के साथ, और जहाँ पर भी हम गए वहाँ पर भारतीय सेना को एक अलग

0: तरीके से देखा जाता था, बड़े अच्छे तरीके से देखा जाता था, बहुत प्राउड फील होता था, बहुत गर्व महसूस होता था हमारे को दूसरे देश में जाके हिंदुस्तानी सेना का नाम रोशन करने में। इट वॉज एक्चुअली ए ब्लेसिंग।
1: तो अभी चलते चलते, क्योंकि अब समय की पाबंदी है, प्रोड्यूसर साहब ने इशारा कर दिया बहुत जल्दी हमें ये प्रोग्राम क्लोज करना है, आपके फाइनल वर्ड्स, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है।
0: ये जो भारतीय सेना एक पेशा नहीं है, इट्स ए वे ऑफ लाइफ, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि इस देश की सेवा करें। एंड हमारे सैनिक, वी आर ब्लेस्ड टू हैव वेरी ब्रेव वेरी करेजियस सोल्जर्स, और जो हिंदुस्तानी सेना और तीनों सेनाओं का मैं बात करूंगा, आर्मी नेवी एयरफोर्स की एंड ऑल यूनिफॉर्म फोर्सेस, आई थिंक वी जस्ट सर्व सेल्फलेसली, और हमें उम्मीद है कि इस देश और इस देश के नागरिक भी उसी शिद्दत के साथ देश की सेवा करेंगे जैसे हम करते हैं।
1: इट्स अ शेयर प्रिविलेज टू होस्ट यू सर।
0: इट वाज एक्सट्रीमली गुड, एंड द वे पीपल वर रिएक्टिंग, आई थिंक इट जस्ट मोटिवेट्स अस इवन मोर। बहुत मजा आया।
1: देयर आर सो मेनी जिनके मैं मैसेजेस नहीं ले पाया, बट ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी, आई थिंक जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं और देश की तरफ से, ये मेरा सैल्यूट कबूल कीजिए सर।
0: थैंक यू सो मच। जय हिंद।
1: और इसी तरह हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे संदेश टू सोल्जर्स में।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, एफएम 100.1 मेगा हर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का एक कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 5 बज चुके हैं। अब युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम सुने, युववाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों की सेवा में आज नमस्कार जसवीर सिंह की तरफ से युवा साथियों कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित हैं। और आज का ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं और कुछ आज की बात विषयों पर बातचीत के साथ कुछ फिल्मी संगीत आपको सुनवाएंगे। और दोस्तों हम बात करें तो आज 6 अगस्त और आज का दिन हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। युवा साथी, हिरोशिमा दिवस ये एक ऐसा दिन जहां ऐसी दुखदायी घटनाक्रम हुआ जिसे सारा विश्व जानता है। हिरोशिमा दिवस युवा साथियों हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है। यह 1945 में हिरोशिमा पर हुए परमाणु बम हमले की वर्षगांठ का प्रतीक है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक अत्यंत भयावह और विनाशकारी घटना थी। श्रोता, बताया जाता है कि 6 अगस्त की सुबह 8:15 पर अमेरिकी B-29 बम वर्षक एनालोगी ने हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराए थे, जिसमें लगभग 101,30,000 लोग तुरंत मारे गए और वर्ष के अंत तक चोटों और विकरण बीमारी से धीरे धीरे मरने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। और दोस्तों पूरा शहर लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया था और बचे हुए लोग जिन्हें हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है को दीर्घकालिक स्वास्थ्य

से प्रभाव सामाजिक कलंक और मनोवैज्ञानिक आघात सहना पड़ा। हिरोशिमा दिवस को विश्व भर में सभी पीड़ितों की स्मृति और परमाणु युद्ध की विनाशकारी परिणामों पर चिंतन के दिन पर उसकी मान्यता प्राप्त है। स्मारक समारोह, मौन प्रार्थनाएं और लालटेन प्रभा समारोह विश्व भर में आयोजित किए जाते हैं, जो हमेशा परमाणु निरस्त्रीकरण और विश्व शांति का आह्वान के साथ मनाए जाते हैं। युवा साथियों, मानवता के उस संकल्प का प्रतीक है कि ऐसे दुखदायी घटनाक्रम फिर कभी ना हो। और दोस्तों, हिरोशिमा की त्रासदी आज भी शांति और निशस्त्रीकरण पर वैश्विक बहस को परमाणु हथियार का भव्य शक्ति का एक अशुभ याद दिलाती है। इसलिए जैसा कि परमाणु वैज्ञानिक इसे कहते हैं कि युद्ध अध्ययन और इतिहास का एक ऐसा प्रसंग है जहां दोनों पक्ष हिरोशिमा की मानवीय कीमत पर तर्क प्रस्तुत करते हैं और विश्व भर में परमाणु निशस्त्रीकरण की अपीलें की जाती हैं ताकि दोबारा कोई भी मनुष्य हिरोशिमा जैसी भयावह त्रासदी न सह सके। और दोस्तों, इन सभी को हमारी श्रद्धांजलि। और हर वर्ष ये याद रहता है कि हम ऐसी विनाशकारी घटनाओं को दूर रहें ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी को जी सके। और दोस्तों, बातचीत हम और भी करेंगे। हम आपको पहले ये गीत सुनवा दें। फिल्म का नाम है हाँ मैंने भी प्यार किया, आवाज़ें उदित नारायण, अलका याग्निक की, गीत समीर का, संगीत नदीम शर्वन का। तो लीजिए सुनिए ये गीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम,
1: जी
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: युवा साथियों, गीत से पहले हम बात कर रहे थे हिरोशिमा दिवस की, और दोस्तों इस दिवस पे हम सभी के द्वारा उन मरने वालों को श्रद्धांजलि हमने दी। और दोस्तों हम बात करें अब दोस्तों इस बात के लिए भी कि जब हम पर अचानक से हमला हो तो आत्मरक्षा ये एक जरूरी है, चाहे वो युवती हो युवक हो। और इस आत्मरक्षा प्रशिक्षण के द्वारा हम और हमारे बीच हमारे मन में आत्मविश्वास ये बढ़ता है। दोस्तों कई बार युवतियाँ और महिलाओं के कराटे बेसिक सेल्फ डिफेंस तकनीकी आपात स्थिति में बचने के तरीके और मानसिक रूप से मजबूत रहने के उपाय सिखाए जा रहे हैं,

महिला ट्रेनर्स का कहना है कि आत्मरक्षा केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं है बल्कि आत्मविश्वास को बढ़ाने का भी माध्यम है। कि दोस्तों अचानक आपके सामने कुछ लोग आके खड़े हो जाएं, कम से कम एक या दो, तो आपके पास अगर यदि कराटे हैं, सेल्फ डिफेंस की तकनीकें हैं, तो निश्चित रूप से आपके मन में एक बार तो आत्मविश्वास से भरा रहेगा कि ये दो व्यक्ति मेरे लिए कुछ भी कर नहीं पाएंगे, मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, और आप उनके सामने डट कर खड़े हो जाएंगे। और कई ट्रेनर दोस्तों अब स्कूल, कॉलेज और सामाजिक कार्यक्रमों में अन्य महिला और छात्रों को भी आत्मरक्षा के तरीके सिखा रही है। इसमें समाज में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और महिलाएं खुद को पहले से अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज के समय में महिलाओं के लिए आत्मरक्षा का प्रशिक्षण बहुत जरूरी हो गया है। साथियों, युवा साथियों, कठिन परिश्रम के साथ प्रशिक्षण उन्हें कठिन परिस्थितियों में साहस और समझदारी के साथ सामना करने की ताकत देता है। आत्मरक्षा का ये अभिनय और ये अभियान ये केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाने का एक बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है। आने वाले समय में यह पहल और अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। और दोस्तों, जब एक महिला अगर अकेली सड़क पर चल रही है और उसके पास अगर सेल्फ डिफेंस की कुछ तकनीकें हैं या कराटे की कुछ तकनीकें हैं, तो उसके जो आत्मविश्वास की जो चरम सीमा काफ़ी बड़ी होगी बनस्पत उस महिला के जिसके पास ये तकनीक नहीं है। और अब दोस्तों, वो जो महिला उसके पास ये तकनीक होगी, निश्चित रूप से वो अपने आत्मविश्वास के साथ कहीं भी आना जाना कर सकती है। खैर दोस्तों, बात अगले गीत की है, अंदाज फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में, और गीत समीर का, संगीत नदीम शर्मन का। सुनिए ये गीत।

युवा साथियों, बातचीत आपसे आपके कार्यक्रम में आज की बात विषय पर चल रही है। और दोस्तों, बात अब हम करें, जहां आत्मरक्षा की बात कही, वहीं हम दोस्तों अब एक शब्द आता है, इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर दोस्तों सोशल मीडिया का शब्द एक ऐसा है कि कुछ वक्त में बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। दरअसल इंटरनेट और अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के तेजी से विकास हुआ है। इसी के साथ मार्केटिंग एक्सपर्ट्स ने सोशल मीडिया और इन पर मौजूद पॉपुलर एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर विज्ञापन और प्रमोशन का नया तरीका खोजा है। दोस्तों, आप देखते होंगे कि यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर या किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई ऐसे लोग होते हैं जो अलग-अलग इश्यूज़ पर, सब्जेक्ट्स पर या कंटेंट्स बनाकर अच्छी खासी जानकारी देते हैं। उन्हें प्रेजेंटेशन, ऑडियो तथा वीडियोस द्वारा शानदार होते हैं और इनके साथ ही वे नए नए विषयों पर कंटेंट लाते हैं, इसलिए उनको लोग पसंद करते हैं। इसमें फिल्म, मीडिया, बिजनेस, एजुकेशन, मेडिकल, पॉलिटिकल्स, होटलिंग, ट्रेवल्स या फिर किसी अन्य सेक्टर की मशहूर हस्तियाँ हो सकती हैं, या फिर ऐसी पर्सनैलिटी जो हो सकती है जिसने सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही अपनी पहचान और साख बनाई हो। और इन लोगों को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कहा जाता है। और इनकी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म्स पर इनको देखने सुनने वालों को फॉलोअर्स कहते हैं, और जिसकी बड़ी सेलिब्रिटी के फॉलोअर्स करोड़ों की संख्या में हो सकते हैं। मौजूदा वक्त में इंटरनेट और सोशल मीडिया बन चुके हैं हमारे जीवन का अहम हिस्सा, क्योंकि दोस्तों आप भी देखते होंगे कि जब भी आप मोबाइल फ़ोन को अपने हाथ में लेते हो, निश्चित रूप से आप सोशल मीडिया के जितने भी, चाहे रील्स हैं, चाहे वो दूसरे जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उस पर जाकर आप अपनी उन सभी बातों को, जिज्ञासा को शांत करते हैं जो जिज्ञासा आपके मन में होती है। और दोस्तों, सोशल मीडिया, इंटरनेट की पहुँच बहुत पर्सनल लेवल तक नहीं होती है, क्योंकि लोगों तक ये, जन जन तक ये बातें या कंटेंट, ये जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, इन्फ्लुएंस द्वारा बनाई गई वो वीडियोस, वो सब तक पहुंचती है। एक्सपर्ट्स जानते हैं कि ग्लोबल लेवल पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग मार्केट बहुत बड़ा है। और दोस्तों, अब इन सभी बातों को अगर हम ध्यान दें तो एक इन्फ्लुएंस कार्यक्रम सोशल मीडिया पर बनाना, उसका कंटेंट बनाना, ये एक अपने आप की एक कला है जो हर व्यक्ति के पास हो सकती है। और बस ध्यान इतना देना है कि आपको अपने उस कंटेंट पर ध्यान देना है कि कोई ऐसा कंटेंट न बनाए ताकि जिसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो। खैर दोस्तों।

तो बात अगले कार्यक्रम की गीत की है, तो जुदाई फिल्म का हम गीत आपको सुनवा देते हैं। अलका याग्निक अभिजीत की आवाज़ों में, गीत समीर का, संगीत नदीम श्रवण का।

ये युवा साथियों, अभी आपने गीत जुदाई फिल्म से सुना। आवाज़ें थी अलका याग्निक और अभिजीत की। और दोस्तों, हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस कोई भी बन सकता है, और वो इंसान जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है और अलग अलग इश्यूज़ पर नॉलेज रखता है तथा उन संबंधित ऑडियो और वीडियो कंटेंट बना सकते हैं, क्रिएटिविटी लेख लिख सकते हैं, अच्छा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बन सकते हैं अगर आप स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल

अच्छे से कर लेते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप हटकर कुछ करना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग आपके लिए स्कोप से भरा हुआ सेक्टर है। सक्सेसफुल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के लिए दोस्तों आपको एक रणनीति बनानी होगी। सबसे पहले अपनी इंटरस्टेट नॉलेज या एक्सपर्टीज़ के मुताबिक किसी इशू, टॉपिक, कैटेगरी आदि को चुनना होगा।

युवा साथी, अभी आपने सुना ये गीत। आवाज़ें थी कुमार सानू और अलका याग्निक की। फिल्म का नाम था साजन चले ससुराल। गीत समीर का, संगीत नदीम शरवन का। और दोस्तों, हम अगले आज की बात की विषय की बात करें तो डिजिटल साक्षरता अभियान यानी PMGDISHA, दोस्तों ये कार्यक्रम आज के समय में डिजिटल साक्षरता सिर्फ एक वैकल्पिक नहीं है बल्कि हर नागरिक के लिए जरूरी बन गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान यानी PMGDISHA की शुरुआत की। इस योजना का जो लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्र के 6 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना और लगभग 40% ग्रामीण परिवारों तक इनकी पहुंच सुनिश्चित करना। इसके तहत हर पात्र परिवार से एक सदस्य 14 से 60 वर्ष की आयु को डिजिटल ट्रेनिंग दी जाती है। और दोस्तों, ये उद्देश्य इस कार्यक्रम का या इस जो अभियान का मुख्य उद्देश्य ये था कि ग्रामीण नागरिकों को कंप्यूटर और स्मार्ट फोन का ज्ञान देना और उन्हें सरकारी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच उपलब्ध करवाना ताकि वो जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं ऑनलाइन जाकर अपनी वो पड़ताल कर सके, अपने से संबंधित जो भी उनकी सरकारी सेवाएं हैं उनका लाभ उठा सके, और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, और साथ में महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देकर समावेशी विकास करना। ये दोस्तों इस अभियान का या इस जो हमें ये नीति बनाई गई थी, ये डिजिटल ट्रेनिंग की गई थी और ये क्षेत्र लक्ष्य तय किए गए थे, वो इसलिए तय किए गए थे। और इनमें दोस्तों अधिकतर ग्रामीण परिवेश के लोग ज़्यादातर इसमें उन्होंने अपने डिजिटल प्रोग्राम को आगे पहुंचाया और उन्होंने उनसे ट्रेनिंग भी ली। और जिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने इस बात को ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने स्मार्टफोन को यूज़ करना शुरू किया, उन्होंने कंप्यूटर्स के ऊपर अपनी अपनी जो जानकारी है, जो ऑनलाइन सरकारी सेवाएं हैं उन तक तो पहुंचने की कोशिश भी की, और वो उन कई सेवाओं में कई ऐसी स्कीम्स हैं जिसके ऊपर वो ग्रामीण परिवार

गण के लोग, नागरिक, ये सभी आपस में उन सेवाओं तक पहुँचे हैं और उनका लाभ भी प्राप्त किया है। खैर दोस्तों, प्राप्त अब ये भी है कि हम आपको गीत और सुनवा दें, और वो गीत हमने लिया फिल्म बरसात से, आवाज़ कुमार सानू की, गीत समीर का, संगीत नदीम शरवन का।

यो साथी, अभी आपने बरसात फिल्म से ये गीत सुना, आवाज़ थी कुमार सानू की, गीत समीर का और संगीत नदीम शरफन का। और युवा साथियों, बात अब हम करें तो आज का दिन 6 अगस्त, और आज के दिन दोस्तों सबसे बड़ी त्रासदी कह लीजिए या सबसे बड़ा वो काला दिन कह लीजिए कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम गिराया, जिसका नाम लिटिल बॉय नामक बम से लाखों लोग प्रभावित हुए। और ये घटना मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी और वैज्ञानिक उपलब्धियों में गिनी जाती है। और दोस्तों, ये बात हमारे देश में भी काफ़ी और विश्व में काफ़ी प्रचलित है, और सभी बच्चे इसको जानते भी हैं, सभी बच्चे बच्चों के मुंह पर ये बात है। और 1997 में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन यानी एशियान में लाओस और म्यांमार शामिल हुए थे। और इन सभी बातों की हम बात करें तो आज का ये इतिहास, और अगर हम दोस्तों आज की इस फिल्म संगीत की हम बात करें तो आपने नोट किया होगा दोस्तों, आज अपने जितने भी आपको फिल्मी गीत हमने आपको सुनवाए वो संगीतकार नदीम शरवण के संगीतबद्ध किए गीत हमने फिल्मी गीत आप तक पहुंचाए हैं और पहुंचाएंगे भी। और दोस्तों, क्योंकि आज नदीम शरवण का जयंती है तो हम उन्हें आप सभी सुनने वालों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। अगला गीत हम आपको सुनवा देते हैं, और ये गीत हमने लिया है फिल्म तड़ीपार से, आवाज़ कुमार सानू और अलका याग्निक की, गीत समीर का, संगीत नदीम शरवन का।

जी हाँ युवा साथियों, अभी आपने तड़ी पार फिल्म से ये गीत सुना। आवाज़ें थी कुमार सानू अलका याग्निक की, गीत समीर का था, संगीत नदीम शरवन का। और दोस्तों अब हम बात करें

यहाँ युवा साथियों, गीत आपको सुनवाया कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में, और फिल्म का नाम था बलमा और गीत समीर का, संगीत नदीम शर्वन का। और युवा साथियों, आज के इस युवानी की अंक की हम बात करें तो आज का युवानी अंक बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर, और हम कल के युवानी अंक की हम बात करते हैं तो दोस्तों, कल आप कार्यक्रम में सुनेंगे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आज की बात, और इसके अलावा और भी विषय होंगे, नशा मुक्ति अभियान, ब्रिक्स, युवा मंच, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में युवाओं का सहयोग, पारंपरिक हस्तशिल्प पुनरुद्धार कार्यक्रम, विलुप्त होती कलाओं को सहजते युवा और आज का इतिहास। खैर दोस्तों, ये कल के युवानी कार्यक्रम की बात थी। आज के इस युवानी कार्यक्रम की बात करें तो आज इस कार्यक्रम का अंतिम गीत लेकर हम आपकी सेवा में पहुंच चुके हैं, और गीत है संग्राम फिल्म से और आवाज़ अलका याग्निक की, गीत समीर का, संगीत नदीम शर्वन का। तो युवा साथियों, ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश।

अभी युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 6 बज चुके हैं। आइए अब सुने कार्यक्रम विवरण। पहले सुनिए इस सभा के शेष प्रसारणों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। अब से थोड़ी देर बाद संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे सराइकी की कड़ी संख्या 29। आकाशवाणी जयपुर से संध्या 7 बजे कार्यक्रम अनुप्रसारित होगा किसान वाणी। संध्या 7:30 पर चौपाल कार्यक्रम में आप सुनेंगे बातचीत, बालिका शिक्षा और संस्कार, कीटनाशकों का संतुलित प्रयोग और उपलब्ध रही तो बाजार भाव और मौसम संबंधी जानकारी भी दी जाएगी। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम संसद समीक्षा। इसे हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। एक ही फिल्म से जानकारी और गीत आप सुनेंगे कार्यक्रम रात्रि 8:15 पर, और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम आप सुनेंगे काउंट्री वाइड इनसाइट, और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से ही कार्यक्रम लोक, प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। श्रोताओं, ये तो था आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आप सुने कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी, उनका प्रसारण समय। सवेरे 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। चिंतन का समय सवेरे 6:45 पर, और विषय रहेगा मन की प्रसन्नता, और वाचक स्वर यशपाल सिंह राठौड़ की। कार्यक्रम निर्माण सवेरे 6:50 पर। खेतिया रावस्ते कार्यक्रम में आप सुनेंगे सवेरे 7:10 पर बातचीत, और विषय होगा पशुओं के आहार में नमक का महत्व। मानस गान की कड़ी संख्या 328 सुनवाई जाएगी सवेरे 7:20 पर। सवेरे 7:30 पर सुप्रभात कार्यक्रम में आप जानकारी सुनेंगे प्रकृति और मनुष्य, संसार कर्म प्रधान है, आलस्य त्यागी विषय पर जानकारी। और सुगम संगीत आप सुनेंगे सवेरे 8:45 पर। सवेरे 9:10 पर मरुमंगल में कलाकार होंगे कालूराम प्रजापत। युगल गाना फिल्म संगीत आप सुनेंगे सवेरे 9:30 पर। आज के फनकार कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत पर आधारित सवेरे 10 बजे। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध

गीत आप सुनेंगे सवेरे 11 बजे, कार्यक्रम विवरण दोपहर 12 बजे, दोपहर 12:05 पर फौजी भाइयों का कार्यक्रम होगा सैनिकों के लिए, सुगम संगीत दोपहर 12:30 पर, खेत खलियान कार्यक्रम में दोपहर 12:50 पर जानकारी का विषय होगा मूंगफली की फसल में समसामायिक कार्य, घर आंगन कार्यक्रम होगा दिन में 1:05 पर, इसमें आपसी बातचीत का विषय होगा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, सावन का सांस्कृतिक महत्व, बरसात के मौसम में रसोई की साफ सफाई और खाद्य सुरक्षा, आधुनिक जीवन शैली में पारंपरिक संवाद, और इसके अलावा संध्या 3 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू सर्विस, और दिन में 2:30 पर फिल्म संगीत आप सुनेंगे, युवानी कार्यक्रम संध्या 5 बजे आप सुनेंगे, सराइकी की कड़ी संख्या 30वीं आप सुनेंगे संध्या 6:05 पर, और चौपाल कार्यक्रम होगा संध्या 7 बजे, और इसमें आप सुनेंगे राजस्थान लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीतारो गजरो, और उपलब्ध रही तो बाजार भाव मौसम संबंधी जानकारी भी दी जाएगी। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा, रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे एक ही फिल्म से जानकारी और गीत, और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, रात्रि 9:30 पर पंजाबी साप्ताहिक कार्यक्रम आप सुनेंगे मिट्टी दी खुशबू, फिल्म संगीत रात्रि 10:30 पर। श्रोताओं, हम आपको पुनः याद दिला दें, कल रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी खुशबू, समय एक बार फिर से नोट कीजिए, कल रात्रि 9:30 पर। मीडियम वेव 326.72 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। यह आकाशवाणी का कॉर्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 6:05 होने वाले हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम सराय की, आज आप सुने इस कार्यक्रम की कड़ी संख्या 29वीं।

एक गीत तुसा सुना है, पसंद आया हो सी? भैनो भिरावो, आजकल खाना बेकार केड़ा थींदा है। घरा विच खाना बहु बनवेंदा है ता खावन आले घट ते खाना सुटना पैसी। हुन शादियां विच तुसा डेदे हो, खाना बहु बर्बाद होंदा है। बहु तरह दे खाने होंदे ते लोग हिक शै घिनदे हिन, थोड़ा जिन्ना खांदे ते बाकी सुट देंदे हिन। इस तरह दावता विच 15-20% खावन आली शै बर्बाद थींदियां हिन। दूजे पासे डेदो ता लखां लोगां को दुई वेले दी रोटी नसीब कैनी होंदी। अंकड़े दसेंदे हिन कि दुनिया भर विच हर साल तकरीबन 1.3 बिलियन टन खाना बर्बाद थींदा है। अमरीका विच 30% खाना कूड़ेदान विच सुटेंदे हिन। सोचण दी गल है ते दुए पासे दुनिया दे 7 लोगां विचों हिक नूं भुखे सोवना पौंदा ते 5 साल तों छोटे हजारां बाल भुख कारण मर वेंदे। केड़ी अफसोस दी गल है ना। वड्डे ते अमीर घरां विच, रेस्तरां विच, सुपर बाजारां विच खाना ते खाना बनावण दी शै दी बर्बादी आम थी गई है। इस नाल वातावरण भी खराब थींदा है क्योंकि इकट्ठे होवण वाले कूड़े विचों बो आवदी है। वला किसानां दा पैसा, खाद, कीड़ा मारन वालियां दवाइयां, पानी जिन्हां विच फसलां तैयार थींदियां हन, सारा कुछ बर्बाद थी वेंदा। इस नाल बहु भुखियां दा ढिड भरिया जा सकदा है। इस कीते खाने को कदहां भी बर्बाद ना करे सां। घर विच खाना उतना ही बनावन जो जितना खादा वेंदा। बचण ते किसी गरीब को दे देवो। दावत विच प्लेट विच उन्हां ही घिनो जितनी भूख थी वे। घर विच दालां सब्जियां उन्हां घिना सां जितनी लोड़ थी वे। नहीं ता गल जा सन, कीड़ा लग जा सी ते सुटना पो सी। उंदा लाभ कैनी। ते हुण इक गीत सुनावन जे। बहु वधिया गीत है। ना तू मिल सैं ना दुख मिट सन, ना मैं इजहार कर सकसां।

0: ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਾਏ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਝ ਬਾਤਾਂ ਕੁਝ ਗੀਤ ਤੁਹਾਕੂ ਸਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਕੂ ਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਭੇਜੋ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋ ਦੇਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੱਲ ਮਿਲਸਾਂ।
1: श्रोताओ भी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम सराय की मीडियम वेव 326.72 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 6:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले। 23,731 करोड़ रुपए की गोबर धन योजना को मंजूरी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से देश में 50 लाख से अधिक परिवारों को फायदा मिला। जयपुर में आज से ब्रिक्स देशों के उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक। वैश्विक व्यापार, MSME और आपूर्ति श्रृंखला सहित कई अहम विषयों पर मंथन। और राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रदेश में होने वाले निकाय और पंचायती चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए की लागत वाली राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबर धन को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मीडिया को इन निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गोबर धन योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। इससे करीब 1.5 लाख रोजगार सृजित होंगे। चालू वित्तीय वर्ष से साल 2035-2036 तक ये योजना लागू की जाएगी। इससे देश के प्रचुर कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगर पालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को साफ ईंधन और जैविक खाद में बदलकर ग्रामीण आमदनी में बढ़ोतरी का लक्ष्य है। इससे कंप्रेस्ड बायोगैस भारत के भविष्य के ऊर्जा मिश्रण का प्रमुख आधार बनेगी। श्री वैष्णव ने बताया कि घरेलू कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाना, बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और देश भर में चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था का निर्माण करना इस योजना का उद्देश्य है।
3: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देख

0: है तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन. करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल जीडीपी को ऐड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम.
1: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में 135 किलोमीटर लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी बाधित हुई. नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित अन्य मुद्दों पर विपक्ष ने हंगामा किया. लोकसभा में सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं.
2: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे. इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए. ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है.
1: श्री बिरला ने इसके बाद प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया लेकिन विपक्षी सदस्यों ने शोर शराबा किया और गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की. विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश में छतों पर सोलर पैनल लगाने की रफ्तार पिछले 9 महीनों में 3 गुना बढ़ गई है. पिछले साल अक्टूबर में रोजाना 5,000 पैनल लग रहे थे जिनकी संख्या बढ़कर प्रतिदिन 16,000 से अधिक हो गई है. श्री जोशी आज नई दिल्ली CII अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन और प्रदर्शनी में बोल रहे थे. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से 50 लाख से ज्यादा परिवारों को फायदा हुआ है और 19 लाख परिवारों के बिजली के बिल शून्य हो गए हैं. उन्होंने कहा कि देश 2020 तक 500 गीगावाट ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर हैं. श्री शर्मा ने इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की. इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने लिखा कि इस दौरान आंतरिक सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत बनाने, सहकारिता क्षेत्र का सशक्तिकरण करने सहित अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया. श्री शर्मा ने केंद्रीय श्रम और रोजगार तथा खेल मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की. उन्होंने प्रदेश के युवाओं को कौशल, रोजगार और नवाचार के क्षेत्र में अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने पर विचार विमर्श किया. साथ ही प्रदेश में खेल संस्कृति को नई रफ्तार देने और खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं का विस्तार करने पर भी चर्चा की. प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर आज संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात की. बातचीत सकारात्मक रही. शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दिलाया कि ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर इन अध्यापकों के स्थानांतरण किए जाएंगे. तबादलों में दिव्यांगों, विधवा, एकल महिला और गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी. उन्होंने ये भी कहा कि सरकार तृतीय श्रेणी अध्यापकों की पदोन्नति भी करेगी. इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. इससे पहले प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव से भी भेंट की. ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं. जयपुर में आज से ब्रिक्स देशों के उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक हो रही है. भारत की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में वैश्विक व्यापार, एमएसएमई, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला सहित कई अहम मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है. इसमें नई औद्योगिक क्रांति पर साझेदारी, डिजिटल व्यापार और स्थानीय मुद्राओं में कारोबार को बढ़ावा देने पर भी मंथन किया जा रहा है. बैठक में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं. उद्योग मंत्री श्री गोयल ने जयपुर पहुंचने पर हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सितंबर महीने में नई दिल्ली में प्रस्तावित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले जयपुर में होने वाली ये बैठक काफी अहम है. श्री गोयल ने कहा कि विश्व की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में भारत एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काम कर रहा है.
3: आज और कल जो बैठक हो रही है वो ब्रिक्स मेंबर कंट्री

0: इंडस्ट्रीज के उद्योग मंत्री और वाणिज्य मंत्रियों के साथ है। अलग अलग विभाग के मंत्रियों की इस प्रकार के समूह बैठते हैं और फिर नेताओं का प्रधानमंत्री जी के लेवल पे जो मीटिंग है वो सितंबर में होने जा रहा है। भारत आज विश्व के आर्थिक संकट के बीच एक ऐसा देश है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम दुनिया की सबसे तेज गति से विकास करने वाला अर्थव्यवस्था बने हैं। 2047 तक एक विकसित भारत विश्व की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाने का बड़ा प्रमुख योगदान देगा।
1: जयपुर में इसी महीने ब्रिक्स की वित्त से जुड़ी बैठकें होंगी। इसके अलावा पर्यटन कार्य समूह और ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की भी बैठक होगी। प्रदेश में होने वाले निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियों की आज राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने समीक्षा की। उन्होंने जयपुर से वीसी के जरिए बैठक कर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और चुनाव कामकाज से जुड़े अधिकारियों से चर्चा की। श्री सिंह ने अधिकारियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त वातावरण में चुनाव प्रक्रिया पूरी करवाने को कहा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि सभी अधिकारी पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने मतदाता सूचियों को अपडेट करने, मतदान केंद्रों की स्थापना, मतदान दलों के गठन, कार्मिकों के प्रशिक्षण तथा अन्य सभी व्यवस्थाएं तय समय सीमा में पूरी करने को कहा। बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राजेश वर्मा ने चुनावी प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी। गौरतलब है कि राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कल अपनी प्रतीक्षित रिपोर्ट सौंप दी। आयोग के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट सौंपी। 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कल मनाया जाएगा। ये दिन देश की कताई और बुनाई की विरासत का उत्सव है। इस अवसर पर पारंपरिक बुनकरों के कौशल को सम्मानित किया जाता है। सदियों से बुनाई कला और तकनीक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती आई है। एक रिपोर्ट।
2: राजस्थान में बड़ी संख्या में हथकरघा कामगार हैं जो बांधनी, कशीदाकारी, ब्लॉक प्रिंटिंग, छपाई कला तथा पारंपरिक दरी और गलीचा बुनाई से जुड़े हैं। कोटा, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर सहित अन्य स्थानों पर बड़े पैमाने पर पारंपरिक शिल्प से जुड़े ये काम किए जा रहे हैं। कोटा डोरिया और सांगानेरी प्रिंट की दुनिया भर में लोकप्रियता है और इन्हें GI टैग भी मिल चुका है। बाड़मेर जिले के सेड़वा इलाके के छोटे से गाँव अली सरो की बस्ती के बुनकर बरिंगा राम को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार के लिए चुना गया है। नई दिल्ली में होने वाले समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें खास किस्म की पट्टू साड़ी की बेहतरीन बुनाई के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: जयपुर में भी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। समारोह में केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय की ओर से होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। इस मौके पर बुनकर सेवा केंद्र की ओर से राज्य के हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन भी होगा। 9 अगस्त तक चलने वाले इस कार्यक्रम में जवाहर कला केंद्र में विभिन्न स्टॉल्स लगाई जाएंगी, जहाँ हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट उत्पाद मिलेंगे। महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत आज पाली में रैली निकाली गई। IG सिविल राइट्स लवली कटियार ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर IG ने छात्राओं को सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने, साइबर अपराधों से सतर्क रहने और आपातकालीन स्थिति में छात्राओं को तुरंत पुलिस सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर छात्राओं को सुरक्षा संकल्प भी दिलवाया गया।
3: अन्य महिलाओं,
4: वो बालिकाओं को
3: उनके अधिकारों
4: वो सुरक्षा के प्रति जागरूक करूंगी। जय हिंद।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले। 23,731 करोड़ रुपए की गोबर धन योजना को मंजूरी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से देश में 50 लाख से अधिक परिवारों को फायदा मिला। जयपुर में आज से ब्रिक्स देशों के उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक। वैश्विक व्यापार, MSME और आपूर्ति श्रृंखला सहित कई अहम विषयों पर मंथन। और राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रदेश में होने वाले निकाय और पंचायती चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से डीग जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आरजू शर्मा ने तैयार किया है। डीग भरतपुर मार्ग पर नगला चाहर मोड़ के पास करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बाईपास बनाया जा रहा है। डीग कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने हाल ही में इसका शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि बाईपास बनने से शहर में यातायात का दबाव कम होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के साथ साथ व्यापारियों और यात्रियों को भी आवागमन में सुविधा होगी। वहीं बीते दिनों अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत डीग के रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना महज स्टेशनों का भौतिक कायाकल्प नहीं है, बल्कि ये देश के करोड़ों नागरिकों को विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में उठाया गया युगांतरकारी कदम है। डीग रेलवे स्टेशन इस पूरे क्षेत्र की समृद्ध विरासत, पर्यटन उद्योग, व्यापारिक गतिविधियों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक नई ऊर्जा और अभूतपूर्व गति प्रदान करेगा। साथ ही डीग के ऐतिहासिक महलों, पर्यटन स्थलों को देखने आने वाले देश विदेश के पर्यटकों को अब रेलवे स्टेशन पर ही विश्व स्तरीय सुविधाओं का एहसास होगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जिले में 75,707 नए पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया है। इसके साथ ही लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। पात्र परिवार मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना, आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में मिशन पढ़ो राजस्थान अभियान शुरू हो गया है, जो अगले वर्ष 16 जनवरी तक चलेगा। शिक्षा अधिकारी बलवीर सिंह ने बताया कि अभियान के तहत विद्यालयों में अंतिम पीरियड पुस्तक अध्ययन के लिए निर्धारित किया गया है। विद्यार्थी कहानी और कविता का पठन पाठन करने के साथ उनके अर्थ को भी समझेंगे, जिससे भाषा कौशल और पढ़ने की आदत को बढ़ावा मिलेगा। हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों में प्रसव सखी व्यवस्था शुरू की है। प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल पहुंचने से लेकर प्रसव और डिस्चार्ज तक गर्भवती महिलाओं का मार्गदर्शन करेंगी। जिला अस्पताल और अधिक प्रसव भार वाले अस्पतालों में इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। डीग जिले में आयोजित फॉलो अप ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराया जा रहा है। शिविरों में किसानों की फार्मर आईडी का पंजीकरण, आवासीय पट्टों का वितरण तथा राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, चिकित्सा और पंचायती राज विभाग से जुड़ी सेवाएं एक ही स्थान पर दी जा रही है। इससे ग्रामीणों को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। डीग के सांझी कलाकार आयुष सोनी ने अपनी पारंपरिक कला से जिले का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। उनकी उत्कृष्ट सांझी कला को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में स्थान मिला है। हाल ही में उन्हें यूनाइटेड किंगडम की संसद में भी आमंत्रित किया गया। सांझी कला ब्रज क्षेत्र की प्राचीन कागज काटने की पारंपरिक कला है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण से जुड़े विभिन्न चित्रों और आकृतियों का सृजन किया जाता है। श्रावण मास के शुरू होते ही कामवन स्थित प्राचीन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या पहुंच रही है। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्र नाभ ने की थी। श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। मंदिर परिसर स्थित मणिकर्णिका कुंड में भी श्रद्धालु आस्था के साथ स्नान कर रहे हैं। हरियालो राजस्थान अभियान में भी बारिश के साथ तेजी आई है। जिले को इस वर्ष लगभग 14,50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है। वन विभाग के साथ विभिन्न सरकारी विभाग पौधरोपण और उनके संरक्षण का काम कर रहे हैं, ताकि जिले में हरित क्षेत्र का विस्तार हो और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले। इसी के साथ डीग जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार।

खास समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल री मीटिंग में कई खास फैसला करी चिया। 23,731 करोड़ रुपया री गोबर धन योजना ने मंजूरी दी री जी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना रो देश में 50 लाख हूं बत्ता परिवारों ने फायदो मिल्यो। जयपुर में आज ब्रिक्स देशां रा उद्योग और व्यापार मंत्रियों री मीटिंग शुरू हुई। वैश्विक कारोबार एमएसएमई और आपूर्ति श्रृंखला समेत कई खास मुद्दा माथे विचार। और राज्य रा निर्वाचन आयुक्त प्रदेश में होवण वाला निकाय और पंचायत चुनाव री तैयारियां रो जायजो लीनो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय मंत्रिमंडल 23,731 करोड़ रुपया रा खर्च वाली राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबरधन ने मंजूरी दे दीनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सदारत में आज हुई कैबिनेट री मीटिंग में दो खास फैसला ने मंजूरी दीरी जी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली में खबरनवीसा ने आम फैसला री जानकारी दीनी। वे बतायो कि गोबरधन योजना रे जरिए देश में नौकरी धंधा रा करीब 1.5 लाख मौका बनेला। साल 2035-36 ताई चलाई जावण वाली ई योजनाओं खेतीबाड़ी मोटी तादाद में निकलवा वाला कचरा ढांडा ढोरा रा गोबर सांठा रा कचरा और दूजी चीजा ने साफ ईंधन और जैविक खाद में

0: वे बतायो के गोबरधन योजना रे जरिए देश माए नौकरी धंधा रा करीब 1.5 लाख मौका बनेला। साल 2035-36 ताई चलाई जावन वाली ई योजनाओं खेतीबाड़ी मोटी तादाद माए निकलबा वाला कचरा ढांडा ढोरा रा गोबर सांठा रा कचरा और दूजी चीजा ने साफ ईंधन और जैविक खाद माए बदल अर गावाई हलका माए जनता री आमदनी बधावनु तय करियो जावेला। श्री वैष्णव बतायो कि ई योजना रो मकसद घरेलू कंप्रेस्ड बायोगैस रो उत्पादन करीब 10 गुणों बधावनु, मोटा पैमाना माथा गैर सरकारी निवेश करावनु और देश में चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था बनावनु है।
1: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: माली मामलारी मंत्रिमंडलीय समिति असम माई 135 किलोमीटर लंबा 4-लेन हाईवे बनावन री मंजूरी दीनी। संसद रा दोनों सदना री कार्रवाई माई आज ही अड़चन आई। नीट पेपर लीक मामला माई विद्यार्थियों रा विरोध प्रदर्शन रे दौरान पुलिस री कथित कार्रवाई समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विपक्ष रा सदस्य हंगामो कीनो। लोकसभा री मीटिंग शुरू हुए ताई हिरोशिमा नागासाकी परमाणु हमला रे कारण मरण वाला ने श्रद्धा भाव सागर याद करी चिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहो कि आज आ दुखद हमला रा 81 साल पूरा फेंक्या।
2: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: श्री बिरला इन पाछे प्रश्नकाल शुरू करन री कोशिश कीनी पण विपक्ष रा सदस्य शोर शराबो करता था का गृह मंत्री अमित शाह रा बयान री मांग करता रहया। विपक्ष रा हंगामा रा कारण सदन री कार्रवाई आखा दिन शुरू टाल दी री जी। राज्यसभा में ही एड़ाई हालात रहया। देश माए छता माथे सूरज री रोशनी उ बिजली बनावन री मशीना लगावन री रफ्तार लारला 9 महीना माए 3 गुना बधगी। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी आज नई दिल्ली में CII अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन और प्रदर्शनी में आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि लाडला साल अक्टूबर महीना में रोजिना 5,000 पैनल लगाया जा रहा है, जहाँ की तादाद अब बधर रोजिना 16,000 बत्ती फैकी है। मंत्री कहो कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजनाओं 50 लाखों बत्ता परिवारों ने फायदो भियो और 19 लाख परिवारों रा बिजली रा बिल शून्य भे गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज दिल्ली माए केंद्रीय मंत्रियों सागे मुलाकात कीनी। संसद भवन माए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सागे भेंट कर व राज्य रा विकास से जुड़िया मुद्दा माथे चर्चा कीनी। श्री शर्मा केंद्रीय श्रम और रोजगार और खेल मंत्री मनसुख मांडविया सागे मुलाकात कीनी। वह प्रदेश रा नौजवानों ने कौशल रोजगार और नवाचार रा हलका माए बत्ता मौका मुहैया करावन माथे विचार कीनो। राज्य माए तृतीय श्रेणी शिक्षकां रा तबादला री मांग ने लेर आज संघर्ष समिति रा नुमाइंदा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सागे मुलाकात कीनी। शिक्षा मंत्री ई दल ने ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर और अध्यापकां रा तबादला रो भरोसो दिलायो। मंत्री बतायो कि दिव्यांग विधवा एकली महिला और घना मांदा शिक्षकां रा तबादला माथे खास ध्यान दियो जावेला। वे कहो कि तृतीय श्रेणी अध्यापकां रा प्रमोशन री तैयारियां ही शुरू कर दी री जी है। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। जयपुर माए आज ब्रिक्स देशां रा उद्योग और व्यापार मंत्रियां री मीटिंग शुरू हुई। भारत री सदारत माए फे रही ई मीटिंग माए वैश्विक कारोबार MSME डिजिटल सेवावां और आपूर्ति श्रृंखला समेत कई खास मुद्दा माथे विचार करियो चार्यो है। इस आगे नवी औद्योगिक क्रांतियों जुड़ी भागीदारी

0: डिजिटल कारोबार और स्थानीय मुद्रा माई कारोबार ने बधावो देवन पराई मंथन चाल रियो है। मीटिंग में शामिल फेवन सारू जयपुर पधारिया उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हवाई अड्डा में थे खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका कहो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सदारत में सितंबर महीना में नई दिल्ली में फेवन वाला ब्रिक्स सम्मेलन पहली जयपुर में भे रही आ मीटिंग घनी खास है। श्री गोयल कहो के दुनिया री माली व्यवस्था ने आगे बढ़ावन में भारत खास केंद्र रातों काम कर रियो है।
1: आज और कल जो बैठक हो रही है वो ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज के उद्योग मंत्री और वाणिज्य मंत्रियों के साथ है। अलग अलग विभाग के मंत्रियों की इस प्रकार के समूह बैठते हैं और फिर नेताओं का प्रधानमंत्री जी के लेवल पे जो मीटिंग है वो सितंबर में होने जा रहा है। भारत आज विश्व के आर्थिक संकट के बीच एक ऐसा देश है जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम दुनिया की सबसे तेज गति से विकास करने वाला अर्थव्यवस्था बने हैं। 2047 तक एक विकसित भारत विश्व की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाने का बड़ा प्रमुख योगदान देगा।
0: जयपुर में इनी महीना ब्रिक्स री माली मामलाओं जुड़ी मीटिंग रखी जावेला। इस आगे पर्यटन कार्य समूह और ब्रिक्स देशों रा पर्यटन मंत्रियों री मीटिंग ही वेला। राज्य रा निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह प्रदेश में आवता भगत फेवन वाला निकाय और पंचायत चुनाव री तैयारियां रो आज जायजो लीनो। वह जयपुर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए सगला जिला निर्वाचन अहलकारा एसपी और चुनाव रा काम जुड़िया अहलकारा सागे मीटिंग कर स्वतंत्र निपक्ष साफ कोई सागे और बिना डर रा माहौल में चुनाव करावन सारू कहो। वह वोटर लिस्ट अपडेट करण मतदान केंद्र और पोलिंग पार्टियां बनावन कर्मचारियां री सिखावन और दूजी व्यवस्थावां ते मियाद माई पूरी करण सारू कहो। ध्यान जोग है कि राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग रा अध्यक्ष और पहली वाला जज मदन लाल भाटी काल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आयोग री रपट सौंपतीनी। सुप्रीम कोर्ट नीट यूजी परीक्षा में सुधार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए रा कामकाज जुड़ी अर्जियां माथे आगली सुनवाई 19 अगस्त न करेला। सरकारी कारिंदा न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधेरी पीठ ने बतायो कि नीट यूजी परीक्षा ही जेईई मेन्स और एडवांस री भांत दो दौर में कंप्यूटर आधारित बनावन माथे विचार करो जा रो है। इस आ गई पेपरां री हिफाजत और छपाई जुड़िया कड़ा उपायां री जानकारी अदालत ने दीरी जी। 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस काल मनायो जावेला। वो दिन देश री कताई बुनाई री विरासत ने बतावे है। ई मौके बुनकरां रा पारंपरिक कौशल रो मान करियो जावे है। सैकड़ा बरसाओं बुनाई कला और तकनीक एक दूजी पीढ़ी माई जा रही है। राज्य में हथकरघा कामगारां री मोटी तादाद है जो बांधनी कशीदाकारी ब्लॉक प्रिंटिंग छपाई कला और पारंपरिक दरी और नमदानी बुनाई जुड़िया है। कोटा जयपुर जोधपुर और बाड़मेर समेत नैरी नैरी ठोड़ा जूना शिल्प जुड़िया काम करिया जा रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस रे मौके वस्त्र मंत्रालय री ओर रख्या जावन वाला राष्ट्रीय कार्यक्रम रो सीधो प्रसारण जयपुर में रख्या जावन वाला जलसा में करियो जावेला। बाड़मेर जिला में सेड़वा हलकारा गांव अलीसरों की बस्तीरा बुनकर बरिंगा राम ने राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार सारू चुनी चियो है। नई दिल्ली में फेवनवाड़ा कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खास किस्म री पट्टू साड़ी री बेहतरीन बुनाई सारू राष्ट्रीय पुरस्कार देर वन नवाजेला। देश रा हर रहवासी ने आज़ादी रो महत्व बतावन और स्वाधीनता दिवस ने गर्व मनावन सारू चलाया जा रहा हर घर तिरंगा अभियान रा तेत जनता माय घरा दुकाना और संस्थाना माथा तिरंगो झंडो फहरावन रे बारा माय जाग जगाई जा रही है। झुंझुनू माय जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग आज हर घर तिरंगा अभियान रा तेत कार्यक्रम री शुरुआत कीनी।
2: स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही उल्लासपूर्वक मनाने के लिए इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है। इसमें ये आह्वान है और प्रयास है कि हर व्यक्ति जो है स्वतंत्रता के महत्व को महसूस करे उसको सेलिब्रेट करे जैसे हम अन्य पर्व करते हैं। इसका आगाह करने के लिए आज शाम 11 फ्लैग है वो बांटे जाएंगे ताकि लोग उसको मोटिवेट हो और प्रयास रहेगा कि हर भारतीय हमारा हर झुंझुनू निवासी घर पे अपने संस्थान पे तिरंगा लगाए। जो हमारी नई पीढ़ी है उसकी राष्ट्रीयता की भावना है और हम स्वतंत्रता को महसूस कर सके और जिनके योगदान से हमको मिला है उनको नमन।
0: आखिर में खास समाचार एक फेरू सुन ले रहो। केंद्रीय मंत्रिमंडल री मीटिंग में

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: कार्यक्रम किसान वाणी सुनवा वाला सगला है तालवा ने जखा दूर दराज गांव ढाणी रे मायने बैठे हुआ कार्यक्रम सुने है आप सगला है तालवा ने गणे मानसू प्रभु दयाल वर्मा को राम राम और निवन प्रणाम और सागे सागे राजू भाई थाने भी मोकलो मोकलो राम राम।
7: प्रभु भाई मोकलो मोकलो राम राम और सगला श्रोताओं ने राजू चौधरी और घणो घणो राम राम सा किसान वाणी कार्यक्रम में।
6: राजू भाई का हाल चाल?
7: हाल चाल चौका है सा।
6: देखो चौका हाल चाल हुए आप आई उम्मीद करा और देखो चोखो सोचनो चोखो बोलनो और चोखा काम करना ई मान के जीवन रो उद्देश्य होना चाहिए।
7: बिल्कुल सा। और देखो आपा देखा चोखा रहसिया चोखा आपा कोई काम करसिया और चोखा आपा मीठी वाणी आपा बोलसिया तो देखो सुन बाला ने भी और जिको बात कर बाला बिन भी चोखा लाग सी।
6: बिल्कुल चोखा लाग सी ई वास्ते राजू भाई आपने जो शब्दों को है अपनी वाणी रो अपन सोच समझ इस्तेमाल है वो करना चाहिए और इसलिए जगह महापुरुष हुआ है कवि हुआ है या जगह धर्म की स्थापना कर वाला या जगह अपना बड़ा बुजुर्ग हुआ बे आ बात लिखेर गया कि भाई हमेशा शब्दों को इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। आप कहीं बोल रहे हैं कौन सी जगह बोल रहे हैं कत्तों बोलना है कत्तों नहीं बोलना है बोल लो लेकिन बोल बसों पर तोल लो ये बात को अपन विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस वास्ते क्यों जाएगा भाई कागा किसका धन हरे कोयल किसको देत और एक रस नारे कारण जुग अपना कर लेत के भाई कागलो कोई को धन हरे को नहीं और कोयल कोई ने देवे को नहीं पर देखो मीठी वाणी री माध्यम सु कोयल है जद बोले देना देखो मीठी लागे।
7: बिल्कुल सर को बोले जाना देखो तो चुब्बाड़ी सी आवाज लगे अपन।
6: चुब्बाड़ी सी आवाज लगे ई वास्ते देखो बातड़ी आई है के भाई अपन भाषा अपन वाणी जद भी बोला तो सोच समझ रहा अपन अपनी वाणी रो इस्तेमाल अपन करनो चाहिए।
7: और देखो कार्यक्रम आगे बढ़ावा और देखो दिवाओ जान

0: बिल्कुल जानकारी तो लियो किसान भाई तक आप पूर्ति करा। किसान भाई और बिना कार्यक्रम में जानकारी देवा के वास्ते पधार चुके हैं डॉक्टर ओम प्रकाश जी गढ़वाल। आप प्रोफेसर है उद्यान विज्ञान श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर सो कार्यक्रम में पधारे है। और आज अपन जानकारी देवला सब्जियां में शारीरिक विकार और प्रबंधन ई विषय पर। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ठाकुर कार्यक्रम का मायने बहुत बहुत स्वागत है सा, राम राम साहे।
1: राम राम साहब।
0: और जिया का आज अपन बातचीत कर रहे हैं कि सब्जियां का मायने शारीरिक विकार और बांको प्रबंधन। तो सबसे पहले तो आपसे वही जानना चाहूंगा कि शारीरिक विकार से काई तात्पर्य है, इसके बारे में थोड़ी सी विस्तार से जगह मका किसान भाई बहन जानकारी दे सा।
1: हाँ देखो किसान भाइयों, अभी सबसे बड़ी बात आ है कि जो आपने सब्जी है, सब्जी कई प्रकार की सब्जी किसान भाई खेती आप लोग करो तो इक मायने कई प्रकार की समस्या आवे। अब समस्या कहीं हुए, एक तो कहीं बीमारी हुए, एक कीट की समस्या हो जाए, पर कीट और बीमारी के अलावा, क्योंकि कीट की वजह से भी खराब हुए सब्जी या फल, और वहीं कहीं बीमारी जो विषाणु सू जीवाणु सू या फफूंद सू फैलें, रोग फैलें, तो आके अलावा न तो कीट की समस्या न उस बीमारी को कोई कारण हुआ, इसके अलावा जी मान लो पोषण सही नहीं मिला भी ने फसल ने, तो असंतुलित पोषण हो जाए, या वातावरण का जो कारक है, वातावरण कारक का मायने कहीं है जी बहुत तेज़ धूप हो जाए, बहुत तेज़ ठंडक हो जाए, या अन्य कोई कारण प्रकाश ज़्यादा तेज हो जाए, तो एक ही वजह से जो भी विकार पैदा हो जाए सब्जियों के अंदर, और भी विकार की वजह से अगर आपने पैदावार कम हुआ है तो बाद में बोला करा कि सब्जियों का शारीरिक विकार ऐ जो विकार है। अब आपको कहिए कि आप प्रबंधन क्या करा, कौन कौन सा है भी कि आप आज चर्चा करा।
0: जी हाँ, सब्जियां का मान किसान भाई मेहनत कर सब्जी बोए तो पहली चोट तो आप भाई बात करा कि भाई कोई प्रकार को विकार है वो उत्पन्न हुए ही नहीं, आ सब्जियां का मान लगे ही नहीं। तो जब सब्जी तैयार करे या पौध तैयार करे किसान भाई, तो कौन कौन सी बात है वहां को किसान भाई ने मोटा मोटी रूप को
1: हाँ
0: जान जाना
1: देखो,
0: चाहिए।
1: पौध की बात तो अलग है कि जहाँ किसान भाई हमेशा जो जो फसल है कि वह सब्जी जी की पौध तैयार करनी पड़े, तो वह कोशिश आ रहा कि किसान भाई कि पौध के तैयारी करवा से पहले सबसे पहले तो बीज अच्छे मिल जाए, अच्छो बहुत ही अच्छो स्रोत से बीज मिले, और बी के बाद में पौधशाला के मायने आजकल तो कहीं प्रोट्रे के नाम से ट्रे आवा लागी प्लास्टिक की, और कोकोपीट जिया को मीडिया आवे बी के अंदर आप प्रोट्रे के मायने बीज डाल करके पौध तैयार कर लें, पर पौध तैयार करें बाद के मायने समस्या यह आवे कि विकार अलग अलग प्रकार का हो जाए। तो अलग अलग फसलों में जिया मान लो मैं थाना उदाहरण के दूँ, या टमाटर है तो टमाटर की फसल के मायने कई प्रकार के विकार हुए, तो टमाटर है, मिर्च है, और एक अलावा तरबूज है, आ तीनिया का मायने एक बड़ी समस्या आवे बिन में बोलिया करा माँ की वैज्ञानिक भाषा में ब्लॉसम एंड रोट,
0: जी
1: मतलब जो फल लागा ना इको बी के नीचे वाला हिस्सा का मायने कहीं थोड़ा सा मुरझान सो आओ शुरू में, और बाद के मायने फिर एक मायने और एक सिकुड़ने की पोजीशन में आ जाए और ख़राब हो जाए। तो इको सबसे बड़ो कारण का ही है कैल्शियम तत्व की कमी,
0: जी
1: जमीन का मायने कहीं पोषक तत्व का मायने अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो आ समस्या आ जाए, और इस समस्या का आया बाद का मायने फिर पैदावार अपनी कम हो जाए। तो वो दो तीन फसलों का मायने चाहे टमाटर हो चाहे मिर्च हो चाहे तरबूज हो एक
0: बिल्कुल
1: मायने बड़ी समस्या आवे।
0: बिल्कुल जी, यहाँ पर टमाटर की आप बता रहे हो तो किसान भाई ने किया ही बात को बेरो लगेगा भाई भी कमाने जो को विकार आ चुके हैं। अगर विकार आएगी तो टमाटर की फसल भी की पैदावार सही तरीका से वो ले सके तो भी के लिए की प्रकार को कहीं जतन करना
1: देखो
0: पड़ेगा।
1: टमाटर का मायने क्योंकि फलदार पौधा हो चाहे सब्जी हो, अहीं का मायने आ तो आत को ना कि भाई एक बार लाग गार सारो काम खत्म हो जाए, एक मायने 5 बार 7 बार की पैदावार आती रहे। तो अगर शुरुआत के मायने अगर पतो लाग जाए तो हर जहाँ टमाटर का मायने किसान भाई देख सके कि कुछ टमाटर के जो नीचे वालों हिस्सा है अभी का मायने हल्को से टिक्को बने भूरा
0: जी
1: भूरा रंग को, तो ते ये बात से पहचान कर लियो कि आपने टमाटर का मायने पोषक तत्व कैल्शियम की कमी होगी जी की वजह से आपने आज समस्या देख रही है। तो किसान भाई अगला लोट का मायने आज समस्या नहीं आवे तो कैल्शियम को छिड़काव भी करा सके। बाकी सबसे बढ़िया है कि आप खेत तैयार करो तो खेत तैयार करते टाइम का मायने सबसे आसान जो कैल्शियम को स्रोत है वो है जिप्सम, तो जिप्सम की पूर्ति आप हर खेत का मायने जी का मायने आपने मिर्च करनी हुआ है टमाटर करना हुआ है तरबूज करना हुआ है भी खेत का मायने 500 किलो तक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिप्सम का प्रयोग करो ताकि
0: जी
1: कैल्शियम की पूर्ति हो जाए।
0: और टमाटर के पचापा बात करा प्याज के संदर्भ में, क्योंकि प्याज भी बड़ा स्तर पर किसान भाई है की खेती करे है तो किसान भाई ने बढ़िया ही को लाभ ले सके, तो प्याज के संदर्भ में कहीं कहीं बातों को ध्यान रखना चाहिए या जगह कौन कौन सा विकार है प्याज की फसल में मुश्क है।
1: देखो प्याज के मायने भी लग जो विकार की आप बात कर रहे हैं तो या टमाटर का मायने आप एक विकार की बात करी जी टिक्का वाला की भी, के अलावा टमाटर का मायने एक दो विकार और भी आवे जी हाँ पफी नेस का नाम से बोलिया करा मैं कि अंदर से कहीं थोड़ा खोखलो टाइप का हो जाए टमाटर, एक मतलब है कि भी के मायने पोषक तत्व कम हो जाए और वातावरण की दशा थोड़ी सी बिगड़ जाए जी वजह से हो जाए, एक कई बार कहीं

0: गर्मी का मायने आप देखा गया, मतलब फलां का मायने जो ऊपर को तेज धूप आओ ना बी की वजह से भी जलवा लग जाए, बिन
1: जी
0: सन स्केल्डिंग का नाम से बोला। तो कोशिश आ करो किसान भाई कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ तो बिना हल्को पानी आप रिपीटेडली बीच में और पिला सको। अब जहाँ थे पूछा कि प्याज के मायने कौन कौन सी समस्या विकार का रूप में आवे, तो देखो किसान भाइयों प्याज के मायने जो किसान लोग प्याज की खेती करें, आप कुचामन के एरिया में, सीकर में, जोधपुर में, अलवर में, जयपुर का ये पूरा जोन का मान काफ़ी एरिया में प्याज की खेती किसान भाई करें,
1: जी
0: तो इक मायने एक तो समस्या आवे भी न बोलिया करें बोल्टिंग। और बोल्टिंग का मतलब कहीं हुआ कि बी के मायने पहली जहाँ कई लोग भाई नरड़ो बोलें किसान भाई आपकी भाषा में, कई तुर्रो बोलें कि बी के मायने, क्योंकि प्याज का मायने जो गांठ बना ना नीचे
1: जी
0: बिन बोलिया करा मैं बल्ब, वो बल्ब की अगर अच्छी पैदावार हुए तो पैदावार किसान ने अच्छी मिले, लाभ मिले। परंतु कई बार कहीं हुआ कि वातावरण की दशा अचानक बदलाव आ जाए जिसकी वजह से वो गांठ तो बने कम और ऊपर बी के ऊपर तुर्रो निकल जाए, तो बिन बोलिया करा बोल्टिंग। तो
1: जी
0: बी को सबसे बड़ा कारण कहीं हुआ कि जी टाइम के मायने प्याज की कंद बनवा की जो अवस्था हुआ, अगर ज़्यादा पानी किसान पिला दे तो बी अवस्था का मायना समस्या बढ़ जाए। तो एक तो कोशिश आ करो कि पानी आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं पिलाना और कम भी नहीं पिलाना, नियमित रूप से पानी पिलाओ किसान भाई। दूसरा कहीं है कई बार आपने देखा कि जो पौध है नर्सरी में पौध तैयार करे तो देखो जितनी भी सब्जी है बस सब्जियों में लगभग लगभग कहीं 1 महीनों 35 दिन के आसपास को टाइम हुआ है जी का मायने आपका खेत का मायने रोप लगा दिया, नर्सरी
1: जी
0: जो पौधशाला की आपको टाइम तकरीबन महीना भर के आसपास को रहे। परंतु प्याज एकमात्र की फसल है सब्जी जी का मायने पौध में तकरीबन 50 दिन को टाइम लगे, 50 दिन 55 दिन के आसपास, और ज़्यादा ज़्यादा मानो कि 2 महीना लग जाए। पर कई बार किसान भाई कहीं करें कि अगर 2 महीना के बाद में 3 महीना हो जाए पौध में, 2.5 महीना हो जाए फिर आपा खेत में लगावा तो भी यह समस्या आ जाए।
1: जी
0: तो एक मायने देखो किसान भाई ध्यान रखो कि जब भी आप पौध तैयार करो तो एक टाइम टेबल फिक्स करो कि आपने 2 महीना के अंदर अंदर तो पौध ने खेत में लगानी लगानी, अगर आपा खेत में नहीं लगाया तो फिर आपने समस्या बढ़ सके। तो एक कहीं है फिर बाद में दवाई एक सुई छिड़काव करो या सुई को रोकथाम कौन वैसे के, तो आप प्याज के मान बड़ी समस्या आवा। तो इसके अलावा कहीं है पत्ता गोभी के अंदर भी कई बार आ समस्या आ जाए। तो कुल मिला के बात यह है कि थोड़ा मैनेजमेंट ढंग से किसान भाई करें तो आ समस्या भी आप कम हो सके।
1: बिल्कुल किसान भाई, अगर आप बातों को ध्यान रखें तो वे एज का विकार आप बात कर रहे हैं आंसू बच सके है। अब आप सब्जियां का मैंने बात करा जी, कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं तो थोड़ा सा जानना चाहूंगा भाई, कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं वे हुए कौन कौन सी है, बाक के मायने कई प्रकार की कोई विकार है या कोई समस्या है जिसकी उत्पन्न उसके है।
0: हाँ देखो किसान भाइयों कद्दू वर्गीय सब्जी को मतलब कहा है कि जो सब्जी आपा जो देखा ना काकड़ी है, खरबूजा, तरबूज, मतीरा वगैरह, तुरई है, लौकी है, ऐसी सारी की सारी ऐसी सब्जियों को बड़ो ग्रुप है एक, इन बोलिया करें कद्दू वर्गीय सब्जियाँ। तो चूंकि किसान भाई अगर आप अपना प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में इनकी खेती काफ़ी एरिया में हो रही, इवन काचरी वगैरह की भी खेती काफ़ी लोग करवा लागा। कद्दू वर्गीय मतलब जो बेल वाली ज़्यादातर सब्जी है, बेलड़ी वाली बस सब्जियां ने कद्दूर के सब्जियां की श्रेणी माना जाए। अब आँख के मायने अगर विकार की आप बात करा तो देखो कि ई के मायने सबसे बड़ा विकार तो एक ये आवाज सब्जियां के मायने है कि ई के मायने फल फट जाए,
1: जी
0: और फल फटवा की समस्या दूसरी फसलों के मायने भी आवे, सब्जियों के मायने भी आवे, तो क्रेकिंग बोलिया करा मैं इन्हें। एक फल के मायने आते हैं देखो कि कई बार खीरो है खीरो फट जाए, या टिंडो है टिंडो फट जाए, बी के मायने क्रेक यहाँ आ जाए। तो ऐसे जो फट वाली समस्या है ना एक सबसे बड़ा कारण का ही है कि अगर गर्मी लंबी पड़े,
1: जी
0: क्योंकि इसकी आपा ज़्यादातर बुआई कहाँ करा होली के आसपास में किसान भाई की बुआई करें, और गर्मी का महीना का मायने है जून तक इसकी मतलब फसल ने काट लें या हार्वेस्ट कर लें,
1: जी
0: तो ज़्यादातर फसलां इस मौसम में ही हुए हैं अपना मौसम का हिसाब देखे जाए तो ऐसे जायद की फसल बोलिया करा इन्हें। तो इस अवस्था में कहीं हुए कि ज़्यादातर गर्मी का मायने कई बार ज़्यादा गर्मी एक साथ होगी और लंबो पानी को नहीं पिलाया लंबा समय तक, और फिर एक साथ पानी पिला दे किसान भाई तभी फटवा की संभावना हो जाए। इसके अलावा कई है कई बार बारिश तेज हो जाए बीच में कि महीनों डेढ़ महीना गर्मी आई खूब सारी और अचानक तेज बरसात होगी, तो ज़्यादा बरसात होगी वजह से भी कहीं वातावरण का मायने अचानक बदलाव आ जाए
1: जी
0: तो बी की वजह से भी फाट जाए फल। इसके अलावा तीसरा कारण और है कि पोषक तत्वों को कमी, विशेष रूप से बोरोन और कैल्शियम दो तत्व यहाँ का हैं, तो बोरोन की अगर कमी हो जाए तो भी कहीं है कि फल अपने फटवा की पोजिशन में आ जाए। तो किसान भाई एक चीज़ को जरूर ध्यान रखें कि नियमित रूप से पानी पिलाता रहें, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिलावें और एक साथ ज़्यादा लंबो गैप नहीं दें, पहली बात। दूसरी बात कि बोरोन की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ा है कद्दू वर्गीय के सब्जियां के मायने, दूसरी फसलों के मायने भी, इसलिए बोरोन की पूर्ति करवा के लिए किसान भाई बोरेक्स का नाम सुन बाजार के मायने मतलब एक उर्वरक मिले,

0: माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में,
1: जी
0: तो वो 405 ग्राम प्रति लीटर पानी का हिसाब से बिन घोल अरबी को छिड़काव करवा सकें जी टाइम में, क्योंकि एक लोट का माने अगर संभावना लाग गई ना भाई फटवाड़े संभावना चालू होगी, तो कम से कम आगलांग माना संभावना खत्म हो जाए।
1: तो अलग अलग जो सब्जियां की अगर बात करें तो जो छिड़काव की थी बात कर रहे हो, मात्रा की कहीं रेवे लीजिए,
0: चाहे कोई भी सब्जी हो लगभग, क्योंकि जो बोरोन की पूर्ति करवा की बात करा तो 400 लेकर के 5 ग्राम तक आराम से कोई सी फसल का मानी आपा काम में ले सका।
1: और एक जो डॉक्टर साहब थे बता रहे हो कि फल फटवाड़ी जी की समस्या, तो जी आप बार चौमासा को टाइम चल रही है माने जी काचरा है या काकड़ी है भी आपने जी खेत के मायने भी खिर जाए तो कहीं बिक के मायने भी आए आप समस्या है
0: नहीं खिरवाड़ी बात अलग है, खिरबा को तो कारण कहीं है कि जब कई बार कहीं जो प्रकृति यह है कि अगर फल पूरा पक जाए तो एक मायने सबसे पहले तो वह भी को पकवो,
1: जी
0: और पकया के बाद में फिर ज़्यादा पकवो, और ज़्यादा पकया बाद के मायने तो फिर कहीं वो फाट जाए, वो बिकी तो अवस्था हो जाए उम्र हो जाए, परंतु अगर वो पूरा पके न बीस पहले अगर फाट वाले जाएगा मतलब है भी कमाने कमी है विकार है,
1: जी।
0: तो बिकी पूर्ति वास्ते आप बोरोन और कैल्शियम को छिड़काव करा।
1: और डॉक्टर साहब अब आप बात करांगे गोभी वर्गीय जी की सब्जियां हैं वहां के मायने कई प्रकार का विकार आस्क है या किसान भाई ने कौन कौन सी बातें हैं वहां को अपन ध्यान रखना चाहिए।
0: देखो गोभी वर्गीय सब्जियां का मायने मुख्य रूप से पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, गांठ गोभी है, ब्रोकली आजकल खूब सारे किसान भाई लगावा लागा, ब्रोसोल स्प्राउट्स भी आवा पर बह लोग आपने कम लगाओ, 5 स्टार होटल वाला तो फिर भी काम में ले,
1: जी
0: पर मुख्य आपने कहें पत्ता गोभी और फूल गोभी की दो खेती करें किसान भाई। और आ देखो कि पत्ता गोभी में विकार फटवा को भी आवे, इसके अलावा बार बताया था ना बोल्टिंग भी आवे,
1: जी
0: परंतु जो फूल गोभी है ये फूल गोभी का मायने सबसे बड़ी समस्या कहीं आवा कि एक तो बटनिंग का नाम से बोलिया करा मैं, बटनिंग का मतलब है कि छोटो सो रह जाए फूल, अगर फूल की लगभग औसत आप 500, 700, 800 ग्राम तक को फूल माना एक किला को माना तो एक मतलब बाजार में अच्छे भाव मिले,
1: जी
0: पर अगर मान लो वो फूल छोटो रह जाए कड़ बोलिया करा मेरे वैज्ञानिक भाषा में, अगर कड़ की साइज ही बहुत छोटी हो जाए वो 100-150 ग्राम को दीपक कीजिया हो जाए दिया कीजिया, तो फिर वो आपने किसान भाई के लिए नुकसानदायक है। तो एक बड़ी समस्या तो आओ बटनिंग की कि फूल छोटो रह जाए। अब आप देखो कि अब आर में पहले चर्चा करी किसान भाइयों आप जानो ये बात ने कि जितनी भी गोभी की वाली जो फसल हैं जी मान लो आप उदाहरण के रूप में फूल गोभी की बात करा, तो फूल गोभी का मायने 28 से 35 दिन को टाइम चाहे पौध रोपण को,
1: जी
0: अगर पौधशाला में तैयार कर लिया नर्सरी में पौधा ने भी के बाद में आप लगभग एक महीना में या 30-32 दिन का मान भी खेत का मायने रोप लगा दिया, ये ज़्यादा लेट नहीं होना, पर कई बार कहीं किसान भाई की ज़मीन खाली कन हुई या कोई और कारण हो जाए तो वो बिना 30 दिन से ले जा करके और 40, 45, 50 दिन तक पहुंचा दे, तो बैंक की स्थिति के मायने भी फिर छोटो रह जाए कर्ड। और दूसरों कहें किसान भाई एक थोड़ी सी कमजोरी रखें कि जब पौधशाला तैयार करें नर्सरी तैयार करा आप, तो नर्सरी तैयार करते टाइम में कहें आसपास में कोई भी क्यारी के मान आप बीज डाल करके नर्सरी तैयार करा, जबकि भी क्यारी की भी खेत की पहले तैयारी होनी चाहिए भी कमान नत्रजन की पूर्ति होनी चाहिए पूरी कि नाइट्रोजन की कमी की वजह से यह फाट जाए। इसके अलावा देखो फूलगोभी का मायने किसान भाइयों एक दूसरा विकार और आवे और भी विकार को नाम है ब्राउनिंग। ब्राउनिंग का मतलब है कि अगर जो आप देखा ना फूल पत्ता फूलगोभी को फूल न अगर आवा देखा कर्ड ने तो बी के बीच बीच के मायने कहीं हल्का हल्का भूरा भूरा रंग का दाग सा बन जाए धब्बा सा
1: जी।
0: अगर एक आधा कोई पौधा के ऊपर था या नजर आ गया दाग बनवा लग गया इको मतलब है कि आपने ई में समस्या चालू होगी। बिन काट के अगर देखा अगर किसान भाई भी फूल नगर सीधो काटो ऊपर से नीचे तो काटना देखा तो अंदर की तरफ कहीं है कि वो पूरा पूरा खोखलो खोखलो नजर आवे, तो एक दूसरा नाम कहीं है होलो हर्ट का नाम से बोलिया करा इन्हें, मतलब खोखलो हो जाए अंदर से और भूरा भूरा धब्बा बन जाए, तो अतः से लक्षण देखता है किसान भाई के मायने भी जो बार पहले चर्चा करी कि बोरेक्स वही 4 ग्राम 5 ग्राम प्रति लीटर पानी का हिसाब से इको छिड़काव करता रहे तो बाकी फूल गोभी अभी का माना समस्या कोना है। तो ऐ दोनों जो सबसे बड़ा विकार है ऐ कहीं है कि अपनी पैदावार ने कम करें, तो किसान भाई इस चीज़ को मैनेजमेंट ढंग से करें तो अपने आप पैदावार अच्छी बढ़ जाए।
1: और सब्जियों का मैंने अगर आप बात करें तो आलू ना आप क्या भूल सके, हाँ आलू की फसल भी किसान भाई खूब लेवे है, आलू के साथ साथ जो शक्करकंद है वह भी किसान भाई चौमासा का टाइम का मैंने लेवे, तो अंक के संदर्भ में अगर आप बात करें तो आम कौन कौन का विकार
0: हाँ
1: है,
0: देखो
1: है।
0: हाँ किसान भाइयों थे भी जानो ये बात नहीं कि आलू तो अपना देश में ही नहीं पूरी दुनिया का मान सबसे ज़्यादा लोग इन्हें काम में लें खावा के रूप में सब्जी के रूप में और कई सारे का प्रोडक्ट भी बने। अब एक मायने में कहें क्योंकि ऐ बाकी फसलां तो फिर भी ज़्यादा लंबा कौन खींचे, परंतु आलू है प्याज है लहसुन है तो फिर भी लंबी थोड़ी चाल जाए, तो आलू का मायने भी कहीं ये कि विकार कई प्रकार का आवे। एक मायने भी एक तो आओ ब्लैक हार्ट का नाम सुन कि कई बार कहीं आप देखा कि अगर ए की जगह में एकांत जगह में रख दिया इन्हें इकट्ठो करके और जड़े ऑक्सीजन कौन मिले

0: तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मतलब वो आलू आपनों खराब होवा लग जाए और वो आलू खराब जोड़ो फिर बाजार के मायने भी की वैल्यू कौन मिले। तो हमेशा कोशिश राखो किसान भाइयों की जब भी आलू की आपा खुदाई कर लिया तो बिन इस जगह मतलब वातावरण को दियो कि भी कमाए थोड़ा ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहे, थोड़ा हवा मिलती रहे, नहीं तो वो काड़ो पड़ जाए खराब हो जाए। दूसरे विकार और आओ आलू का मायने जी के मायने आप कई बार देखा ग्रीनिंग का नाम सु ग्रीनिंग का मतलब कहीं हुआ कि जी जमीन का नीचे ला गया
1: जी।
0: फसल और अगर मान लो एको आलू को जो ट्यूबर बन रहे हो तो भी ट्यूबर के ऊपर से माटी हट जाए तो माटी हटता है कहीं सूरज की सीधी किरण भी को ऊपर आवे और सीधी किरण धूप की वजह से कहीं हुआ कि वो हरे हरे हो जाए तो हरे हो बसु कहीं हुआ कि भी मान क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाए
1: जी।
0: और बाय एक कहीं है कि आपने लिए नुकसानदायक औजार भी की बाजार की वैल्यू कम हो जाए। तो किसान भाई ध्यान रखो कि जब अगर एक ही संभावना लागे तो एक ही जो फसल आप खेती करा जी टाइम में महीना डेढ़ महीना के दौरान देखता रहो कि मिट्टी अगर हट जाए तो मिट्टी आप चढ़ाओ एक ऊपर ताकि यहाँ हरियापन की संभावना भी नहीं आवे।
1: डॉक्टर साहब जी आलू आप कट्टा के मायने या बोरी के मायने गाल ली और भी के बाद के मायने वो पड़ियो पड़ियो कई बार उग जावे है तो वो भी कोई
0: हाँ
1: विकार है?
0: देखो वो विकार है स्प्राउटिंग बोलिया करा इन्हें और यो आलू में ही नहीं यो प्याज के मायने बहुत सारो है। तो आलू है प्याज है यहाँ की सब्जियां के मायने का ये है कि अब अगर लंबा समय तक भी ना आप वातावरण सही ढंग से नहीं मिला तो स्प्राउटिंग की संभावना बढ़ जाए। अब आप देखो कि स्प्राउटिंग की वजह से कहीं हुआ कि बाजार को भाव कौन मिले और भी की उम्र कम हो जाए। अब जी हाँ उदाहरण के लिए चाहे भले आलू की बात करा चाहे प्याज की बात करा तो स्प्राउटिंग की वजह से ही आपने जो उगवा लाग जाए भी कमान ठूंठ निकलवा लाग जाए तो फिर वो कहीं है कि बी की वैल्यू कम हो जाए। तो किसान भाई एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि इको जब भी अगर लागना यहाँ तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि कमान नमी कम करें कि अगर बहुत ज़्यादा नमी है और नमी वाली पोजिशन का मायने अगर आप अभी स्टोर कर दें जो भी आपने भंडारण की स्थिति में लिया हुआ तो स्प्राउटिंग की संभावना बढ़ जाए। अब प्याज के लिए तो मैं हमेशा एक रिकमेंडेशन करा किसान भाई ने कि प्याज की खुदाई करें सो दो तीन दिन के अंतराल तक दो तीन चार पाँच दिन तक आराम से बिन धूप के मायने थोड़ा सा खुला छोड़ो और खुला छोड़े बाद के मायने फिर बिन कहीं कई लोग कहीं कर इकट्ठो कर दें और बंद जगह का मान स्टोर कर दें। तो किसान भाई यहाँ को बंद की बजाय यहाँ का वातावरण का मान रख जी के मान हवा को मतलब एरिएशन होता रहे वेंटिलेशन तो अगर वेंटिलेशन प्रॉपर मिल जाए तो स्प्राउटिंग की समस्या भी कम आवे। और हालांकि कुछ दवाई भी आवे के लिए बिन कहीं है कि अब जी टाइम में प्याज की खुदाई करा भी कर पाँच सात दिन पहले स्प्रे करा
1: जी
0: तो भी वह कारगर सिद्ध हो जाए। पर सबसे बड़ो है कि भी कमाए ने आप वेंटिलेशन प्रॉपर रखा और नमी चार पाँच दिन की धूप जरूर दिखाऊँ बिन भी के बाद में स्टोर करा।
1: और डॉक्टर साहब सब्जियां में शारीरिक विकार और प्रबंधन ये विषय पर आप बहुत ही विस्तार से जानकारी दे रहे हो पर अब चलता चलता जगह का किसान भाई है कोई बात छूट गई हेरबा ने संदेश के तौर पर कहना चाहो?
0: हाँ देखो किसान भाइयों की ये जो मतलब विकार वाली जो टॉपिक है देखो इसके ऊपर था ने मोटी मोटी चीज़ें जानकारी के रूप में दी पर सबसे बड़ी बात यही है कि खेती धनी सेती ये कहावत है आपने कि अगर धनी मतलब जो किसान है अगर वो जागरूक है और बिन अगर चीज़ों की मतलब जानकारी अच्छी है तो वो अपने आप ही सब चीज़ों का प्रबंधन कर ले अच्छे तो अच्छे प्रबंधन करवा के लिए किसान भाइयों को जागरूक हो जरूरी है। और जागरूक होवा के लिए सभी किसान भाई एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि जो भी कृषि विज्ञान केंद्र आसपास का आपका क्षेत्र में काम कर रहा बांगा वैज्ञानिक से संपर्क करें कृषि विभाग का कृषि पर्यवेक्षक है कृषि का सहायक कृषि अधिकारी जो भी लोग एग्रीकल्चर का जुड़ा लोग हैं वह लोगों से हमेशा संपर्क रखो। कोई मीटिंग है कोई किसान मेलो है बांगा मान जाकर के आपकी समस्या को समाधान भी पाओ और जुड़ा रहो लिटरेचर साहित्य पढ़ता रहो।
1: डॉक्टर ओम प्रकाश गढ़वाल प्रोफेसर उद्यान विज्ञान श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से आप कार्यक्रम के मायने पधारिया और सब्जियां में शारीरिक विकार और प्रबंधन ये विषय पर बहुत ही महत्व जानकारी दी इसके लिए आपको गणे मानसु धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
3: पुतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ
3: परम तो सभी डाले हैं
2: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच
2: है एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरा।

0: बहुत ही चौकी जानकारी दवाया प्रभु भाई। सब्जियों में शारीरिक विकार वहाँ का लक्षण और प्रबंधन का बारे में तो देखो जानकारी तो चौकी दवा दिया, तो इसके लिए देखो धन्यवाद के लिए एक चौको सुतान लोकगीत भी सुना दिया।
1: बिल्कुल सुनाओ
0: तो
1: सर।
0: मिलर सुना

0: हाँ तो राजू भाई, बहुत ही मीठी सी लोक रचना अपन सुनी,
1: बिल्कुल सर।
0: पण अब कहीं जानकारी है।
1: अब जानकारी है साहब मौसम की, तो देखो अबड़ा 5-4 दिन का मायन बादल वाई मौसम रेसी, राज को अधिकतम तापमान रियो 31 डिग्री, न्यूनतम रियो 26 डिग्री, और हल्की बरसात भी हुई कटे कटे, बादल सारे दिन बने रहा। तो अब आगे भी मौसम बरसात की संभावना है, बादल बने रहे।
0: बिल्कुल, मौसम की जानकारी के साथ देखो, आज के किसान वाणी को टेम है जो अठाई पूरा होने लाग रही, क्योंकि घड़ी सरोकरण लाग रही है कि आज का किसान वाणी ने अठाई आप विराम देवा। तो भाई लोग आज का कार्यक्रम सुन थे थका भाई प्रभु दयाल वर्मा,
1: और राजू चौधरी ने दो आज्ञा,
0: चालना और करा
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम
1: सा।
0: सा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 7:30 हो चुके हैं। आइए अब सुने कार्यक्रम चौपाल।

सांस्कृतिक कार्यक्रम, योग, राष्ट्रीय पर्व और सामाजिक गतिविधियां बच्चा में अच्छा संस्कार विकसित करने में की है बहुत ही अच्छी भूमिका जी की है बानी भावे। सगे किसान भाइयों, आपने समाज की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां बनाए जी। आपने समाज ने वो समझना चाहिए कि बेटी किसी हूँ कम को नहीं, बालिकाओं ने समान अवसर, सुरक्षित वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना आपने सारा को दायित्व है। अपने बाल विवाह, दहेज प्रथा, लैंगिक भेदभाव और शिक्षाओं वंचित राखण वर्गी कुरीतियों को विरोध करना चाहिए। गाँव में महिला स्वयं सहायता समूह, पंचायत, युवा मंडल और सामाजिक संगठन मिल गए बालिका शिक्षा खातर जागरूकता अभियान चला सके। जकूँ वे परिवार जका आपकी बेटियां ने उच्च शिक्षा दिलाई है, बांगी सफलता की कहानियां भी समाज खातर एक प्रेरणा बन सके। सागे आज के टाइम में कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल तकनीक शिक्षा को एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सों बनेड़ो है। जे बालिकाओं ने डिजिटल शिक्षा और तकनीकी ज्ञान मिलेगा तो वह आधुनिक रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता का नया अवसर प्राप्त कर सकेगी। डिजिटल साक्षरता बने आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बना सी। तो किसान भाइयों, इतिहास और वर्तमान में बहुत सारी महिलाओं ने आसिद करियो है कि अवसर मिलने पर बेटियां किसी भी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सके। इन खातर प्रत्येक परिवार आपकी बेटी ने शिक्षा ने सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। बालिका शिक्षा किसान भाइयों केवल एक परिवार को ही नहीं बल्कि पूरा राष्ट्र के विकास को एक प्रश्न है। शिक्षित और संस्कारी बेटियां स्वस्थ परिवार, सशक्त समाज और विकसित राष्ट्र को निर्माण करें। तो अपा सारा वो संकल्प लेवा कि हर बेटी ने शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और अच्छा संस्कार जगह है वह अपा प्रदान कर सा। तो किसान भाइयों, बातचीत अपा और कर सा। अब टाइम है एक भजन सुनने को, तो थाने सुनावा धर्मपाल भारती को गाइडो ओ भजन।

नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयान फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए

0: एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।
1: किसान भाइयों, फसल ने कीट और रोगों बचाण खातर किए क्या अपने कीटनाशकों का जो प्रयोग है वो करना पड़े, पर इंगो असंतुलित या अंधाधुंध उपयोग जो है वो किसान भाई या उपभोक्ता या अपना जो को पर्यावरण है बिंग सागे सागे माटी खातर बहुत ही हानिकारक साबित हो सके। तो आप बात करा कि कीटनाशकों को संतुलित उपयोग आप किया करा, तो किसान भाइयों कीटनाशक बी टाइम आप उपयोग करना चाहिए जब खेता में कीटों की संख्या आर्थिक हानि स्तरों ज़्यादा हो जावे। केवल कीट दिखाई देने पर तुरंत दवाई को छिड़काव करना सही कौन रहे। हमेशा किया कि जगह अपना कृषि विशेषज्ञ है बांगे द्वारा जगी अनुशंसित कीटनाशकों को अपने चयन करना चाहिए। दवाई की मात्रा, पानी की मात्रा, छिड़काव को टाइम लेबल पर देड़ निर्देशों के हिसाब में अपने करना चाहिए। और सागे किसान भाइयों, एक ही कीटनाशक को बार बार उपयोग अपने नहीं करना चाहिए। यूँ किया कि कीटा में प्रतिरोधक क्षमता की है विकसित हो जाए। इन खातर न्यारा न्यारा समूह का कीटनाशकों को बारी बारी अपने उपयोग करना चाहिए। दवाई को छिड़काव दिन का या शाम के टाइम अपने करना चाहिए जब हवा कम हो या तापमान की एक है थोड़ा सा कम भी हो जाए। तेज़ धूप या तेज़ हवा में छिड़काव करने की एक है दवाई को जो को प्रभाव है वो कम हो जाए। और किसान भाइयों, छिड़काव करते टाइम दस्ताना, मास्क, चश्मा और पूरा शरीर ढक्कन वाला कपड़ा अपने पहन लेना चाहिए। छिड़काव के बाद हाथ, चेहरों, कपड़ा के अच्छी तरह साबुनों अपने धो लेना चाहिए। फसल कटाइयों पहला किया कि दवाई गए प्रतीक्षा काल को अपने जरूर पालन कर लेना चाहिए, जिसको किया कि खाद्यान्न में हानिकारक अवशेष ना रह जावे। खाली कीटनाशक डब्बा बोतल को किया कि दोबारा घर में अपने उपयोग नहीं करना चाहिए, इन्हें सुरक्षित तरीकों में अपने नष्ट कर देना चाहिए। और किसान भाइयों, जड़ता ही संभव हो सके समेकित कीट प्रबंधन यानी IPM अपने बनाना चाहिए। यूँ किया कि जैविक नियंत्रण, फेरोमोन ट्रैप, प्रकाश प्रपंच, नीम आधारित उत्पाद और खेती संबंधी सही प्रबंधन के साथ आवश्यकता पड़ने पर रासायनिक कीटनाशकों को प्रयोग जो है वो करे जावे। तो किसान भाइयों, कीटनाशकों को संतुलित उपयोग ना केवल अपनी फसल की सुरक्षा करे बल्कि माटी, पानी, पर्यावरण और अपना जो स्वास्थ्य है बिंगी भी रक्षा करे। इन खातर किया कि सोच समझ के सही मात्रा में और सही टाइम पर अपने कीटनाशकों को प्रयोग जो है वो करना चाहिए। तो किसान भाइयों, बातचीत और कर सियाँ, बाजार भाव भी ऐड आया, वह भी थाना बता सियाँ, पर अब टाइम है एक लोक रचना सुनने को। तो थाना सुनावा सुलोचना खमीर की गाइडिया लोक रचना।

किसान भाइयों, आपां बात करा एक इसे विषय की जो को हर एक सब्जी उत्पादक किसान भाई खातर की है बहुत ही जरूरी हुए। आ है सब्जियां में कीट नियंत्रण। जे टेम रे तापा कीटांगों से ही प्रबंधन ना करा तो वह किए के फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों ने किए के गंभीर रूप में प्रभावित कर सके। और इन खातर आपा ने वो जानना जरूरी है कि सब्जियां में आपा कीट नियंत्रण किया करा। तो किसान भाइयों, आपने देश में टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, गोभी, लौकी, खीरा, बरगी बहुत सारी सब्जियां अपना किसान भाई उगावे और आम फसलों पर किया गया फल छेदक माहू, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, तेला, इल्ली और लाल मकड़ी वर्गा कई कीट किए गए आक्रमण करें। और टाइम पर जे नियंत्रण आप ना करा तो अपनी फसल को जो उत्पादन है वो 20 से लेके 60% तक किए गए बीमा कमी आ सके। तो बात करें आप प्रमुख कीटा की रबांगी पहचानगी, तो सर्वपहला बात करें फल और तना छेदक की। वो कीट किए गए बैंगन, टमाटर और मिर्च में किए गए ज़्यादा नुकसान पुगावे और इंगी सुंडियां तना और फला में किए छेद कर दिया जगह किए के फल अपना सड़न लाग जाए। बात करा माहू की, जिकन अपना एफिड भी कहाँ, ए छोटा छोटा हरिया और काला रंगा कीट पौधांगो रस चूसे अंग प्रकोपों किए के पत्तियां मुड़ जाए और पौधा कमजोर हो जाए। सफ़ेद मक्खी बात करा तो ए पत्तियां को रस चूसन का सागे सागे कई विषाणु रोग भी फैला देवे। बात करा थ्रिप्स की तो ए कीट किए के पत्तियां और फूलों ने नुकसान पुगावे जगह किए के पौधे की वृद्धि प्रभावित हो जाए। सब्जियां में कीट नियंत्रण खातर किए किसान भाइयों, केवल रासायनिक दवाओं पर भी अपने निर्भर रहना ज़्यादा उचित को नहीं। अपने एकीकृत कीट प्रबंधन सारों प्रभावी और सुरक्षित तरीकों है जिसको अपने अपनाना चाहिए। सागी किए के कई सांस्कृतिक उपाय वह अपनाना चाहिए। इनमें स्वस्थ और प्रमाणित बीज को अपने उपयोग करना चाहिए। टाइम पर किए के बुआई करनी चाहिए। सागी खेत में नियमित रूप में अपने निगरानी करनी चाहिए और जे खरपतवार हो तो बिना टाइमो टाइम पर हटाता रहना चाहिए। सागी जगह संक्रमित पौधा है और फल है बने पने नष्ट कर देना चाहिए। यांत्रिक उपाय की बात करा तो कीटग्रस्त पत्तियां और फलाना तोड़ गया पने नष्ट कर देना चाहिए। फेरोमेन ट्रैप और पीला चिपचिपा ट्रैप अपन लगाना चाहिए। प्रकाश प्रपंच जिकन अपन लाइट ट्रैप का भी उपयोग करना चाहिए। जैविक उपाय की जो बात करें किसान भाइयों, तो नीम आधारित कीटनाशकों का अपन प्रयोग करना चाहिए। ट्राइकोगामा बरगाज का मित्र कीटांग उपयोग अपन करना चाहिए। सागी ब्यूवेरिया पेसियाना और वर्टिसिलियम वर्गा जैविक उत्पादों को अपने उपयोग करना चाहिए। रासायनिक उपाय की जो बात करें किसान भाइयों, तो जरूरी होने पर क्या है अपन अनुशंसित कीटनाशकों को ही उपयोग करना चाहिए। दवाई ने सही मात्रा और टाइम पर क्या है प्रयोग करनी चाहिए। एक ही दवाई ने अपना बार बार उपयोग नहीं करनी चाहिए। दवा छिड़काव के टाइम के सुरक्षा उपकरण जो है वह अपन आपके कन्ने रखना चाहिए। और किसान भाई अपना जगह है वह सप्ताह में कम से कम किए गए 2 बार खेत में फसल को निरीक्षण जरूर करें। शुरुआती अवस्था में जो कीट अपन नियंत्रित कर लेना चाहिए, साथ ही संतुलित

उर्वरक प्रबंधन अपन अपना लेना चाहिए। सिंचाई को भी अपन किए गए सही प्रबंधन करना चाहिए। दवाई खरीदते टाइम किए गए अधिकृत विक्रेताओं अपन खरीदनी चाहिए और पक्की रसीद की है बाले लेनी चाहिए। तो किसान भाइयों, सब्जियों में कीट नियंत्रण खातर किया टेमो टाइम पर पहचान, नियमित निगरानी और एकीकृत कीट प्रबंधन अपनाना बहुत ही जरूरी है। यूं कि अपनी फसल उत्पादन बढ़ेगो, सागी लागत कम हो सी, अच्छी गुणवत्ता वाली अपन सब्जियां प्राप्त हो सी। तो किसान भाइयों, आम बात अचीत आगे सागई, अब सुना दें थाने सहनाज को गायडो वो गीत और बिंग बात थाने बाजार भाव में बतावांगा।

किसान भाइयों अपना कहना है बाज़ार भाव भी ऐड है तो बाकी बात कर लें आप। तो सर पहला बात करा सूरतगढ़ अनाज मंडी के भाव की, तो अठे सरसों का भाव रहा 7,609 रुपया प्रति क्विंटल, कणक का भाव रहा 2,581 रुपया प्रति क्विंटल, ग्वार का भाव रहा 5,500 लेके 5,860 रुपया प्रति क्विंटल। श्रीगंगानगर अनाज मंडी के भाव की बात करा तो सरसों का भाव रहा 6,200 लेके 8,095 रुपया प्रति क्विंटल, कणक का भाव रहा 2,125 लेके 3,041 रुपया प्रति क्विंटल, ग्वार का भाव रहा 5,625 लेके 5,985 रुपया प्रति क्विंटल, चना का भाव रहा 5,400 लेके 5,775 रुपया प्रति क्विंटल, जौ का भाव रहा 2,520 रुपया प्रति क्विंटल, सगई मूंग का भाव रहा 5,301 रुपया प्रति क्विंटल। श्री विजयनगर अनाज मंडी के भाव की बात करें तो कणक का भाव रहा 2,500 लेके 2,780 रुपया प्रति क्विंटल, सरसों का भाव रहा 7,565 लेके 7,633 रुपया प्रति क्विंटल, और अठग्वार का भाव रहा 5,800 रुपया प्रति क्विंटल। जैसर अनाज मंडी के भाव की बात करें तो सरसों का भाव रहा 7,373 लेके 7,509 रुपया प्रति क्विंटल, कणक का भाव रहा 2,530 लेके 2,740 रुपया प्रति क्विंटल, और गदसिंहपुर अनाज मंडी के भाव की बात करें किसान भाइयों तो कणक का भाव रहा 2,480 लेके 2,712 रुपया प्रति क्विंटल, जो का भाव रहा 2,350 रुपया प्रति क्विंटल, सरसों का भाव रहा 6,813 लेके 8,051 रुपया प्रति क्विंटल, और चना का भाव रहा 5,180 लेके 5,690 रुपया प्रति क्विंटल, ग्वार का भाव रहा 5,728 लेके 5,750 रुपया प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों आज को टाइम ही तो ही वेद भाई ने देव आ गया, राम राम सा राम राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा ग्रामीण दैनिक कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, एफएम 100.1 मेगा हर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। अब आप थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे संसद समीक्षा, कृपया रेले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर आज भी अड़े रहे। इस कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित रही। हंगामे के बीच सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुई अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। इससे पहले पूर्वान 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल की कार्यवाही को शुरू करना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच कुछ सदस्य अपनी सीटों से बाहर आ गए। हालांकि सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से उनकी सीटों पर लौटने का कई बार आग्रह किया। हंगामे के बीच ही शून्यकाल के दौरान भाजपा के राघव चड्ढा ने डॉक्टरों को डायग्नोस्टिक केंद्रों द्वारा कथित तौर पर कमीशन राशि दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए इस पर रोक लगाने और मरीजों के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव बीडा ने सरकारी विभागों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 27% आरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर तक पहुंच नहीं पाया है। भारतीय जनता पार्टी के सदानंद महालू शेठ तानवड़े ने कहा कि गोवा में वर्ष 2012 में खनन गतिविधियां बंद होने के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ ही हजारों परिवारों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने केंद्र से खनन क्षेत्र को स्थायी और पारदर्शी तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए लगातार हंगामा करते रहे। सभापति ने उनसे अपने स्थानों पर लौट जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन पर आपत्ति जताई। श्री रिजिजू ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हर दिन कुछ लिखकर लाते हैं और सदन में उसे पढ़ते हैं। इस पर कांग्रेस सदस्यों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति देने की मांग की। जब सभापति ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर फिर हंगामा शुरू कर दिया। इन सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति देने की मांग की। सभापति ने कहा कि विपक्षी सदस्य शांत रहेंगे तो वो पूरक प्रश्नों के बाद नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने की अनुमति देंगे। सदस्यों के शांत होने के बाद सभापति ने नेता प्रतिपक्ष खड़गे से अपनी बात रखने को कहा। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा रहा कि गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर अपना वक्तव्य दें। श्री खड़गे ने संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि सदन में अपनी बात रखना उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि कब बोलना है, क्या बोलना है, ये तय करना उनका अपना अधिकार है और इसके बारे में उन्हें अब क्या संसदीय कार्य मंत्री से पूछ

पूछना होगा। नेता प्रतिपक्ष ने आसन से कहा कि गृहमंत्री को सदन में आने और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाए। उन्होंने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं। इस पर सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से गृहमंत्री को विपक्ष की भावनाओं से अवगत कराने को कहा। हंगामे के बीच सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को दोहराया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि एक महत्वपूर्ण विधेयक को पेश किया जाना है, इसलिए सदन में व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण उन्होंने 1 मिनट के भीतर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक के लिए स्थगित कर दिया। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:45 पर राज्यसभा की बैठक शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक पर चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं को उठाया। तृणमूल कांग्रेस के बाबुल सुप्रियो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीजू जनता दल की सुलता देवी, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, ऑल इंडिया अन्ना डीएम के सदस्य डॉक्टर एम थंबी दुरई, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सिकंदर कुमार, महेंद्र भट्ट, डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, डीएमडीके सदस्य एल के सुधीश और मनोनीत सदस्य सतनाम सिंह संधु ने भी हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगे 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। विधेयक का उद्देश्य भारत की संचित निधि से उन खर्चों के लिए धन निकालने की खातिर मंजूरी देना है जो व्यय 31 मार्च 2023 को खत्म हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ खास सेवाओं पर और उस साल के लिए मंजूर रकम से अधिक किए गए थे। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक कल 11 बजे होगी। और लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारालूल हक। लोकसभा ने आज कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा न हो सकी। विधेयक का उद्देश्य विश्वसनीय नीतिगत व्यवस्था और प्रक्रियागत निश्चितता उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करना तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने पिछले कई दिनों की तरह आज भी सदन में हंगामा जारी रखा, जिससे लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र की शुरुआत से ही सदन में एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सदन की कार्यवाही सवेरे 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और फिर सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य

सदस्य सदन में हंगामा करने लगे। समाजवादी पार्टी के सदस्य जहां अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठा रहे थे, वहीं कांग्रेस सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग को दोहराते हुए हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को चलना चाहिए, सदन में चर्चा और संवाद होना चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि रोजाना नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना सदन की गरिमा को गिराता है, ये अच्छी परंपराएं नहीं है। उन्होंने कहा कि देश आपके आचरण को देख रहा है। शोर शराबा न थमने पर अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 फिर शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा उसे पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रख दिया। पीठासीन अध्यक्ष संध्या रॉय ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने और कार्रवाई चलाने में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि आपका ये व्यवहार उचित नहीं है, ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हंगामा न थमने पर पीठासीन अध्यक्ष ने बैठक शुक्रवार सुबह 11 तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। विपक्ष के हंगामे के कारण कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा न हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एनके प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने के राधाकृष्णन, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और प्रेमचंद्रन सहित कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। इस विधेयक में फंड मैनेजरों के भारत आने को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि विदेशी निवेश को भारत में कारोबार में लगा पैसा नहीं माना जाएगा। ये विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान कानूनी प्रावधान को हटाना है, जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR को लागू करने से रोकता है। RTGS और NEFT के जरिए होने वाले रियल टाइम भुगतान के लिए सेवा शुल्क देना पड़ता है। हालांकि UPI लेन देन को ऐसे शुल्क से अभी छूट प्राप्त है। संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव कराधान से जुड़े एक बड़े कानून का हिस्सा है। कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर कम शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं तथा भुगतान अवसंरचना कंपनियों के लिए एक टिकाऊ राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है, जो डिजिटल भुगतान व्यवस्था को संचालित करती हैं। विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 10A बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर शुल्क लगाने से रोकती है। वहीं आयकर अधिनियम की धारा 269SU के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले बड़े व्यवसायों के लिए रुपे डेबिट कार्ड और भीम UPI QR कोड सहित कुछ निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान स्वीकार करना अनिवार्य है। वर्तमान में कोई भी बैंक या भुगतान प्रणाली प्रदाता आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269SU के निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए किसी पर भी सीधे या परोक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लगा सकता। इसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। इन हमलों में तत्काल

0: एक लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि लाखों लोग गंभीर रूप से घायल और विकिरण के शिकार हुए थे। राष्ट्रीय स्तर पर स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन की निगरानी मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति द्वारा की जाती थी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 326.79 अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 8:15 हो चुके हैं। आइए अब सुने कार्यक्रम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं की सेवा में आज नमस्कार जसवीर सिंह की तरफ से। श्रोताओं, कार्यक्रम का ये गीत की धुन आपने सुनते निश्चित रूप से आपने जान लिया होगा, फिल्म साजन का ये गीत। और आज हम फिल्म साजन का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं या साजन फिल्म से गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उसका कारण सबसे बड़ा ये कि दोस्तों, इस फिल्म के संगीतकार नदीम शरवन, ये प्रसिद्ध फिल्मों की संगीतकार जोड़ी, और इसमें नदीम अख्तर सैफी का आज जन्म 6 अगस्त 1954 को हुआ, और इन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, इन्हीं के लिए, इसी के लिए आज ये साधन फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। मगर इस फिल्म से हम जो बातचीत है उसकी हम बात करेंगे। और 1991 में इस सदाबहार फिल्म के जिसने प्रेम, दोस्ती और त्याग की कहानी से करोड़ों दिलों को छू लिया, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साजन फिल्म की। दोस्तों, साजन उस दौर की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी जिनकी कहानी इतनी भावुक थी कि उतना ही शानदार उसका संगीत था। यही वजह है कि रिलीज के 3 दशक बाद भी इस फिल्म के गीत आज भी रेडियो, टीवी और संगीत प्रेमियों के लिए पसंद बने हुए। फिल्म में 3 बड़े सितारे एक साथ नजर आए, और एक तरफ थे गंभीर संवेदनशील किरदार निभाने वाले अभिनेता और दूसरी ओर थे अपने रोमांटिक अंदाज के लिए मशहूर सितारे, और इन साथ थी खूबसूरत अभिनेत्री, और जिन्हें अपने सहज अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। और तीनों कलाकारों ने शानदार केमिस्ट्री से फिल्म बनी सबसे बड़ी ताकत। और दोस्तों, आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत, आवाज़ SP बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक की

जी हाँ दोस्तों, साजन का संगीत उस समय साल का सबसे लोकप्रिय फिल्मी संगीत माना गया और फिल्म के लगभग सभी गीत सुपरहिट साबित हुए। इन गीतों की मधुर धुनों और भावपूर्ण बोलों ने फिल्म की लोकप्रियता को कई गुना बढ़ा दिया। आज भी जब भी ये गीत बजते हैं तो पुरानी याद दिनों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। फिल्म की एक और खास बात थी इसका भावनात्मक कथनातक, और इसमें प्रेम के साथ साथ दोस्ती और त्याग को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया। यही कारण है कि दर्शकों ने इसे सिर्फ रोमांटिक फिल्म नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाली एक कहानी के रूप में अपनाया। रोचक बात यह भी है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान कलाकारों के बीच बेहद अच्छा तालमेल था, जिसका असर पर्दे पर साफ दिखाई देता है। यही सहजता फिल्म के दृश्यों को और भी प्रभावशाली बनाती है। साजन ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की। वर्ष 1991 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रही। फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों का दोनों का भरपूर प्यार मिला। इनके संगीत, अभिनय और निर्देशन की आज भी मिसाल दी जाती है। दोस्तों, समय बदलता है, तकनीकी बदलती है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो हर पीढ़ी के दिल में अपनी जगह बना लेती है। साजन फिल्म भी उन्हीं फिल्मों में से एक है। इसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्तों को नींव, विश्वास, सम्मान और त्याग पर टिकी होती है। तो दोस्तों, अगर आपने साजन को वर्षों से नहीं देखा है तो एक बार इसे देखिए जरूर। इनके गीतों को सुनिए, यकीन मानिए ये फिल्म आज भी उतनी ही ताजगी और भावनाओं का एहसास कराती है जितना अपनी रिलीज के समय कराती थी।

श्रोताओं, इस फिल्म में कलाकारों ने अपने अभिनय से किरदारों को जीवंत बना दिया। अमन के रूप में गंभीरता और संवेदनशीलता, आकाश के रूप में जीवंतता और दोस्ती का जज्बा, तथा पूजा के रूप में सादगी और भावनाओं की गहराई, इन सब ने मिलकर साजन को यादगार बना दिया। साजन हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्यार केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने का नाम है। वहीं सच्ची दोस्ती वही है जहां स्वार्थ नहीं, बल्कि समर्पण और विश्वास हो। इसी खूबसूरत संदेश के साथ आज की ये फिल्मी कहानी का ये अंतिम गीत हम आपको सुनवा देते हैं, और सुनते हैं ये गीत

श्रोतो, आज का ये कार्यक्रम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत अब समाप्त करने की अंतिम क्षणों में। और दोस्तों, इस फिल्म के लिए जैसे कि हमने आपको बताया कि इस फिल्म का चयन करने का मुख्य कारण इनके संगीतकार नदीम शरवन, जो संगीतकार जोड़ी है, प्रसिद्ध जोड़ी है, उसमें नदीम अख्तर सैफी का जन्म आज यानी 6 अगस्त 1954 को हुआ था। तो उनकी जन्मदिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और कार्यक्रम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत समाप्त करने अपने दोस्त जसवीर सिंह को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

मीडियम 15.26.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, DRM चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया भारती
1: और मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर खबर के साथ, जिसमें हम आपको देंगे हर मैच का अपडेट, हर मैच का हाल और जया हर खिलाड़ी की खबर भी।
0: बिल्कुल, तो आज हमारे पास खेल के पिटारे में बहुत कुछ है, चाहे वो मैदान पर देश का मान बढ़ाने वाली हमारी राष्ट्रीय शान हॉकी की बात हो या फिर बैडमिंटन कोर्ट की रफ्तार। तो शुरू करते हैं आज के स्पोर्ट्स स्कैन का सफर और नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर।
1: तन्वी शर्मा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गार्गा की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंची।
0: विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत की अमानत कंबोज ने डिस्कस थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। वहीं आशीष यादव और टी धरणीधरन ने पुरुषों के जेवलिन थ्रो फाइनल में जगह पक्की की।
1: भारतीय हॉकी टीम चीन में होने वाले AFL जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की गई है। उधर जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा और मध्य प्रदेश ने फाइनल में जगह बनाई।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में छठी राष्ट्रीय सांसद बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। श्री रिजिजू ने बताया, अगले खेलो इंडिया खेलों की मेजबानी तेलंगाना करेगा।
1: और अरुणाचल प्रदेश को एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी मिली।
0: तो शुरुआत करते हैं कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट से। जैसा कि हमने आज के कार्यक्रम के शुरुआत में ही बताया कि बैडमिंटन कोर्ट की रफ्तार पकड़ चुकी है हमारी टीम, तो कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में भारत की 17 साल की तन्वी शर्मा का शानदार प्रदर्शन जारी है। पिछले सप्ताह ताइपे ओपन सुपर 300 का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली तन्वी ने अब कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने अपनी ही देश की श्रेयांशी वल्ली शेट्टी को हराया।
1: जी हाँ, और अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अब जो तीन भारतीय खिलाड़ी हैं वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। हालांकि प्रतियोगिता में अनमोल खरब का सफर समाप्त हो गया है। पूरे मैच का हाल जानने के लिए जया सुन लेते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की एक खास रिपोर्ट।
2: अनमोल खरब को प्री क्वार्टर फाइनल में वियतनाम के ओलंपियन वू थी ट्रांग के खिलाफ हुए कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अनमोल ने इस मैच को 23-21, 15-21, 21-18 से गंवाया। इस हार के साथ ही प्रतियोगिता में उनका सफर समाप्त हो गया। हालांकि शुरुआती गेम में अनमोल ज्यादातर समय नियंत्रण में थी, लेकिन उन्होंने 4 गेम पॉइंट गंवा दिए, जिससे वू थी ट्रांग को शुरुआती बढ़त लेने का मौका मिल गया। इसके बाद अनमोल ने दूसरे गेम में जोरदार वापसी की। हालांकि निर्णायक गेम में वो वापसी नहीं कर सकी और वू थी ट्रांग ने मुकाबला जीत लिया। उधर दूसरे क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा ने श्रेयांशी वलीशेट्टी को हराकर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। शुरुआती गेम में पीछे चल रही तन्वी ने जोरदार वापसी की और कई पॉइंट्स लेकर पहला गेम अपने नाम किया। श्रेयांशी वलीशेट्टी ने दूसरे गेम में वापसी की। हालांकि निर्णायक गेम में तन्वी ने शुरू से ही नियंत्रण बनाए रखा और 21-16, 17-21, 21-13 से मैच जीत लिया। इसके अलावा अश्मिता ने मेजबान कोरिया की किम मिन जी को जबकि जापान की मनामी सुइजू को पराजित किया। महिला डबल्स में आज भारत की रितिका ठाकर और सोनाली सिंह का सफर समाप्त हो गया। प्री क्वार्टर फाइनल में उन्हें नकार्डे और ताकाहाशी की जापानी जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स में प्री क्वार्टर फाइनल में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गारागा की जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की जोड़ी को पराजित किया। ऐसे में अब सबकी नजरें कल होने वाले महिला सिंगल्स और पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल पर होंगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: जी हाँ, ये रिपोर्ट हमने सुनी। और अगर जया हम एक नजर डालें

0: तन्वी शर्मा के करियर पर, तो
1: बिल्कुल
0: 2026 में ताइपे ओपन सुपर 300 का खिताब उन्होंने जीता था। इसके अलावा 2025 में डेनमार्क चैलेंज की वो विजेता रही हैं, 2025 में ओडिशा मास्टर्स सुपर 100 में उप विजेता थी, 2025 में ही गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 में वो उप विजेता थी, 2024 में बॉन इंटरनेशनल का खिताब जीता, 2024 में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का वो हिस्सा रही है। इसके अलावा जूनियर विश्व चैंपियनशिप में वो सिल्वर मेडल भी जीती थी। तो तन्वी शर्मा, जो कि अभी 17 साल की उम्र में उन्होंने जिस तरह का शानदार प्रदर्शन किया है पूरे मैच में, वो काबिल-ए-तारीफ है जया।
1: बिल्कुल। और जिस तरह से वो कोर्ट में अपनी गजब की फुर्ती, तेज मूवमेंट हो या फिर जो आक्रामक स्मैश होता है,
0: जी
1: उनके लिए ही वो जानी जाती है। और जब कल उनका सामना रक्षिता रामराज से ही होगा, जो कि हमारे ही देश की हैं, तो समय देखने वाला होगा, क्योंकि रक्षिता भी काफी कड़े टक्कर दे चुकी हैं। अगर हम बेहद दबाव वाले क्षणों की बात करें, तो उसमें भी रक्षिता ने बहुत नियंत्रण के साथ, बहुत शांति के साथ अपनी
0: जी
1: प्रतियोगिता को कंप्लीट किया है। तो देखते हैं कि कल की नजरें महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा और रक्षिता रामराज के बीच होगी। और अगर हम दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले की बात करें, तो अश्मिता चाहिला का सामना जापान की हीना अकेची से होने वाला है।
0: बिल्कुल। और अगर पुरुष डबल्स की अगर हम बात करें, इसके क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गारगा जो है, ये जोड़ी मलेशियाई जोड़ी से कल अपना दमखम दिखाएगी। इससे पहले आज प्री क्वार्टर फाइनल का मैच भी इन्होंने शानदार तरीके से जीता और अब इन्होंने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की करी है। तो हम सबकी नज़र अब कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर लगी होगी।
1: बिल्कुल, देखते हैं कल का मैच कैसा होता है।
0: भारत की अमानत कंबोज ने आज इस सीजन का अपने सबसे अच्छा थ्रो करते हुए अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं के डिस्कस थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अमानत जेवलिन थ्रो फाइनल में जगह बनाने वाली तीसरी भारतीय हैं। उनसे पहले आशीष यादव और टी धरणीधरन पुरुषों के जैवलिन थ्रो फाइनल में जगह बना चुके हैं। तो जया, जिस तरह का प्रदर्शन किया है इंडियन एथलीट्स
1: एथलेटिक्स
0: ने,
1: ने,
0: वो
1: बिल्कुल।
0: बहुत गजब की बात है।
1: तो सुनते हैं इस जानकारी के लिए और अधिक जानकारी के हमारे एक विशेष डेस्क से एक विशेष रिपोर्ट।
2: मई 2026 में 52.24 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ एशियन अंडर 20 का गोल्ड मेडल जीतने वाली अमानत ने क्वालिफिकेशन राउंड में 52.58 मीटर का थ्रो किया, जिसके साथ अमानत दुनिया की बेहतरीन अंडर 20 थ्रोअर्स में छठे स्थान पर रही। महिलाओं का डिस्कस थ्रो फाइनल शनिवार को होगा। इससे पहले आशीष ने 69.87 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान पर रहे, जबकि धरणीधरन ने 68.07 मीटर का थ्रो करते हुए अपने ग्रुप से फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पुरुषों के 800 मीटर दौड़ में मोगली वेंकटराम ने अपने हिट में तीसरा स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले टीम ने सीजन का अपना सबसे अच्छा समय निकाला, लेकिन टॉप 9 में शामिल ना हो पाने के कारण फाइनल में जगह नहीं बना सकी। ओरेगन के हेवर्ड फील्ड में 5 से 9 अगस्त के बीच आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में भारत की 36 सदस्य ट्रैक और फील्ड टीम हिस्सा ले रही है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: जी हाँ जया, अमानत ने आज जिस तरह का प्रदर्शन किया, वो पंजाब से आती हैं और 2026 में उन्होंने एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 52.24 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था और भारत की पहली एशियाई जूनियर चैंपियन बनी। इसके अलावा उन्होंने अगस्त 2026 में वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में भी अपना स्थान पक्का किया था। तो इसलिए सबकी जो नज़रें हैं वो अमानत पर लगी हुई हैं।
1: बिल्कुल, अमानत एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड वाली खिलाड़ी है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जो हम बाकी की बात कर रहे हैं, आशीष यादव की भी बात कर रहे थे, टी धरणीधरन की भी बात कर रहे हैं, जो जेवलिन थ्रो के फाइनल में जगह बना चुके हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं और हमारे देश के खिलाड़ी हैं, तो हमारा पूरा समर्थन है इनको। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि साउथ अफ्रीका के जो अंडर 20 जेवलिन चैंपियन जॉन हेनरी हेमेंस हैं, उन्होंने यूजीन में शानदार शुरुआत करते हुए अपने पहले ही थ्रो में 76.02 मीटर के साथ एक क्वालिफाइंग मार्क मार्क हासिल किया और हेमंस के पीछे जो तीन एथलीट्स थे उन्होंने 69 मीटर से ज्यादा का थ्रो किया, जिसमें हमारे भारत के आशीष, पोलैंड के अलेक्जेंडर वेजना और चीन के यांग झाओई

0: की तारीफ की तो अपने श्रोताओं को बता दें कि प्रतियोगिता इसी नदी पर आयोजित होगी। यह सियांग नदी की सहायक नदी और बोलिंग की सियांग घाटी से होकर बहती है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैंट में इसी समय फिर आपसे मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए जया और सिद्धार्थ को।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
2: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
1: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा।
2: आज का दूसरा बड़ा फैसला है, असम में एक हाईवे पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, यह है बायता चेरियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहां से लेके तेजपुर तक। ये 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। किसानों, सहकारी समितियों, लघु और मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों तथा ग्रामीण उद्यमों को इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों

0: को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। जम्मू कश्मीर के संबंध में सदस्यों की चिंताओं पर वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की है।
1: आर्टिकल 370 गेटिंग अब्रोगेटेड।
2: अनुच्छेद 370 का निरसन इस बात को सिद्ध करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा सहयोग और संरक्षण मिले, क्योंकि हम सभी एक ही देश का हिस्सा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की

0: भिन्न अंग है जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा सहयोग और संरक्षण मिले क्योंकि हम सभी एक ही देश का हिस्सा हैं।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में कई बार व्यवधान आया।
2: लोकसभा की कार्यवाही दो बार और राज्यसभा की कार्यवाही तीन बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका, जबकि राज्यसभा में इन्हें कुछ समय के लिए ही संचालित किया जा सका। हंगामे के बीच लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। इस विधेयक में संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रावधान है। उधर राज्यसभा ने चर्चा के बाद विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को पारित कर लोकसभा को लौटा दिया। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग की थी। यह राशि मुख्य रूप से ऋण के पुनर्भुगतान पर खर्च की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इजराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही।
3: 19 लाख हाउसहोल्ड्स आर रिसीविंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल।
4: 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
3: मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
1: ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।
5: ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके उसकी चिंता करते हैं।
1: 2 दिन का ब्रिक्स वेब्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
6: सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार ने आज कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार का उद्देश्य वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां परियोजनाओं, भागीदारी तथा को प्रोडक्शन के नए मार्ग उजागर हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने के लिए प्रभावी साबित होगा। ईशारानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी

0: मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड विधानसभा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं।
1: छात्रों का आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार की ओर से गतिरोध समाप्त करने की गंभीर कवायद शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर चार मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके जवाब में छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की गई है, जो सीधे सरकार के मंत्रियों के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने आज झारखंड विधानसभा के भीतर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के विधायकों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: उधर केरलम के तिरुवनंतपुरम में भाजपा युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा। सरकार ने आज बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मेजबान सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अभियान ने 5 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं और ये एक जन आंदोलन में बदल गया है। ये राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को दर्शाता है। हर घर तिरंगा अभियान इस महीने की 9 से 17 तारीख तक चलाया जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 374 अंक बढ़कर 78,955 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंक की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ। और अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 95.22 रुपए पर बंद हुआ।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले एक दशक में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जबरन गायब किए जाने, अत्यधिक बल प्रयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक और कब्जे वाले क्षेत्र में जवाबदेही की कमी पर बार बार चिंता व्यक्त की है। 27 जुलाई को POJK में तथाकथित विधायी चुनावों के पहले दिन रावलकोट में हिंसक झड़प हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने श्रेयांशी बलिशेट्टी को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9.

आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रही हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं चंदन दास। आइए सुने इन्हीं की आवाज़ में ये पहली गज़ल।

सुगम संगीत कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं चंदन दास।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत और आज के कलाकार थे चंदन दास। हम आकाशवाणी की कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से काउंट्री वाइड इनसाइट।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए बाढ़ प्रबंधन और मॉनसून की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के प्रभावी उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
1: नमस्कार, कंट्री वाइड कार्यक्रम लेकर मैं मनोज पाठक हाजिर हूँ। मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है और कुछ स्थानों पर तो इतनी बारिश हुई और स्थितियां विकट हो चली हैं। ऐसे में बाढ़ और मॉनसून की चुनौतियां कैसे हम अपने नुकसान को न्यूनतम करें और कठिन आपदा से किस तरह उबरें, इसी विषय पर आज हम इस अंक में मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। अपनी चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के जाने माने इस क्षेत्र के आपदा विशेषज्ञ प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी को। प्रोफेसर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि मॉनसून की प्रवृत्तियों में हम एक बदलाव पिछले कुछ समय से देख रहे हैं। कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़ पहले भी आती थी, लेकिन अब की बाढ़ और अब की सुखाड़ दोनों ही स्थितियां चिंताजनक हो जाती हैं। खास तौर से अभी जो देश के कई प्रदेशों में कई स्थानों पर जो बारिश की बौछारें हुई हैं उनसे बाढ़ की आपदा आ गई है, उनसे निपटने के लिए हमारी क्या सब तैयारियां हैं, पहले तो हम यही समझना चाहेंगे, और कैसे हम अपने नुकसान को कम कर सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में, इस पर चर्चा की शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे हम।
2: इस विषय में आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हर साल मानसून में बारिश काफी ज्यादा मात्रा में जब होती है तो कई आपदाएं घटित होती हैं, और इसके लिए हम पहले से पूर्व तैयारी करते हैं। जून के महीने में सभी स्टेट्स जो हमारे हैं उनके रिलीफ कमिश्नर्स की केंद्रीय सरकार द्वारा एक मीटिंग गठित की जाती है, और उसमें ये सब चर्चा की जाती है कि आने वाले मौसम के क्या पूर्व अनुमान है और उसकी वजह से किस किस तरह की आपदाएं घटित हो सकती हैं जिसके लिए हमें तैयार रहना है और निपटना या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो पहली तो तैयारी हमारी यही होती है कि मौसम विभाग हमें पूरे मानसून सीजन का जो भी सूचना देता है कि आने वाला इस बार का मानसून कैसा रहेगा, उसको ध्यान में रखते हुए पूर्व तैयारियां की जाती हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी आपदाएं संभावित हैं और उसके लिए किस तरह की तैयारियों की जरूरत है। एक तो ये विभाग संबंधित तैयारियां हो जाती हैं जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग देखता है। दूसरी तरफ जनता की तैयारी भी, जन समुदाय की तैयारी भी बहुत जरूरी है। तो जनता को भी ये संदेश दिया जाता है कि समय समय पर कैसा मौसम होने वाला है, उसका क्या पूर्वानुमान है। जो हमारा भारत मौसम विभाग है वो हर हफ्ते अपनी मौसम की पूर्वानुमान की जो भी चेतावनियां होती हैं वो जिला प्रशासन और पब्लिक के साथ भी अपनी वेबसाइट के जरिए शेयर करता है। उन्होंने कुछ अपनी मोबाइल एप्स भी बनाई हैं, जैसे मौसम है, मेघदूत है, दामिनी है, जिनके जरिए भी ये सूचनाएं आपके मोबाइल तक पहुंचती हैं, जिसके जरिए आप ये जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि विभागों को तैयार करना और उचित संसाधन उपलब्ध कराना और सबकी जो है जिम्मेदारी तय करना कि कौन क्या करेगा, और इसके साथ ही हमारा जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होता है उसको भी तैयार रखा जाता है 24/7 365 days कि कोई भी ऐसी आपदा की सूचना मिलने पर तुरंत कार्यवाही की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जीवन रक्षा की जा सके। तो इसमें सब तरह के उपाय किए जाते हैं, ना सिर्फ ह्यूमन लाइफ के लिए, इवन लाइफ स्टॉक भी जो रिस्क पे होता है उसको और वाइल्ड लाइफ को भी बचाने की कोशिशें की जाती हैं।
1: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे प्रोफेसर साहब कि हाल के दिनों में अपेक्षाकृत अन्य विकसित देशों से यदि हम तुलना करें अपने यहाँ, तो आपदा प्रबंधन लाखों लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेज गति से सुरक्षित बचा लिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ कहाँ कमियां रह जाती हैं जहाँ पर कि हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
2: देखिये, जहां तक मौसम के पूर्व अनुमान का सवाल है उसमें काफी तकनीकी तौर पर तरक्की की गई है। बहुत सारे डॉपलर वेदर रडार जो स्थानीय मौसम की सूचना हमें अच्छे तौर पर दे सकते हैं, जिस पे रिलाई किया जा सकता है, का उपयोग किया जा रहा है। परंतु उसके बावजूद भी जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर ज्यादातर क्लाउड बर्स्ट, लाइटनिंग, भूस्खलन या बाढ़, त्वरित बाढ़ जैसी आपदाएं होती हैं, वहां पर ये काफी मुश्किल होता है जानकारियां सही तरीके से हासिल करना। हालांकि हम कई मल्टी मॉडल्स को यूज करते हैं, उसके बावजूद भी सही सूचना कई बार सही

0: सतह पर नहीं मिल पाती है। तो इसमें सबसे बड़ा ये होता है कि पहले तो अगर सूचना है तो जैसा आपने बताया रिक्तिकरण करते हैं हम कि जो भी आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं वहां से जो लोग उसमें फंस सकते हैं उनको पहले निकाल लिया जाता है। परंतु उस सब के बावजूद भी कई आपदाएं ऐसी होती हैं जिसमें लोग फंस जाते हैं और उसमें कैजुअलिटीज भी हो जाती हैं। तो उस समय में हमारे पास एक गोल्डन आवर्स या पीरियड का टाइम होता है जिस समय में सबसे ज्यादा जानें बचाई जा सकती हैं। भूस्खलन हो, बाढ़ हो, इसमें बहुत कम समय हमें गोल्डन आवर्स के टर्म में मिलता है जब ज्यादा से ज्यादा जानें बचाई जा सकती हैं। इसका दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि ये आपदाएं ऐसे क्षेत्रों में होती हैं जो दुर्गम गामी होते हैं जहां पर पहुंचना बहुत कठिन होता है। वहां का ग्रेडियंट स्टीप होता है, वहां का एल्टीट्यूड हाई होता है और वहां पर जो आने जाने की व्यवस्थाएं हैं वो भी सीमित होती हैं। तो इस वजह से कई बार हम लोगों को एयर ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं रेस्क्यू में, इवैक्यूएशन में, और कई बार हम लोग जो स्थानीय टीम है जो हमारी स्टेट लेवल की भी आपदा मोचन बल होती है, जैसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है एनडीआरएफ की टीम, ऐसे एसडीआरएफ भी गठित की गई है और डिस्ट्रिक्ट को भी कहा गया है कि आप अपनी भी क्विक रिस्पॉन्स टीम्स बनाइए। अब ऐसे में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो हम पानी का अनुमान तो लगा रहे हैं परंतु उसके साथ जो मलबा आता है उसका अंदाज नहीं लगा पाते हैं और मलबा कटाव बहुत करता है। और पानी के साथ जब मलबा आता है तो उसकी कटाव की जो बल शक्ति है वो कई गुना हो जाती है। तो आपने देखा होगा अक्सर कई जगह हमारे पुल बह जाते हैं, सड़कें बह जाती हैं, मकान बह जाते हैं। तो ये सब होता है और इसके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा कि हम लोगों को पहले से सूचित करें और उनको सुरक्षित स्थलों पर सुरक्षित मार्गों के जरिए ले के जाएं। तो ये सब तैयारियां पहले से करनी होती हैं और इसमें सबसे बड़ी सहभागिता और साझेदारी हमारे जन समुदाय की है। जब तक कि हम जन चेतना नहीं लाते और लोगों को जागृत नहीं करते कि आप आपदाग्रस्त क्षेत्र में अगर रह रहे हैं और काफी मात्रा में बारिश होने की संभावनाएं हैं तो उस समय आप सचेत रहें, जागृत रहें और तैयार रहें। ताकि रात में होता क्या है कि जब बारिश होती है तो अंधेरा हो जाता है, लाइट भी चली जाती है, रास्ते नजर नहीं आते हैं। तो उसके लिए हम मॉक ड्रिल्स और प्रैक्टिसेस की भी बात करते हैं। एक और चीज जो इस पे मैं संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अब ये सावन का महीना जैसे चल रहा है तो हमारे कांवड़ यात्रा भी चल रही है जिसकी तरफ हमारा कई बार ध्यान नहीं जाता और वो भी काफी ज्यादा मात्रा में लोग जाने लगे हैं और बड़े बड़े दुर्गामी स्थलों पर जाते हैं। उनको भी बड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि जब लोग काफी भीड़ भाड़ में होते हैं या जैसे लाइटनिंग के इवेंट्स हो जाते हैं और वो मेटल के कलश लेके जाते हैं और
1: जी
0: पानी लेकर जाते हैं जो कंडक्टर्स के काम करते हैं, तो ऐसे में दुर्घटनाओं की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। तो एक तो हमारा जो पिलग्रिमेज सीजन है जो मई में शुरू होता है, नॉर्मली अक्टूबर में एंड होता है और बीच में बड़ा सीजन हमारा जो है मानसून के समय में रहता है। तो ट्रैकिंग भी लोग जाते हैं, पिलग्रिमेज के लिए भी जाते हैं और टूरिज्म के लिए भी जाते हैं। तो इन सब की वजह से वहां पर ज्यादा संख्या एकत्रित हो जाती है, ज्यादा वाहन इकट्ठे हो जाते हैं और ज्यादा दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं।
1: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे प्रोफेसर साहब कि बिजली गिरने से मरने की घटनाएं पूरे देश में बढ़ रही हैं अपेक्षाकृत पहले की तुलना में। इससे बचने का क्या, आपने कहा कि कड़े वगैरह आकर्षित करने में होते हैं, ऐसे और कौन से उपाय हो सकते हैं? एक तो बाढ़ की स्थिति में बड़े पैमाने पर यदि पानी आ गया है नदियों के माध्यम से बारिश के कारण से तो जल जमाव होगा, उससे नुकसान अपनी जगह, लेकिन बिजली चमकने, बिजली गिरने से जो आपदाएं हो रही हैं उनसे कैसे निपट सकते हैं?
0: कभी भी जब लाइटनिंग होती है उससे पहले थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, क्लाउड बस्ट इवेंट्स होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप कहाँ पर हैं। पहले तो आप घर के अंदर हैं या बाहर हैं, आप ओपन एरिया में हैं जहां से लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकता है तो, और आउटडोर्स में हैं तो आपको नो डाउट एक क्लोज एरिया में चला जाना चाहिए, टर्डी हाउसेस में जाना चाहिए और वहां पे अपने बचाव के लिए कोशिश करें। एक जो है मिथ है लोगों को कि पेड़ तले चले जाएंगे तो लाइटनिंग का इम्पैक्ट नहीं हुआ, ये उल्टा है। आप अकलौते बड़े पेड़ तले चले जाते हैं तो लाइटनिंग का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे ही कई लोग छाता लेके चल जाते हैं मेटल के साथ तो वो और हाइट बढ़ जाता है और मेटालिक एलिमेंट के साथ में और बिजली लगने की घटनाएं ज्यादा हो जाती हैं। और इसके साथ ही अगर आपको, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि हमें करना क्या है, कई लोग लेट जाते हैं जमीन पे, वो भी गलत है। तो उस समय में उकड़ू बैठ के दोनों हील्स इकट्ठे करके और नी में अपना हेड डालते हुए
1: जी
0: वो बैठ जरूरी होता है ताकि बिजली का प्रभाव कम से कम किया जा सके। अगर आपके पास में कोई ऐसा स्थल निकटतम जगह पर जहां पे कवर्ड एरिया है तो आपको उसमें जाना चाहिए और वहां पर अंदर ही रहना चाहिए जब तक ये क्लाउड बर्स्ट

0: और लाइटनिंग के इवेंट्स रुक नहीं जाते, उसके 30 मिनट के बाद ही आप कहीं बाहर निकलना चाहिए, तो इन चीजों का ध्यान देना। परंतु अगर सपोज करो आप बहुत बड़े जंगल में जा रहे हैं ट्रैकिंग की, जैसे मैंने बात की, हो सकता है आप किसी वन क्षेत्र में है, तो वन क्षेत्र में है तो वहां के लिए ये चीज काम नहीं आएगी, तो वहां पे घना जहाँ पे पौधों का समूह हो तो उसके नीचे जाना चाहिए, ताकि वो करंट जो है ना वो बॉडी ले ले नेचुरल, पर आपकी बॉडी के थ्रू नहीं जाए। तो क्लाउड का जो करंट का प्रवाह ग्राउंड में जाता है जब, तब आदमी उसका शिकार हो जाता है। जानवर है, जैसे जानवरों को भी हमें अंदर उसमें ले जाना चाहिए, किसी बंद क्लोज्ड एरिया में, ओपन एरिया में, तो ये सब चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है।
1: यहाँ पर यदि हम ये समझना चाहें कि बुनियादी ढांचे के स्तर पर, साथ ही जो अर्बन हमारा प्लानिंग है उसके स्तर पर, यदि हम दिल्ली शहर को ही उदाहरण ले लें, एनसीआर एरिया को ले लें, तो बारिश के दिनों में थोड़ी सी बारिश बहुत अधिक संकट का कारण बन जाती है, यातायात के लिए पानी जमा हो जाता है। यानी हम इस आपदा से मानसून के सीजन में अपने ड्रेनेज सिस्टम को या स्टॉर्म वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें?
0: दिल्ली की आपने बात की, अगर आपको याद हो जुलाई 2023 में
1: जी
0: दिल्ली में बाढ़ का स्वरूप देखा गया और काफी मेहनत कश करके लोगों को बचाया गया। चेन्नई की बाढ़ 2015 दिसंबर की आपको याद हो, बेंगलोर में हुई, हैदराबाद में हुई, जहां शहरीकरण हो रहा है वहां जो आपने कहा कि जो हमारा जल निकासी का प्रबंधन है वो बहुत जरूरी हो जाता है। जितने भी ड्रेनेजेज हैं पहले तो वो उस कैपेसिटी के नॉर्मली नहीं होते जितनी वहां पे पॉपुलेशन रिसाइड करती है, परंतु जो कैपेसिटी भी है, क्षमता है नालों की, वो भी पूरा काम नहीं करती है। अगर उसमें से मिट्टी, गर्दा, पॉलिथीन ये सब नहीं निकाले जाते और क्लीनलीनेस मानसून से पहले अच्छे तरह से नहीं की जाती है, तो कई कारण बन जाते हैं कि जब बारिश का पानी को ना तो ग्राउंड फिल्ट्रेशन का टाइम मिलता है क्योंकि सारा कंक्रीटाइज हो चुका है हमारा शहरीकरण, और दूसरा जो पानी सरफेस से नालों में जा रहा है उसमें क्षमता कम हो जा रही है, तो और तीसरा हम लोग जो है अंडरपासिस बना रहे हैं, जो लो लाइंग एरियाज होते हैं वहां पानी इनंडेशन हो जाता है, लोगों को अंदाजा नहीं लगता कि पानी का लेवल कितना है और लोग उसमें फंस जाते हैं। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी, पावर लाइंस, ट्रांसफार्मर्स, पोल्स, इनमें करंट लगने का बहुत डर है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पानी की वजह से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, करंट पानी में आ गया, तार गिर गई और कोई व्यक्ति उसकी टच में आ जाता है और मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम है वो ग्राउंड फ्लोर पे है और इनंडेशन हो गया और लीकेजेस करंट की हुई तो खतरा बढ़ जाता है। तो ना सिर्फ आवाजाही की व्यवस्थाओं में या पानी के इनंडेशन की वजह से सामग्रियों के खराब होने में, परंतु सबसे बड़ा खतरा जो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का है। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लें तो अगर आपने अनप्लग नहीं किया बारिश के टाइम पे, लाइटनिंग के टाइम पे, तो वो उससे प्रभावित हो सकते हैं। तो इस दुष्प्रभाव को रोकने के लिए जैसे हमारा मौसम खराब होता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कम से कम यूज करें और उनको अनप्लग करके रखें। तो ये सब चीजें जो है एक समन्वय बनाने की जरूरत है सभी विभागों में और सभी व्यवस्थाओं में, और जनता की साझेदारी बहुत जरूरी है इसमें।
1: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी, आपने बड़ी ही उपयोगी और आम जनता के समझ में आने लायक शब्दों में बताया कि हमें कहाँ नीतिगत स्तर पर काम करना है और कहाँ व्यक्तिगत स्तर पर सतर्क रहना है, ताकि मानसून की आपदा में अपना बचाव करने के लिए हम खुद सामने आ सके। तो श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और सभी श्रोतागणों का।
2: अभी आप सुन रहे थे बाढ़ प्रबंधन और मानसून की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के प्रभावी उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: Countrywide.

0: इनसे संगीत की शिक्षा प्राप्त की है। आप आकाशवाणी नागपुर की सुगम संगीत में ए ग्रेड प्राप्त कलाकार हैं। आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में संगीत अलंकार तथा पीएचडी प्राप्त की है। मधुर स्वर की धनी भैरवी काले ने राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संगीत प्रतियोगिताओं में सहभाग लिया है तथा वह एक दंत चिकित्सक भी हैं।
1: भैरवी काले रिसीव्ड हर म्यूजिकल ट्रेनिंग फ्रॉम हर फादर विकास काले एंड मिस मंगल देशमुख। शी इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट इन लाइट म्यूजिक फ्रॉम आकाशवाणी नागपुर। शी होल्ड्स द संगीत अलंकार एंड पीएचडी इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। पजेसिंग अ मेलोडियस वॉइस, भैरवी काले हैज पार्टिसिपेटेड इन वेरियस म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल्स। शी इज ऑल्सो अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन।
0: आज की पहली पेशकश है वसंत वैभव दहा दिशान्ना पसरे। ये शब्द है कवियत्री सरोज देशमुख के। इस गीत को संगीतबद्ध किया है अजय हेड़ाऊ ने।
1: हियर इज द फर्स्ट गीत वसंत वैभव दहा दिशान्ना पसरे, संग बाय भैरवी काले। द पोएटिस इज सरोज देशमुख एंड इज कंपोज्ड बाय अजय हेड़ाऊ।

0: इस गीत के बाद अब भैरवी काले प्रस्तुत कर रही हैं गीत धरा आणी मेघांचे हे ये जुड़ुनी नाते। रचना है सरोज देशमुख की, इसे संगीतबद्ध किया है अजय हेड़ाऊ ने।
1: भैरवी काले नावरेंडर्स द नेक्स्ट गीत धरा आणी मेघांचे हे ये जुड़ुनी नाते, पेंड बाय पोएटस सरोज देशमुख एंड इज कंपोज्ड बाय अजय हेड़ाऊ।

0: भैरवी काले की इस प्रस्तुति के बाद अब सुनते हैं सुरेश भट्ट की रचना। शब्द है माझी उदास गीते तू एक दोस कारे, और गा रही हैं भैरवी काले। संगीतकार हैं अजय हेड़ाऊ।
1: नेक्स्ट कॉम्पोजिशन माझी उदास गीते तू ऐकतो सकारे इज पेंट बाय सुरेश भट्ट, कंपोज्ड बाय अजय हेड़ाऊ, एंड सिंगर इज भैरवी काले।

0: कार्यक्रम के इस भाग के अंत में प्रस्तुत है रामदास कुहिटे का लिखा ये गीत। भैरवी काले ने गाए इस गीत को, संगीतबद्ध किया है अजय हेड़ाऊ ने। इस गीत के बोल हैं, गणतंत्र भारताचा स्वातंत्र दीप देवो।
1: भैरवी काले कंक्लूड्स हर रिसाइटल विथ गीत गणतंत्र भारताचा स्वातंत्र दीप देवो। द पोएट इज रामदास कुहिटे and is composed by Ajay Hedaup.

0: इस गीत के साथ ही आज के प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के इस भाग का समापन होता है। कलाकार थी भैरवी काले, संगत कलाकार थे हारमोनियम पर अजय हेड़ाऊ, तबले पर निखिल मड़ावी और वायोलिन संगत निशिकांत देशमुख इनकी थी।
1: विद दिस मराठी गीत बाय भैरवी काले वी कम टू द एंड ऑफ दिस पार्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। द अकंपनिस्ट वेर अजय हेड़ाऊ ऑन हारमोनियम, निखिल मड़ावी ऑन तबला एंड वायोलिन आर्टिस्ट वॉज निशिकांत देशमुख।
0: यह ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी नागपुर के स्टूडियो में किया गया। आज का प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम जारी है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भाग।
1: दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड इन द स्टूडियो ऑफ आकाशवाणी नागपुर। द प्रोग्राम कंटिन्यूज, लेट अस लिसन टू द नेक्स्ट सेगमेंट।
2: ये आकाशवाणी है, क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे सुखविंदर सिंह द्वारा पंजाबी सूफी व लोकगीत।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन दिस पार्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक यू विल लिसन टू पंजाबी सूफी एंड फोक सॉन्ग्स बाय सुखविंदर सिंह।
2: सुखविंदर सिंह, जिन्हें उनके मंचीय नाम दलेर अली के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब के एक प्रतिष्ठित सूफी एवं लोक गायक हैं। संगीत के क्षेत्र में 2 दशकों के अनुभव के साथ उन्होंने पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक एवं संगीत परंपरा के संरक्षण और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले 20 वर्षों के दौरान उन्होंने अनेक कव्वाली कार्यक्रमों, सांस्कृतिक समारोहों, धार्मिक आयोजनों तथा विभिन्न प्रतिष्ठित सामाजिक एवं सांस्कृतिक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। उनकी सूफियाना एवं लोक गायकी को देश विदेश के श्रोताओं द्वारा सराहा गया है। एक सफल कलाकार होने के साथ साथ वे एक समर्पित संगीत गुरु भी हैं। उन्होंने अनेक विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा प्रदान की है। वे आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं।
3: सुखविंदर सिंह, ऑल्सो नोन बाय हिज स्टेज नेम दलेर अली, is a renowned Sufi and folk singer of Punjab. With 2 decades of experience in the field of music, he has made significant contribution to the preservation and promotion of Punjab's rich cultural and musical heritage. Over the past 20 years, he has performed at numerous live Qawwali concerts, cultural festivals and religious events, as well as on various prestigious social and cultural platforms. His Sufi and folk singing has been acclaimed by audience both in India and abroad. In addition to being a successful artist, he is also a dedicated music mentor. He has imparted musical training to numerous students, many of whom are now successfully pursuing career in their respective fields. He is an A-grid artist of Akashvani.
2: आज रात के कार्यक्रम में सुखविंदर सिंह सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे काफी शाह हुसैन, नीमाए मेनू खेड़ियां दी गल ना आख। इस काफी की प्रस्तुति का मुख्य विषय ईश्वरीय प्रेम, अटूट भक्ति और आध्यात्मिक मिलन है। हीर का खेड़ों को स्वीकार करने से इनकार करना, आत्मा द्वारा सांसारिक मोह

0: को ठुकराने और अपने प्रियतम जो ईश्वर का प्रतीक है के प्रति पूरी तरह समर्पित होने का प्रतीक है।
1: The central theme of this kafi revolves around divine love, unwavering devotion and spiritual union. Here's refusal to accept the khedas symbolizes the soul's rejection of worldly attachments and its complete surrender to the beloved Ranjha, who represents the divine.

सुखविंदर सिंह अब प्रस्तुत करेंगे काफी बाबा बुले शाह। मैं गल उत्थे दी करदा हां। ये बुले शाह की एक बेहद रहस्यमयी रचना है जो अनिश्चित

0: सता आत्मखोज और ईश्वर के प्रति समर्पण के जरिए साधक की आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। कवि एक ऐसी सच्चाई की बात करते हैं जो भौतिक दुनिया से परे है, एक ऐसा आध्यात्मिक सत्य जिसे आम भाषा में बयां करना बहुत मुश्किल है। वह ईश्वरीय प्रेम और आंतरिक जागृति के अपने अनुभव को साझा तो करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपनी झिझक और डर को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि ऐसे सत्य को केवल तर्क या बुद्धि के जरिए पूरी तरह नहीं समझा जा सकता।
1: दिस वन इज अ डीप मिस्टिकल कॉम्पोजिशन बाय बाबा बुल्ले शाह दैट एक्सप्लोर्स द सीकर्स स्पिरिचुअल जर्नी थ्रू अनसर्टेनिटी, सेल्फ डिस्कवरी एंड सरेंडर टू द डिवाइन। While the poet wishes to share his experience of divine love and inner awakening, he admits his hesitation and fear because such truths cannot be fully understood through reason

0: सुखविंदर सिंह अब प्रस्तुत करेंगे काफी बाबा गुलाम फरीद, सोनिया रमजा तेरियां पौंदियां। बाबा गुलाम फरीद की ये सूफी रचना दिव्य प्रेम की अनोखी सुंदरता और आध्यात्मिक आकर्षण का जश्न मनाती है। असल में कवि प्रिय की मनमोहक खूबियों के बारे में बताता है। मन मोहने वाली आंखें, सुंदर बौहें, लहराते बाल, आकर्षक हाव भाव। हालांकि सूफी परंपरा में ये शारीरिक खूबियां दिव्य सुंदरता के उन रूपों की निशानी है जो साधक के दिल को आध्यात्मिक जागृति की ओर खींचती है।
1: दिस इज अ मिस्टिकल सूफी कॉम्पोजिशन attributed to Baba Ghulam Farid that celebrates the irresistible beauty and spiritual attraction of the Divine Beloved. In the Sufi tradition, the physical attributes symbolize the manifestation of the Divine that draws the seeker's heart towards spiritual awakening.

0: कार्यक्रम के अंत में सुखविंदर सिंह प्रस्तुत करेंगे एक गीत, रात अद्धी रात तो लंग गई अगा, पता नहीं यार किथे रह गया। देव हरियाणवी का ये गाना चाहत, इंतजार और जुदाई के दर्द से दिल को छू लेने वाला है। गाना एक ऐसे प्रेमी की भावुक हालत को दिखाता है जो पूरी रात अपने उस प्यारे के आने का इंतजार करता है जो कभी नहीं आता।
1: द सॉन्ग lyricized by Dev Haryanvi is a poignant expression of longing, anticipation and the pain of separation. The song captures the emotional state of a lover who spends the entire night waiting for the arrival of a beloved who never comes.

0: क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में आप अभी सुन रहे थे सुखविंदर सिंह द्वारा पंजाबी सूफी व लोकगीत। उनके साथ संगत कर रहे थे ढोलक पर प्रदीप कुमार, तबले पर चरण, कीबोर्ड पर पंकज, सारंगी पर सुखविंदर सिंह, बांसुरी पर गुरदीप सिंह तथा मैंडोलिन एवं गिटार पर चरणजीत ढिल्लो। कार्यक्रम का ये भाग आकाशवाणी जालंधर की प्रस्तुति थी।
1: You were listening to the Punjabi Sufi and folk songs sung by Sukhvinder. He was accompanied on dholak by Pradeep Kumar, tabla Charan, sarangi Sukhvinder Singh, keyboard Pankaj, flute Gurdeep Singh and mandolin and guitar by Charanjit Dhillo. This part of the program was a presentation by Akashwani Jalandhar.

मीडियम वेव 326.72 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, एफएम 14.1 मेगाहर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

0: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
2: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबरधन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोबरधन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम

0: हुक्म तैयार होगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि सरकार विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल बनाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। दो दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। वहीं ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हो गई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। झारखंड में विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विधानसभा में राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब और दिल्ली में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सपोर्ट धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix.
2: भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है,
3: इंडिया करंटली इंपोर्ट्स नियरली 50% ऑफ इट्स नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट्स एंड द गवर्नमेंट इज टेकिंग कंटिन्यूअस स्टेप्स टू रिड्यूस दिस डिपेंडेंस। अंडर द स्कीम द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इज टारगेटेड टू इंक्रीज टेनफोल्ड ओवर द नेक्स्ट डेकेड। फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन टन्स। इकोनॉमिकली इट इज प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अराउंड 75,000 crore rupees टू the national GDP and generate nearly 1.5 lakh employment opportunities across the country.
2: About 1.5 lakh jobs will be created by this program.
1: Mr. Vaishnaw said the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of 4-lane highway from Guwahati to Tezpur along the National Highway 15 in Assam. On Cabinet's approval of Gobardhan scheme, Prime Minister Narendra Modi in a social media post said the decision is a vital step towards clean energy, rural prosperity and realizing the country's collective dream of becoming a self-reliant